0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना राग हीर भैरव में मोहम्मद अली खान का वायलिन वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता

0: adding that Canada could not accept the offer made by the US. The sports ministry has approved a 492-member Indian contingent for the Asian Games, which will begin next month in Japan. The contingent includes 265 male and 227 women athletes, with athletics accounting for the largest share of 73 participants. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 6:10 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का।

प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए इसी के साथ अब सुनते हैं ये जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये शब्द।

दोस्तों, ईश्वर का नाम लेते ही मन को एक अद्भुत शांति और अनुभव होता है। ईश्वर वह शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारी हर सांस में, प्रकृति के कण-कण में और हमारे विश्वास में ईश्वर का वास है। कहा भी गया है ना कि जहाँ विश्वास है वहीं ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ निराशा का कोई स्थान नहीं है।

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में बुद्ध दर्शन के प्रमुख शिक्षाएं।
1: बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया, ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा। बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है, जो है तीन सार्वभौमिक सत्य, चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक आर्य मार्ग। तीन सार्वभौमिक सत्य, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया, तीन सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मांड में कुछ नहीं खोता, ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। मनुष्य मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं। कारण और प्रभाव का नियम, बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चार आर्य सत्य, बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख का सच, जीवन में सभी मनुष्य किसी ना किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है। बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। उस मार्ग का सत्य है जो हमें दुख से मुक्त करता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक आर्य मार्ग, अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए आठ महान मार्ग निर्धारित किए हैं। वे हैं सम्यक समझ, ये चार आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। सही विचार, सम्मा संकल्प, व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। सम्यक वाक, हमें सदैव दयालुता पूर्वक सचेत होकर दूसरे का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। सही कर्म, सम्मानता, इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छे व्यवहार करना शामिल है। सम्यक आजीविका, सम्मा अजीव, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी आजीविका ना कमाएं और दूसरों को दुखी करके खुशी ना पाएं। सम्यक प्रयास, सम्मा वयम, इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सही जागरूकता, इसका तात्पर्य स्वयं, शरीर, दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा, लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सम्यक एकाग्रता, संपूर्ण समाधि, चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए

अपूर्णता और अनियतता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति आष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। ये हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा या जान लेने से दूर रहें, जो ना दिया गया हो उसे लेने

0: दवाओं के सेवन से बचें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 26।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं डिगा सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गई जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थी। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: वाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में यंत्र इंडिया की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी बन की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित 3rd IIMA हेल्थकेयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थीं। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मैसर्स एडुक्विटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 परीक्षार्थी अपनी पूरी परीक्षा नहीं दे पाए थे। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को 10 बजे जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदारा शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

नई दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीएलएम 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका कार्यक्रम में आइए सुनते हैं करिश्मा शर्मा से भजन। सबसे पहले सुनिए ये पारंपरिक भजन।

अभी आप ये पारंपरिक की रचना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं तुलसीदास जी की रचना करिश्मा शर्मा की आवाज में।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप करिश्मा शर्मा से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का, और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, उम्मीद है आज की सुबह आपके लिए ढेर सारी मुस्कान और नई उम्मीदें लेकर आई होगी। दोस्तों, सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती है, ये वो मौका होता है जब हम कल की सारी थकान को अलविदा कहकर आज के नए सपने लेकर उनको हम नई उड़ान दे सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत दिख क्यों नहीं रही। हम रोज़ सुबह उठते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं अपने काम में दोस्तों। लेकिन बिल्कुल भी इस बात पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज जो लोग आपकी तारीफ ना कर रहे हों, जिनको आपकी मेहनत दिखाई ना दे रही हो, वो कल चल के आपको ज़रूर सराहेंगे। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना कि बीज भी जमीन के अंदर चुपचाप मेहनत करता रहता है, तभी एक दिन पेड़ बनता है और दूसरों को छाया देता है। चलिए सुनते हैं फिल्म थ्री इडियट्स से ये गीत। आवाज़ें दी हैं सूरज, जगन और शर्मन जोशी ने।

99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, क्या क्या कर्म करते हैं। जी हाँ, और यही आपकी असली पहचान होती है, क्योंकि जैसे दोस्तों सूरज को उगने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए होती है, इसी तरह आपको चमकने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद ही अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आपका व्यवहार ही आपको चमका सकता है। फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से सचेत टंडन की आवाज़ में।

दोस्तों, शिव का स्वरूप हमें जीवन के संतुलन और शक्ति का संदेश देता है। शिव केवल विनाश के देव नहीं, बल्कि वे पुनर्निर्माण और कल्याण के प्रतीक है, और हमें एक संदेश देते हैं कि भाई कितनी भी कठिनाई हो जीवन में, कितना भी हमें लग रहा हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जीवन में हमें संघर्ष करना सिखाते हैं। जिस तरह उन्होंने जहर का प्याला पीकर दुनिया सभी को उन्होंने अमृत प्रदान किया, इसी तरह हम भी अपने हर मौके को खुद से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें।

अरिजीत सिंह और प्रकृति कक्कड़ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी का ये गीत। और दोस्तों, अब घड़ी की सुई कह रही है कि आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक और गीत सुनवा दें। मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म मैरी कॉम से ये गीत आप सुनते सुनिए। और भाई, सदा मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव वाइब्स के साथ खड़े हुई है और अपने काम में जुट जाइए।

0: लीजिए सुनिए समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी

0: सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
4: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में NC सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवु एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल

0: मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स BJP's न्यूली फॉर्म्ड टीम एट पार्टी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली, पार्टी पासेस रेजोल्यूशन रिगार्डिंग ऑनर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक लेगेसी ऑफ वंदे मातरम, Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels, India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन

0: विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूरेजी के खात्मे के लिए अक़वामे मुत्तहिदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ते नज़र पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वज़ीर आज़म ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खलूस के साथ काम करने के लिए अहदबस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नबीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की मजम्मत और वाज तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली दो बंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने यह अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वक़ार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। कौमी ओहदेदारों की पहली मीटिंग के अख्ताम के बाद रियासती सुदूर जनरल सेक्रेटरीज और दिगर ओहदेदारों के साथ सेवा संकल्प अभियान के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक़िद की गई। सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आने वाली सालगिरह के मौके पर एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मकसद अवामी खिदमत के लिए उनके अज़्म को उजागर करना और बिलखसूस नौजवानों को खिदमत के काम अंजाम देने की तरगीब देना है। नई दिल्ली से सौम्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी हुकूमत ने टेलीविजन चैनलों के लिए इश्तहारात की 12 मिनट की हद खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क ज़वाबित 1994 में तरमीम को गजट में शाया किए जाने के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल वजारत इतलात नशरियात ने कहा था कि टेलीविजन नशरियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र इश्तहारात की मुद्दत से मुतालिक मौजूदा ज़वाबित पर दोबारा गौर करने की जरूरत महसूस की गई थी। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत ने कहा है कि भारत में टेलीविजन नशरियात का शोबा वसी हद तक इश्तहारात पर मुनहसर है, ख्वाह वो पे चैनल हों या फ्री टू ईयर। वजारत ने मजीद कहा कि रिवायती टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया के दरमियान गैर मुसाबकती माहौल था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर इश्तहारात के दौरानिए की हद से मुतालिक ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स जाब्ते 1994 के तहत 2006 में पहली मरतबा टेलीविजन इश्तहारात के लिए दौरानिए की हद मुतारिफ की गई। इसके बाद से टीवी नशरियात के शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। वजारत के मुताबिक नशरियाती शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। 2006 में जहां सिर्फ 62 टीवी चैनल्स थे, वहां अब इनकी तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। पहले केबल टीवी टेलीविजन चैनल्स की जरूरियात की बुनियाद का जरिया था और इसकी नशरियाती गुंजाइश महदूद थी, जिसके बायस सारिफिन के पास पसंद या नापसंद का महदूद मौका था। आकाशवाणी दिल्ली से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के खेलों के वजीरों और वफूद के सरबराहान के साथ मीटिंग में शिरकत

0: करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के वजीरों की मीटिंग का मकसद खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करना और अवाम से अवाम के दरमियान करीबी राबते को फ़रोग देना है। मीटिंग में रिवायती और मकामी खेलों, खेलों की टेक्नोलॉजी और खेलों के साजो सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदों के हुकूमती बयान, दो तरफा मीटिंगें और सकाफती सरगर्मियां भी शामिल होंगी। तवक्को है कि मीटिंग के अख्ताम पर खेलों से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों का मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया जाएगा। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शरीक मुल्कों के दरमियान दोस्ती, यकजहती और ताउन के जज्बे को फरोग देने के लिए आज सुबह सवेरे ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग दौड़ का इनेकाद किया गया। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के खेल के वजीरों की मीटिंग मुश्तरका ऐलामिया को मंजूर किए जाने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबारी सरगर्मियों, जिद्दत तराजी और समाजी तरक्की के शोबों में मौके को उसत देने के इकदाम पर तबादले ख्याल किया गया। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: केमिकल्स और खादों के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल खरीफ के मौजूदा और आइंदा रबी सीजन के लिए खाद के महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में मुनक़िदा मीटिंग में महकमा खाद के सेक्रेटरी और आला अफसरान मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मुल्क में खाद की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी और बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरकजी वजीर मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को तहकीक, जिद्दत तराजी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर दुनिया की फार्मेसी की अपनी शनाख्त से आगे बढ़कर दुनिया की तजर्बगाह के तौर पर उभरना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में मुनक़िद IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 के तीसरे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनकलाबी सलाहियतों और उसके मुस्बत असरात को उजागर किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस का दो रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ तिजारती, इक्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 70 से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूनरेजी को रोकने और शहरियों की जानों के तहफ्फुज के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। यह अपील मकबूजा इलाके में बढ़ते हुए तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के दरमियान सामने आई है, जहां पाकिस्तानी फोर्सेज की सख्त कार्रवाई में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। यह खित्ता इस वक्त भी सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और मवासलात की मुकम्मल बंदिश का शिकार है। बरतानवी कानून साजों ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल अब मुसलसल बैनुल अक्वामी तवज्जो और कोशिशों की मुतकाजी है, ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके, जवाबदही तय की जा सके और पुरअमन हल की राह हमवार हो सके। उन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा से भी अपील की कि वह पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दे के लोगों की मनमानी गिरफ्तारियों का खात्मा किया जाए, गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई का मुनासिब हक और कानूनी मदद तक रसाई दी जाए और मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक के आजाद मुशाहिदीन को मुनासिब रसाई फराहम की जाए। हुकूक इंसानी के इदारे बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तंग इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से शहरियों पर किए गए ड्रोन हमले को सरकारी दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। जुमे को मस्तंग जिले के खड़कोचा इलाके में एक बागीचे पर ड्रोन हमले के बाद यह बयान सामने आया है। इस हमले में वहां काम करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। पाकिस्तानी फिजाइया के जरिए बलूचिस्तान के सुराब जिले के गिदर इलाके में रिहायशी इलाके पर मुबैना अंधाधुंध बमबारी के महज चंद दिन के बाद यह हमला किया गया है। इस बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। पनामा का एक परचम बरदार जहाज जिसमें अमले के 24 अफराद सवार थे कल खलीज बंगाल में डूब गया। इस जहाज में ज्यादातर अमला चीनी शहरियों पर मुश्तमिल था। हुक्काम ने बताया कि जहाज ओडिशा के साहिल से तकरीबन 240 बहरी मील दूर गर्कयाब हुआ। जहाज MV ओशन विनर पर सवार अमले में 20 अरकान चीन के, 3 म्यांमार के और एक बांग्लादेशी शहरी शामिल थे। यह जहाज ओडिशा से तकरीबन 38,000 टन लोहे का खाम माल लेकर सिंगापुर जा रहा था। यह 20 अगस्त को रात तकरीबन 11:42 पर पारादीप बंदरगाह से रवाना हुआ था। भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और भारतीय बहरिया ने इमदाद और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 2 अफराद को बचाया जा चुका है। कैनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा

यह आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सोई हुई राष्ट्र चेतना को जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके काव्य में भारत के स्वर्णिम अतीत का गौरव, मानवीय संवेदना और नवजागरण का उज्जवल भविष्य समाहित है। गुप्त जी के युगांतकारी साहित्य

साहित्यिक अवदान, राष्ट्रीय विमर्श में उनकी प्रासंगिकता तथा उपेक्षित नारी पात्रों जैसे यशोधरा, उर्मिला के प्रति उनकी संवेदनशील दृष्टिकोण पर लीजिए सुनिए परिचर्चा, अतीत का आदर्श, भविष्य का उत्कर्ष। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह, श्यामलाल कॉलेज

0: डॉक्टर पूनम,
1: भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, है देवभूमि वह भारत वर्ष हमारा है। आज हम एक ऐसे कवि की पूरे साहित्यिक मूल्यांकन पर अपनी दृष्टि को डाल रहे हैं, जो अतीत में उन्होंने आदर्श जो हमारे समक्ष रखा और उसी के आधार पर भविष्य के उत्कर्ष की नींव रखी है। जब कोई राष्ट्र अपनी अस्मिता के संकट से जूझ रहा होता है, जब पराधीनता का अंधकार भविष्य के सारे सपनों को लील रहा होता है, तब साहित्य ही वह आलोक स्तंभ बनता है जो राह दिखाता है। मैथिली शरणगुप्त का संपूर्ण साहित्यिक अवदान इसी आलोक स्तंभ की भांति भासवान है। उनका काव्य केवल शब्दों का समुच्चय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों का एक विशाल शब्द कोश है। उन्होंने वर्तमान की दिशा देने के लिए अतीत के गौरव मई पृष्ठों को पलटा है। उनका मानना था कि जब तक हम अपनी जड़ों को, अपने अतीत के उदात्त आदर्शों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम एक दीप्तिमान भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैं प्रोफेसर सुधा मैम से ये पूछना चाहती हूँ कि जो उनका अतीत का आदर्श उन्होंने अपनी रचनाओं में रखा, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत भारती जो है एक तरह से सांस्कृतिक जागरण का दस्तावेज कहा जाता है, उस पर मैम आपके विचार जानना चाहते हैं।
2: दरअसल मैथिली शरण गुप्त जिस संस्कृति का निर्वहन करते थे और जिसको आदर्श रूप में लेकर वह अपने साहित्यिक रचनाओं में आए, वे स्वयं अकेले उनकी समझ से केवल नहीं पनपा था, बल्कि पूरे वातावरण में व्याप्त था। और मैथिली शरण गुप्त जी की खासियत यह है कि द्विवेदी युग के साथ साथ उनका क्रमिक विकास हुआ, उनके रचनाशीलता का, उनके भावबोध का, विचारबोध का क्रमिक विकास हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी पृष्ठभूमि थी जो उनको विरासत में मिली थी, जो उनके पिता से उनको मिली थी, और उस वैष्णव भक्ति परंपरा से जो उनकी पारिवारिक संस्कृति का एक हिस्सा थी, उस वैष्णव भक्ति परंपरा का वो अपने भीतर भी कहीं ना कहीं एक सूत्र पाते थे। लेकिन सवाल था कि उस समय केवल वैष्णव भक्ति परंपरा से काम चल जाता तो शायद मैथिली शरणगुप्त चला लेते। देश पराधीन था, सबसे बड़ी चिंता जो थी देश की पराधीनता की थी और देश के सांस्कृतिक नवोत्थान की थी। एक तरफ नवजागरण की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, नवजागरण के इस दूसरे कालखंड को जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आगे बढ़ाते हैं, जागरण सुधार काल कहा गया। जागरण काल भारतेंदु युग था और जागरण सुधार काल यह द्विवेदी युग कहा गया। यह जो जागरण सुधार काल था, आप देखिए भारतेंदु युग में जिस साहित्य की जो भावभूमि बदली, संस्कृति के एक अंग के रूप में साहित्य को देखा जाता है, और संस्कृति में तब्दीली जब आती है या उस पर दबाव जब बनता है, बाहरी या भीतरी दबाव या अंतर्द्वंद किसी तरह का पैदा होता है, तो वह साहित्यिक प्रतिफलन के रूप में भी दिखाई देता है। तो जो पहला दौर था, जो भारतेंदु युग का दौर था, उसमें आप बहुत साफ देख सकती हैं कि सांस्कृतिक बोध के बदलने के साथ साथ साहित्यिक बोध भी बदलता है, साहित्य का आधार भी बदलता है। अब साहित्य जनता की तरफ, यानी जनोन्मुखी साहित्य का एक दौर चलता है। अब वो साहित्य वो नहीं था जो केवल राजाओं महाराजाओं के कान में मकर ध्वज की छींटे डालने वाला साहित्य नहीं था। अब साहित्य की भावभूमि बदलती है। सवाल सबसे बड़ा यही था कि ये साधारण बोली बानी जो साहित्यिक अभिरचना का आधार बन सकती थी, इसको किस तरह से उस सांस्कृतिक भावभूमि जो प्राचीन संस्कृति और साहित्य का वहन करते हुए आ रही थी और नवीन आधुनिक चेतना, इन दोनों से समन्वित करके ठीक तरीके से इसको उकेरा जाए और खड़ी बोली हिंदी का निर्माण किया जाए। आप देखें कि भारतेंदु स्वयं दुविधाग्रस्त थे खड़ी बोली हिंदी को लेकर, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते अब ये स्पष्ट हो गया कि खड़ी बोली हिंदी ही कविता की भाषा हो सकती है और इसी में सारी कुश्ती करनी है, सारा जो दाव पेच है इसी में चलना है, खड़ी बोली हिंदी को संवारना है। एक नई चीज थी ये, कविता की भाषा, गद्य की भाषा दोनों एक होगी और इस तरह से चिंतन की भाषा भी अंततः वही होगी, ये एक बहुत बड़ी चीज थी।
1: तीनों का समन्वय कितना अपने बहुत आप बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा काम था
2: और एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक दायित्व था जिसको मैथिली शरण गुप्त ने पूरा किया। और इसमें देखिए कि खड़ी बोली हिंदी को जिस रूप में मैथिली शरण जी ने संवारा, वो अभूतपूर्व है। कोई चीज जो परंपरा से आ रही थी उनसे छूटी नहीं, और आधुनिक बोध और जिसे हम युग बोध कहते हैं, जो उस समय गांधी जी के प्रभाव से हिंदी खड़ी बोली और पूरे सामाजिक जनजीवन में जो चीज धीरे धीरे चेतना रूप में पसर रही थी कि हमें औपनिवेशिक संस्कृति से, औपनिवेशिक दासता से, औपनिवेशिक पराधीनता से मुक्ति पानी है, उनकी संस्कृति से भी मुक्ति पानी है, एक अपनी समानांतर संस्कृति विकसित करनी है जो आधुनिक हो लेकिन पुरातनता के अच्छे संस्कारों को छोड़कर न चली आए, उसमें केवल दो लोग ऐसे थे जो

0: युग की चेतना के साथ साथ चल सके, उसमें एक नाम और सबसे महत्वपूर्ण नाम मैथिली शरण गुप्त जी का है, दूसरा बड़ा नाम हरिऔध जी का है। हरिऔध जी ने भी कम प्रयोग नहीं किए, ठेठ हिंदी का ठाट, अधकिला फूल जैसे रचनाएं उन्होंने लिखी, भाषिक प्रयोग किए, लेकिन जो सफलता मैथिली शरण गुप्त जी को मिल पाई वह शायद हरिऔध जी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन दोनों नाम लिया जाए तो ये दो बड़े नाम द्विवेदी युग में बहुत प्रत्यक्षता आपको दिखाई
1: मुझे लगता है कि हरिऔध जी में वो संस्कृति का वो विस्तार रूप हम नहीं देख पाते हैं, वो उस तरह से वर्ण विषयों की विविधता नहीं देख पाते हैं जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने संस्कृति को पूरे समग्र रूप में, जिस तरह से उन्होंने एक समग्र चेतना के रूप में, एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में और एक सांस्कृतिक धर्म के रूप में,
0: इसका कारण है, इसका कारण ये है कि मैथिली शरण गुप्त जब लिख रहे थे तो हरिऔध जी की तुलना में गुप्त जी ज्यादा उन चरित्रों के करीब गए जो जनता के जीवन में रचे बसे चरित्र थे, जैसे राम, सीता, उर्मिला, यशोधरा, गांधारी, कैकेयी, ये वे चरित्र थे जो महाकाव्यात्मक चरित्र हैं। और महाकाव्यों की खूबी ये होती है कि वे चाहे निरक्षर जनता हो चाहे साक्षर जनता हो, दोनों को प्रभावित करती है, क्योंकि उसके आर्ट फॉर्म अलग अलग होते हैं। आप उसे पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समूह गायन भी कर सकते हैं, मंचन भी कर सकते हैं, इतनी विविधता है उसमें महाकाव्यात्मक रूपों में, जनजीवन में उसकी पैठ इतनी गहरी है कि शिक्षित अशिक्षित सब उससे प्रभावित होता है। चुनौती यहाँ थी कि जो चले आते चरित्र हैं उन चरित्रों में कोई नई चीज कैसे शामिल की जाए जो युग चेतना के अनुकूल हो, और यहीं पर एक बड़े कवि की पहचान होती है। देखिए, सामाजिक समस्याएं तो थीं, आप एक घड़ी सोच लीजिए कि कविता साहित्य 1920-1910 में ना लिखा जाता
1: जी।
0: तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? बिल्कुल। सामाजिक आलोड़न विलोड़न जो चल रहा था, क्रांतियां जो हो रही थी, परिवर्तन की आहटें जो सुनाई दे रही थी, है ना, देश में मुक्ति की आकांक्षा, स्वतंत्रता की आकांक्षा, नए परिवर्तनों को लेकर ललक जो थी वो तो थी, वो तो रहती। सवाल था कि कविता उसके साथ कैसे चले, साहित्य उसके साथ कैसे चले, जिसमें युग की धड़कन दिखाई दे, युग का स्पंदन दिखाई दे। और यह काम मैथिली शरण गुप्त ने किया। उन्होंने चली आती जो धारा थी उसको तो अपने साथ लिया ही, लेकिन उसको युग के साथ जोड़ा, और उसमें उन्होंने ऐसे चरित्र गढ़े जो मुक्ति के आकांक्षी थे, ऐसे चरित्र गढ़े जो मिथकीय होते हुए भी नए सवाल खड़े कर रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: और ऐसे चरित्र गढ़े जो राष्ट्र और धर्म की प्रेरणा भी बन रहे थे, ऐसे चरित्र गढ़े जो मानवता और विश्व मानवता का संदेश भी दे रहे थे। तो संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने, ये क्या था?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये नई सांस्कृतिक उद्भावना ही तो थी जो एक व्यक्ति में विश्व देखती है।
1: अब मैं प्रोफेसर कुकरेती जी से बात कर रही हूँ, जो पूरा का पूरा मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य है, उनका पूरी जो रचना का पूरा धरातल है, वो बहुत लंबे समय से अगर हम देखें उनका पूरा जो टाइम पीरियड है वो नवजागरण काल का है, जैसा कि मैडम ने कहा। तो नवजागरण में खास तौर से जो प्रवृत्तियां थी वो उनकी रचनाओं में पूरी तरह से आई हैं, पूरे प्रभाव के साथ आई हैं। लेकिन आपको कहाँ ऐसा लगता है कि उस नवजागरण की प्रवृत्तियों का भी अतिक्रमण करके कुछ नए जागरण, नई चीजें किस तरह से उन्होंने आत्मसात किया नवजागरण को, और आत्मसात करते हुए भी उसको छोड़ा भी, जैसा कि मैडम ने भी कहा। और उनकी कालजयी रचनाओं का जो आज भी हम पाठ कर पाते हैं और लगता है कि वो वर्तमान की ही समस्याएं हैं, आज भी हम उन्हीं सारी चीजों से जूझ रहे हैं। तो नवजागरण के संदर्भ में अगर हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को देखें तो हम किस प्रकार से उसका आकलन कर पाते हैं?
2: देखिए, अगर हम उनके साहित्य को समग्रता में देखते हैं तो वो उन तीन रचनाकारों में दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक लिखा। हरिवंश राय बच्चन थे, सुमित्रानंदन पंत थे और मैथिली शरण गुप्त। संयोग से ये तीनों रचनाकार एक कालखंड में साथ साथ भी रहे।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन ये जो दो रचनाकार थे, चाहे बच्चन जी हो या पंत जी हो, इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कंडीशनिंग को नहीं तोड़ा, लिखते रहे ये। लेकिन जब हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को देखते हैं तो वो जैसे अपने लिए खुद चुनौतियां पेश करते हुए नजर आते हैं। एक जैसे विषय ऊपर से दिखाई देते कि उन्होंने लगभग एक जैसा विषय लिया। विचार के धरातल पर देखें तो गांधीवाद के साथ वो जुड़े रहे,
1: बिल्कुल,
2: है ना। लेकिन वो केवल गांधीवाद तक नहीं रहे,
1: गरम दल के साथ भी उनकी हो रही है, क्रांति वाली भावनाएं जो है उनकी, बिल्कुल।
2: लेकिन दो तीन टैग उनके साथ लगाए जाते हैं,
1: बिल्कुल,
2: कि एक तो सामान्य तुकवादी कवि हैं, दूसरा कि वो एक सामान्य से वैष्णव कवि हैं, राम कथा लिख देने से आप सीमित उसको कर देते हैं, तीसरा जो इनके ऊपर लगाया गया कि केवल इनके यहाँ सांस्कृतिक चेतना मिलती है। लेकिन उस संस्कृति में भी क्या ऐसा है, जैसे सुधा जी

0: बताया कि बहुत सारी चीजों को छोड़ते भी चले गए।
1: बिल्कुल,
0: उनके यहाँ एक संपादन जो है दिखाई देता है।
1: हाँ।
0: कि अपने आप को भी संपादित करते चलते
1: हैं,
0: तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं बदलते हैं।
1: हाँ।
0: जो कि इनको बड़ा कवि बनाते हैं। तो जो अतीत था वहां से वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास अर्जित करते हैं। क्या लिया उन्होंने अतीत से? उनकी जितनी भी अतीत पर आधारित रचनाएं हैं
1: जी,
0: तो वहां वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास अर्जित करने के लिए जाते हैं। जो वर्तमान है वहां पर भी वो जाते हैं, यानी वर्तमान के कवि हैं वो। उस दौर में, द्विवेदी युग के दौर में, मुझे लगता है कि हरिओत से भी ज्यादा अपने वर्तमान को अगर किसी ने परीक्षित किया है तो मैथिलीशरण गुप्त है।
1: हाँ, उनकी रचनाओं में आपको
0: हाँ,
1: इस विषय
0: हाँ,
1: आप देखिए
0: जी
1: बहुत सारे पैराडाइम
0: हाँ,
1: हैं उनकी
0: यानी वो
1: रचनाओं के।
0: नवजागरण के जितने पहलू हो सकते हैं कि उसमें है, तो वहां पर भी वो सबसे पहले एक हमें बड़ा मूल्य देते हैं कि जो वर्तमान है इसमें सबसे पहले हमने अपना आत्म परीक्षण करना है।
1: बिल्कुल।
0: और जो भविष्य है वो उनको कर्म के लिए पुकारता है। तो तीनों जो उनके कविता के आयाम है वो उनको उस दौर का, यानी आधुनिक हिंदी नवजागरण का एक महत्वपूर्ण रचनाकार उनको सिद्ध करता है। दूसरी बात, तीन रचनाएं अगर हम देखें, यशोधरा है, भारत भारती और साकेत, ये रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि ये अतीत के बहाने वर्तमान को डिफाइन करती हैं। यहाँ तक कि जो उनकी रामकथा है वो तुलसी या वाल्मीकि की रामकथा से अलग है। तो कुछ चीजें थी जो कि उनको अपने समकालीनों से अलग साबित करती थी। एक और यहाँ पर वो जुड़ती है बात कि जो उनका भारत भारती है तो हाल ही ने एक मुसद्दस लिखा था।
1: हाँ,
0: उनके साथ भी टकराने की वो बात करते हैं कि जो उसकी प्रतिक्रिया में लिखा गया ऐसा नहीं था। दोनों की भावभूमि बिल्कुल अलग है। और मैथिलीशरण गुप्त का जो भारत भारती है, आप ये कह सकते हैं कि जो आजादी की लड़ाई के लिए, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जो भारतीय है वो क्या सोचते हैं और उनको क्या करना चाहिए। मुसद्दस की जो कहना चाहिए आधार भूमि है वो कुछ हद तक धार्मिक है। इनके यहाँ वो राष्ट्र के साथ
1: राष्ट्र की भावना,
0: यानी देशबोध,
1: हाँ,
0: देशबोध को जगाने वाली जो बात है इनके यहाँ वो दिखाई देती है।
1: प्रोफेसर सुधा मैम, मैं जब बात करती हूँ मैथिलीशरण गुप्त की, उनकी जो नारी दृष्टि है वो एक व्यापक रूप में हम देख पाते हैं, जहाँ पर वो कह सकती हूँ मैं कि छायावादी कवियों से भी ज़्यादा नारी दृष्टि उनकी उज्ज्वल, मैं उदात्त देख पाती हूँ।
2: दरअसल नवजागरण का पूरा एजेंडा स्त्री के बगैर अधूरा है। हालांकि नवजागरण के केंद्र में स्त्री है, कहीं घोषित नहीं किया गया कि स्त्री के लिए नवजागरण था, फिर भी नवजागरण में जिन अंधेरे कोनों में प्रकाश डाला गया, अंधेरे कोनों में रोशनी बिखेरी गई, सबसे अंधेरा कोना स्त्री का था, तो जाहिर है उसे तो आना ही था
1: जी।
2: और ये चेतना बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के नवजागरण में थी, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी इसका असर पड़ा। बंगाल के नवजागरण से, जैसा सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, बंगाल के नवजागरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था हिंदी नवजागरण, हिंदी बेल्ट का
1: जी।
2: और संयोग से हिंदी पत्र पत्रिकाओं और मीडिया का जो संसार था वो बंगाल से ही पनपा। और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ साथ रविन्द्रनाथ की भी बड़ी भूमिका थी
1: जी।
2: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने काव्यर उपेक्षिता,
1: हाँ,
2: एक निबंध लिखा था जिसमें उन्होंने लक्षित करके बताया था कि कविता में, यानी जो हमारी माइथोलॉजिकल कविता है, उसमें कितनी स्त्रियां उपेक्षित रह गईं, संभावनाशील स्त्रियां उपेक्षित रह गईं, और उन उपेक्षित स्त्रियों को कैसे उनके योग्य स्थान समाज में और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नहीं मिल पाया। इस लेख से महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसको मैथिलीशरण गुप्त जी से कहा, और गुप्त जी इस कार्य को जैसे सिपाही अपने सूबेदार के कहने पर या नेता के कहने पर सन्नद्ध हो जाता है कार्यपूर्ति के लिए, गुप्त जी सन्नद्ध हो गए और उन्होंने एक के बाद एक जितनी मिथकीय चरित्रों की महत्वपूर्ण स्त्रियां थी उन सबके ऊपर उन्होंने लिखा, और इतना शानदार लिखा कि आज भी चाहे हम किसी भी पंक्ति को उठा लें जब बात करते हैं तो गुप्त जी एक मानक के रूप में सामने खड़े हो जाते
1: बिल्कुल,
2: हैं। चाहे जयशंकर प्रसाद की पंक्ति उठा लें या बाद के परवर्ती लेखकों कवियों की पंक्ति उठा लें, लेकिन मानक के रूप में हमारे सामने पहले मैथिलीशरण गुप्त खड़े होते हैं कि उन्होंने कैसी यशोधरा गढ़ी थी, उन्होंने कैसी कैकेयी गढ़ी थी, उन्होंने कैसी उर्मिला गढ़ी थी, कैसी सीता गढ़ी थी, कैसी राधा गढ़ी थी, कैसी यशोधरा गढ़ी थी। फिर आप देखिए कि बाद के लोगों ने जब कहा कि अश्रु से भीगे अंचल पर यह संधि पत्र लिखना होगा, जयशंकर प्रसाद ने जब कहा, तब तुलना की जाती है कि गुप्त जी कहाँ तक पहुंचे थे और जयशंकर प्रसाद कहाँ तक पहुंचे। अब जैसे एक चित्र आप देखिए, कैकेयी का जिक्र हम लोग अमूमन जिस तरह से समाज में होता है एक कुटिल स्त्री के रूप में, हालांकि राजरानी थी, कैकेयी के गुण इतने ज्यादा थे, माइथोलॉजी में भी मिथक में भी कैकेयी के गुण इतने ज्यादा बताए गए हैं कि वह एक समर्थ सशक्त युद्ध कला में पारंगत स्त्री थी जो दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कैकेयी को वरदान ही कैसे मिला था? अगर इस प्रक्रिया को जान लें कि वो वरदान जिसके कारण राम को वनवास

0: हुआ और पूरी रामायण की कहानी लिख दी गई। वह कहानी घटित ही क्यों हुई अगर कैकेयी इतनी सशक्त ना होती, इतनी पावरफुल चरित्र नहीं होती माइथोलॉजी में, तो वरदान उसे ना मिलता, इतनी योग्य कुशल ना होती। उसने रथ के पहिए में अपनी उंगली लगा दी और इस तरह से आप समझिए ये रथ केवल मिथकीय रथ है, ध्यान रखिएगा। अभी जब हम सभ्यता संस्कृति के विकास की बात करते हैं तो चैरियट इज मतलब बहुत बड़ा एक उपकरण है सभ्यता के ट्रांसफॉर्मेशन का, और उस रथ के संचालन में कैकेयी की भूमिका कोई छोटी भूमिका नहीं है
1: जी।
0: जब आप हैरोल्ड इनिस को पढ़ते हैं, मार्शल मैक्लुहान को पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का विकास कैसे सभ्यता के विकास को संभव बनाता है। और उस सभ्यता के विकास में एक एक इंस्ट्रूमेंट का, इस घड़ी का, आपके कैलकुलेटर का, आपके कैलेंडर का, आपके सूरज घड़ी का, और इस रथ के पहिए का, रथ के पहिए में भी जो पत्थर का रथ था उसके पहिए का, लोहे के रथ के पहिए का, बेत के रथ के पहिए का, लकड़ी के रथ के पहिए का, अलग अलग सभ्यता के विकास को गति देने में भूमिका है। और उस रथ के पहिए में कैकेयी अपना हाथ लगा देती है और दशरथ को रथ से गिरने से बचाती है और युद्ध कौशल में वो युद्ध संचालन करते हुए जीत जाते हैं, तब खुश होकर ये वरदान मिलता है। कितने उदाहरण मिलते हैं स्त्रियों के युद्ध स्थल पर जाने के, बहुत कम। उसमें कैकेयी थी। उस कैकेयी के मन में किस तरह से दुर्भावना आ गई राम के प्रति और एक लोभ आ गया अपने पुत्र मोह में भरत के प्रति। पुत्र मोह की ही कहानी महाभारत है,
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखिएगा। पुत्र मोह एक ऐसा डायमेंशन है जो महाभारत में भी है और रामायण में भी है।
1: जी,
0: फर्क इतना है कि रामायण स्त्री के पुत्र मोह की कहानी है और महाभारत
1: पुरुष
0: के, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की कहानी है। तो उस पुत्र मोह के, कह सकते हैं, आरोप से या उसके आक्षेप से या उसकी लांछना से स्त्री के लिए जिस एक सामाजिक हेय और निंदनीय पदबंधों का निर्माण होता है, धृतराष्ट्र के लिए तो वैसा नहीं हुआ। मैं ये नई बात आज आपके सामने कह रही हूँ। कैकेयी जिस तरह से एक कलंकित स्त्री के रूप में आ गई, सारे गुण उसके पीछे चल गए। धृतराष्ट्र तो अवगुणों के, कह सकते हैं, कमियों के खान थे, कैकेयी तो नहीं थी। कैकेयी और धृतराष्ट्र में कोई तुलना है?
1: नहीं,
0: कोई तुलना नहीं,
1: नहीं है।
0: दोनों के चरित्र में, दोनों को जिस तरह से महाभारत कार ने और रामायण कार ने खड़ा किया है, कैकेयी सर्वगुण संपन्न स्त्री है और बुद्धि कौशल, विजडम जिसे हम कहते हैं, बुद्धि
1: है
0: और विवेक,
1: हाँ,
0: उससे संचालित स्त्री है। लेकिन कैकेयी के सारे गुण जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं सिर्फ पुत्र मोह। और धृतराष्ट्र का जो स्वयं शुरुआत ही जिनकी कमियों के कारण जिनको राजसत्ता से वंचित किया जाता है, बड़े पुत्र होने के बावजूद भी, और भी बहुत सारी कमियां थी उनमें, लेकिन धृतराष्ट्र के साथ वो कलंक नहीं जुड़ता, बस एक मोह का अंधापन उनका दिखता है। कितना सौम्य है भाषा स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, मजेदार चीज है। यहाँ एक युग कवि की परीक्षा थी कि मैथिली शरण गुप्त कैकेयी को कैसे लाए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कैकेयी के संदर्भ में, तो यहाँ पर वो तुलसीदास को याद कर लीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि सारा दोष गिरा का है, यानी सरस्वती का है। वो जवान पे आ गई, दिन में एक बार आती है और गलत सही जो भी बोल दो वो सच हो जाता है। तो इस तरह से सरस्वती पर दोष डालकर तुलसीदास मुक्त हो जाते हैं, मंथरा के मुंह से वो कुटिल वाक्य कहला देते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी का काम इतने से नहीं चलता, क्योंकि इससे आधुनिक जो पाठक है, आधुनिक जो अध्ययन करता है, आधुनिक जनता है, वो प्रभावित नहीं होती। तो कैकेयी के मन में आता है कि मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने संस्कारों से पाला, इतने सच्चरित्र जीवन की शिक्षाओं को देकर पाला, बढ़िया अस्त्र शस्त्र संचालन सिखाया जिसे, अपने संबंधों को निर्वहन करना जिसे सिखाया, वह मेरा पुत्र अचानक राजा दशरथ के अविश्वास का पात्र क्यों बने? सबको निमंत्रण भेजा, मेरे पुत्र को निमंत्रण नहीं भेजा, उसे ननिहाल वो गया था, उसे छोड़ दिया। और वो कहती है, भरत से पुत्र पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे गे। यानी जो दुख है, कचोट है, कसक है, मर्म व्यथा है, वो ये है कि मेरे जैसे पुत्र, जैसे राम पुत्र हैं आपके, वैसे भरत पुत्र हैं। तो भरत से पुत्र पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे, ये है कसक, ये है दुख। और यहाँ से प्रतिकार शुरू होता है, एक नया डायमेंशन देते हैं जो आधुनिक पाठक के साथ रिलेट हो जाता है।
1: एक और यानी
0: जो पुराना जो चरित्र है, जो चला आ रहा चरित्र है, उसको कैसे नए परिवेश में ग्राह्य बनाया जाए और उसकी जो प्रासंगिकता है, उसकी जो उपादेयता है, वो सिद्ध की जाए। इसी तरह से गांधारी का एक चरित्र, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, जय भारत में द्रौपदी वस्त्र हरण का एक प्रसंग आता है, उस समय सभा में अचानक गांधारी को भी उपस्थित कर देते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है और कृष्ण से वो आह्वान कर रही हैं कि आओ मेरा वस्त्र बढ़ाओ ताकि मैं विवस्त्र होने से बचूं और मेरी रक्षा हो, तो ये तो मिथकीय कहानी है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें नयापन क्या है? नयापन ये है कि गांधारी उस सभा में मौजूद है मैथिली शरण गुप्त जी के यहाँ, और गांधारी क्या कहती है सुनिए। हाय, लोक की लज्जा भी अब नहीं रह गई लक्षित क्या, आज बहू का तो कल मेरा, कटिपट नहीं अरक्षित क्या। ये है नवीनता, ये है नवीन उद्भावना, और उन चरित्रों को भी मनुष्य के

0: रूप में उनकी संवेदनाओं को धड़कने देने का अवसर देना, जो एक बड़े युग कवि की पहचान है। ऐसे ही नहीं ये राष्ट्रकवि कहलाए।
1: बिल्कुल
0: यशोधरा को याद करिए, क्या दुख है सखी वे मुझसे कहकर जाते,
1: बिल्कुल
0: तो क्या अपने पथ की पग बाधा ही पाते। कहके जाते संगिनी का धर्म निभाना चाहती है वो। सहधर्मिणी कहते हैं आप, संगिनी कहते हैं, जीवन संगिनी कहते हैं। जीवन संगिनी का अर्थ ये थोड़ी होता है कि आप एक पक्ष सुनाकर चले जाएं, फैसला लेकर चले जाएं। फैसले साथ साथ लेने होते हैं, क्योंकि एक फैसले का असर जब एक सामाजिक बंधन में कोई दो व्यक्ति होता है तो दोनों पर होता है, किसी एक
1: बिल्कुल
0: व्यक्ति पर नहीं। और वो कहती है कि तुम अपने काम के लिए जा रहे हो, बड़ा नाम कमा के आओगे, लेकिन मेरा जो कष्ट है, जाओ नाथ अमृत लाओ। बुद्ध को कहती है, जाओ नाथ अमृत लाओ, तुम मुझ में मेरा पानी, मेरा स्वाभिमान मुझ में ही रहने दो, तुम अमृत लेकर आओ। जाओ नाथ अमृत लाओ, तुम मुझ में मेरा पानी, कहाँ तुम्हारी गुणगाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हारी जो गाथा पूरा संसार पूरी दुनिया गाएगी, देश विदेश गाएंगे, उसमें मेरी यशोधरा की क्या भूमिका होगी। मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ, अपने पुत्र का पालन करते हुए। तो यह जो स्त्रियों के कष्ट हैं, जिसको अब तक वाणी नहीं मिली थी, उसको मैथिली शरण गुप्त ने इस तरह से इतने सुंदर, बिना किसी आक्रोश के, ये जो बातें हैं इसमें आपको कोई उद्वेग नहीं दिखाई दे रहा, आक्षेप नहीं दिखाई दे रहा, बस अपना पक्ष स्थापन की चेष्टा दिखाई दे रही है। यह एक तरह से रिक्लेमिंग ऑफ द स्पेस है जो
1: जी
0: गुप्त जी अपनी नायिकाओं के अस्तित्व के साथ पाठक के मन में भरना चाहते हैं कि ये यशोधरा भी है। जहाँ गौतम है वहाँ यशोधरा भी है,
1: बिल्कुल
0: जहाँ दुशासन वस्त्र खींच रहा है वहाँ गांधारी भी है, जो ये सोच रही है कि आज बहुत तो कल को मेरा कटिपट कहाँ रक्षित। इसी तरह से उर्मिला भी है।
1: जी। और एक बहुत अच्छी जो चीज है, इनकी जितनी स्त्रियां हैं वो कहीं से कटु नहीं होती हैं अपने
0: यही चीज मैं आपसे कहना चाह
1: हाँ
0: रही थी कि
1: कि
0: कोई उस तरह
1: उन्होंने
0: का आक्षेप नहीं है,
1: हाँ उन्होंने अमृत ही दिया
0: अमृत ही
1: उन्हें
0: दिया। हाँ
1: जी।
0: हाँ
1: आज ये जो चर्चा थी मैथिली शरण गुप्त की, वो इतने अच्छे मोड़ पे पहुंच गई थी जहां से हमें वापस आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की सीमा अपनी होती है, इसलिए जो है इस परिचर्चा को यहाँ विराम देते हुए श्रोताओं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, आप दोनों का भी धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: प्रोफेसर
0: बहुत
1: सुधा
0: बहुत
1: मैम
0: धन्यवाद,
1: और प्रोफेसर हेमंत कुकरेती जी,
0: बहुत
1: आपका
0: बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद पूनम
1: धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।
3: अतीत का आदर्श, भविष्य का उत्कर्ष, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुकरेती, लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर पूनम सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रही थी डॉक्टर पूनम। और आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्री दीपक दीप।
4: 16 अगस्त 2026 को हिंदुस्तानी भाषा अकादमी एवं डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकों का समागम विमर्श और सम्मान समारोह डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के नालंदा सभागार में गर्मापूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली NCR की विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों, साहित्यकारों, संपादकों और सांस्कृतिक कर्मियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि सिंह, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर वर्तिका नंदा, भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री कर्नल आकाश पाटिल मंचासीन रहे। इसी दिन दिनांक 16 अगस्त को ही नवल रश्मि एक भोर नई साहित्यिक संस्था द्वारा राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन नांगलोई में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली NCR के तमाम कवि कवित्रियों ने अपने काव्य पाठ से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में शानदार त्रिभाषा एक शाम वतन के नाम का आयोजन किया गया। शांति मानस फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत गजलों की संगीतमय प्रस्तुति और सरस्वती वंदना के बाद शुरू की गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों से आए कवि शायरों ने देशभक्ति के साथ विविध रंगों से सजे अपने बेहतरीन कलाम सुनाए। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर रूबी मोहंती, श्रीमती रेणु हुसैन, इंदु राज निगम, उषा मुंशी, मनोज अबोध, डॉक्टर खुर्रम नूर, अंजलि अदा, अनिमेय शर्मा, आतिश आलोक, अविरल गुलाम रसूल देहलवी, आनंद कुमार मंदिरा घोष, सरफराज अहमद, फराज देहलवी, सज्जाद अख्तर, डॉक्टर वसीम राशिद, संतोष कुमार तिवारी, डॉक्टर सफीना, राजेंद्र निगम राज, डॉक्टर अखलाक, फरीद अहमद फरीद आदि ने काव्य पाठ किया।

0: कार्यक्रम का संचालन कृष्णा शर्मा दामिनी ने किया और बेहतरीन संयोजन अंजलि अदा और डॉक्टर रेणु सहनवाज ने किया। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं के लिए संगीत और सावन गीतों का आयोजन भी किया गया। 16 अगस्त को ही प्रस्तुति खुला मंच द्वारा प्रतिष्ठित कहानीकार तेजेंद्र शर्मा के फरीदाबाद आगमन पर उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति खुला मंच के तत्वावधान में लेखिका अनीता वर्मा की दो पुस्तकों शेष अशेष डायरी के पन्ने व ऊंच नीच का पापड़ बाल गीत संग्रह का लोकार्पण व परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री तेजेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता प्रतिष्ठित साहित्यकार सुश्री अलका सिन्हा रही। अन्य वक्ताओं में श्री ऋषि कुमार शर्मा, पूर्व उप सचिव हिंदी अकादमी व रेडियो उद्घोषक ने पुस्तक पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ रचना गोयल की सरस्वती वंदना से हुआ। वरिष्ठ साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह पुस्तक निर्धारित ही प्रारूप से इतर नवीन प्रतिमान रचती हुई विमर्श करती है। इस अवसर पर दिल्ली व फरीदाबाद के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में डॉक्टर मंजू गुप्ता, मृदुला भटनागर, डॉक्टर अरुणा गुप्ता, सुमन माहेश्वरी, आशमा कौल, अंजू दुआ जैमिनी, सुश्री बबीता, रचना गोयल, प्रोमिला काजी ने विशेष उपस्थिति दर्ज की। इस आयोजन में सभी रचनाकारों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। दिनांक 18 अगस्त 2026 को नारायणी फाउंडेशन द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन कविनगर गाजियाबाद में किया गया। कार्यक्रम 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक अनवरत चलता रहा, जिसमें श्रोताओं ने कविताओं का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दी। कवियों में शामिल सर्वश्री प्रवीण शुक्ल ने हास्य की फुलझड़ियां बिखेरी, सुदीप भोला ने ओज भरा, मणिका दुबे, स्वयं श्रीवास्तव, शायरा कीर्ति और पल्लवी मिश्रा ने श्रृंगार के गीत गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और खूब तालियां बटोरी। चलते चलते आपको ये जानकारी देते चलें, आज अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच और हिंदी साहित्य परिषद राजधानी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में सकारात्मक साहित्य मंच का वार्षिक उत्सव दोपहर 2 बजे से राजधानी कॉलेज राजा गार्डन में होगा। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की जाएगी।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे श्री दीपक दीप। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गेना भाई पटेल, जो कि एक समाज सेवी और पद्मश्री से सम्मानित है, उनकी वार्ता, उनसे भेंट की है और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है काजल सूरी की। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। आपको बता दें साथियों कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं काजल आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत की, जिन्होंने अपने नवाचार, परिश्रम और कृषि के प्रति समर्पण से न केवल किसानों की तकदीर बदली बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया। आज के इस हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कृषि वैज्ञानिक गेना भाई पटेल जी। आइए इनसे जानते हैं इनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में। गेना भाई पटेल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो मैं आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कृषि की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ।
4: नमस्कार मित्रों, मैं गुजरात से लाखनी तहसील से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमारा नया वाव थराज जिला बन गया है। वहाँ से मैं एक छोटा गाँव सरकारी गोलिया गाँव है, वहाँ से आता हूँ। और मेरे पिताजी भी किसान थे, उन्होंने भी वो किसानी करते थे। मैं 5 भाई है और एक बहन है। 5 भाई में मैं सबसे छोटा हूँ
3: जी।
4: और मुझे 12 महीनों के टाइम के बाद में मुझे पोलियो हो गया था। तो मेरे पिताजी मेरे

0: भाई और मेरी माँ बहुत चिंता करती थी कैसे इसका गुजारा होगा।
1: जी
0: लेकिन हमारे भाइयों ने और हमारे पिताजी ने हमें हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके गए।
1: जी
0: मेरे बड़े भाई कंधे पे बैठा के वो
1: वाह
0: लेके
1: क्या
0: जाते थे। तो
1: बात।
0: मैं 11 तक पढ़ा हूँ, 12वीं कक्षा तो मैंने ये बेटा बेटियों को जब मोटिवेट करने के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप घबराइए मत। 12वीं कक्षा मैंने 40 साल के बाद में पास की है।
1: हाँ
0: हाँ, तो
1: जी
0: कि बेटा बेटी क्या है वो आपघात कर लेते हैं, तो उनके लिए कि कोई वो ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य नक्की करते हैं तो वो उसके पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद में 12 तक ये पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया। और मेरे पिताजी मेरे भाई जो एक कृषि करते थे तो उनमें क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा आय नहीं होती है। राई लगाते हैं, कस्टर्ड लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, पशुपालन करते हैं,
1: जी
0: तो उसमें पैसे इतना किसान को जितना चाहिए इतना पैसा नहीं रहता है। तो हम सोचते थे कि किसान के लिए क्या किया जाए कि हमारे पड़ोसी का भला कैसे हो।
1: बिल्कुल
0: हमारा तो होता ही है लेकिन
1: बिल्कुल
0: पड़ोसी का अच्छा होना चाहिए। हमारा पड़ोसी मजबूत होगा तो हम मजबूत रहेंगे। तो
1: जी
0: हमने सोचा कि हमने उसी टाइम आज से करीबन 1990 में मैंने वो मस्टर्ड का यानी राई का कोऑपरेटिव मंडल बनाया और उनकी वजह से किसानों को रासायनिक खाद है उनका सीड से है कम लागत में उसको अच्छे अच्छा सीड मिलता था। फिर बाद में हमने दूध का डेयरी बनवाया तो गांव के किसान दूध का व्यापार करते थे
1: जी
0: लेकिन उनसे भी हम जो चाहते थे वो नहीं होता था।
1: जी
0: तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी वजह से किसान के घर में बहुत पैसे आए। तो हमने बहुत सर्च किया, हमने बहुत भारत भ्रमण किया, यानी तीन
1: जी
0: चार राज्यों में मैं घूमा, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, यूपी गया। फिर मैंने देखा कि ये अनार की खेती बहुत अच्छी है।
1: जी जी
0: तो उसी टाइम हमने हमारे भाइयों को भी बोला कि ये करने जैसा है और वो मेरे को विश्वास करते थे कि
1: जी
0: नहीं ये बोलता है तो कुछ होगा।
1: बिल्कुल
0: तो हमने उसी टाइम 2004-05 में अनार के पौधे 18,000 पौधे ला के लगा दिए हम।
1: 18,000 कहाँ
0: हाँ,
1: से लाए आप
0: महाराष्ट्र से
1: और कहाँ लगाया आपने?
0: हम हमारे खेत में
1: अरे वाह 18,000 बहुत बड़ा
0: पौधे।
1: नंबर है ये। जी
0: एक क्योंकि इसका मैं एक सोच ऐसी रखता था कि अपने को एक ट्रक तो होना ही चाहिए, मान
1: जी
0: एक ट्रक भर के हम कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन किसान के पास से छोटे रूप में जो माल रहता है तो उसको बेचने में बहुत तकलीफ होती है।
1: जी
0: फिर पौधे के लगाने के बाद में बहुत सारी जब हम कुछ नया करते हैं तो किसान लोग हुए कि कोई भी लोग रहते हैं वो बहुत नेगेटिव बात करते हैं
1: जी
0: कि होने वाला नहीं है।
1: शुरुआत में
0: हाँ, शुरुआत में कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये
1: जी
0: ऐसा है,
1: जी
0: ऐसा है, लेकिन वो लगा दिया। उसके बाद में 3 साल के बाद में हमारे पौधे में माल आ गया,
1: अरे वाह फल आ गया
0: फल आ गए।
1: उसमें।
0: क्योंकि पहले तो हमने अनार भी देखा ही नहीं था, सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई फ्रूट देखे थे पहला, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं थी।
1: अरे वाह
0: तो हमारी यूनिवर्सिटी है, सरदार कृषि नगर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी हमें गाइड किया। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिक वैज्ञानिकों ने हमें गाइड किया, हमारे जिला के खेतीबाड़ी अधिकारी लोग रहते हैं उन्होंने भी गाइड किया। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब कृषि मेले लगाए थे उसी वक्त तो उन्होंने से बात किया था कि सर ये किसानों का बहुत दिक्कत वाला मामला है पानी के बारे में। तो हमारे क्या है, हमारे बनासकांठा ड्राई एरिया है बिल्कुल, तो वहाँ पे पानी का कोई वो नहीं रहता है। तो इसीलिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों के लिए 50% सब्सिडी बना दिया ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के लिए। तो उसकी वजह से छोटे किसानों को बहुत फायदा हुआ। हमारे लगाने के बाद में 3 साल के बाद में जब हम पैसे मिलने लगे तो किसान भाइयों ने भी लगाना शुरू कर दिया, वो आने लगे हमारे खेत पे। तो उसी टाइम करीबन 10 साल में मेरे फार्म पे 80,000 किसानों ने मुलाकात की है
1: अस्सी हजार
0: मेरे फार्म के। किसान लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी, बसें आती थी, बाइक पे आते थे, सभी आते थे। तो हम सुबह से 6:30 बजे से बैठ जाते थे और किसान भाइयों को बताते रहते थे कि आप ऐसे खेती करो, आप ऐसे करिए खेती करो। हमारे बड़े भाई है जो फील्ड में बताते थे हमारा फार्म। तो फिर उसके बाद में किसान लोग जुड़ने लगे तो हमने सोचा कि किसानों को हेल्प करना चाहिए। तो हमने वो नर्सरी बना दी अनार की, तो उसमें नई मुनाफा नई नुकसान ऐसी तरह से हमने किसानों को पौधे उनको लगाने के लिए पौधे देने लगे। फिर उस जो कोई गरीब किसान है उसके पास से हमने पैसे नहीं लिए और सभी किसानों को बोला कि आप लगाइए। और हमारा ट्रैक्टर रहता था उसकी वजह से उनको छिड़काव करना है दवाइयाँ वगैरह का तो हम करते थे बिल्कुल फ्री में, आप काम कीजिए। और ऐसी तरह से हमारी ये अनार की क्रांति काम आ गई।

0: फिर बहुत सारे किसानों ने लगा दिया। हमारे बनासकांठा में करीबन 11,000 हेक्टेयर में लग गया, फिर हमारे कच्छ में 11-15 हजार हेक्टेयर में लग गया, फिर हमारे
1: अनार।
0: अनार, फिर हमारे पास में राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, जालौर जिला है, जैसलमेर जिला है, वहाँ पे बहुत सारे अनार लगे। जो रेती के टिम्बे रहते थे वहीं पे अनार का पौधे ले आते रहे
1: क्या
0: अभी
1: बात,
0: तक।
1: क्या बात। तो
0: जी
1: इसके लिए क्या करना पड़ा आपको? जो हमने की रेतीली खेतों में, रेतीली जो एरिया था वहां भी अनार की खेती
0: हाँ,
1: की,
0: उसे वो
1: मेहनत
0: एक
1: लगी होगी बहुत उसमें, और चैलेंजेस भी आए होंगे।
0: बिल्कुल चैलेंज, लेकिन ये जब ड्रिप इरिगेशन आ गया उसकी वजह से किसान का सब मेहनत वो था वो कम हो गया, क्योंकि पानी हर पौधे के उसमें जाता है, तो
1: जी
0: उसकी वजह से कोई दिक्कत वाला मामला नहीं रहा और किसान इतने खुश हो गए कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान अनार के किसान, 1 हेक्टर की मैं बात करता हूँ, तो 1 हेक्टर में 1,000 पौधे लगाते थे,
1: जी
0: तो एक पौधे से 25 से 30 किलो माल आता है। मेरा तो सरेराज 50 टन माल निकला था, लेकिन 25 टन मानते हैं हम, तो एक पौधे से 25 किलो माल मानते हैं और 100 रुपया 1 किलो की आय होती है, तो एक पौधा 2500 रुपया देता है,
1: 25 रुपये देता है,
0: और
1: ठीक है।
0: 1,000 पौधे, 1,000 × 2500 यानी 25 लाख रुपया 1 हेक्टर से
1: एक
0: किसान
1: हेक्टर
0: को
1: से हो
0: मिलना है।
1: जाता है, तो इतना आपने किया,
0: हाँ
1: बहुत बड़ा काम है ये,
0: जी
1: बहुत बड़ा काम। तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपकी जो सोच रही है उसमें समाज और किसानों के प्रति जो आपका, आपकी संवेदनशीलता थी वो कैसे आई, कैसे आपकी सोच इस तरह से निकली?
0: मैं, मेरे पिताजी ने मुझे वारसा में दिया है ये, तो कि अपने किसी को हेल्प करना है, कोई जो गरीब किसान है कि कोई गरीब और भी है कुछ भी, तो उसी के लिए काम करना है। वो तो हम परंपरा से चली आती है
1: जी
0: कि हमारा दुश्मन भी हो तो भी उसको अच्छा रास्ता
1: क्या
0: बताना
1: बात, वाह वाह। जैसे
0: है।
1: हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया की जो बात करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: है
1: आपका एक तरह से आपने इसी स्किल को डेवलप किया और अनारों की खेती शुरू कर दी जो आज इस मकाम पर पहुंची है। तो लोग आपको एक कर्म योगी के रूप में देखते हैं, क्या आप खुद को ऐसा मानते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
0: मैं ऐसा तो कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है, जो काम करते हैं वो उनको परसेवा लगता है, लेकिन जो परसेवे से नहाते हैं उसका ही ये काम होता है, इतना पसीना ज़्यादा निकलेगा इतना पैसा ज़्यादा
1: क्या
0: आएगा।
1: बात, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप अनुशासन से रहोगे, जितना आप पैशन को लेकर काम करोगे, उतना
0: बिल्कुल
1: आपको फायदा होगा, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतनी आपको खुशी भी मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो आपके द्वारा किए गए जो मेन कृषि प्रयोग हैं और जो शोध कार्य हैं जिनसे किसानों को खास तौर पे लाभ हुआ है,
0: हाँ
1: उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: हाँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तो उस टाइम जब सीएम थे उसी टाइम में ये किसानों के लिए उन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन लगाया था,
1: जी,
0: ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी दी थी, तो हर किसान के, पहले हम खेत में जाते थे तो उनको ड्रिप इरिगेशन करवाते थे, तो हमारा बनासकांठा जिला है वो ड्रिप इरिगेशन में नंबर वन हो गया। फिर उसके बाद में हम फर्टिगेशन के लिए जो किसान को उनको खाद देना है, उनको क्या करना है, तो उनके पौधे में उसके रूट में सीधा हमारा जो प्राकृतिक तरीके से हम जीवामृत बनाते हैं, तो वो जीवामृत सीधे सीधा ड्रिप इरिगेशन से जाता है, वो एक
1: जी
0: हमारा वो है। फिर पॉलीथिन मल्चिंग जो इसको खरपतवार निकलता है, तो उसकी वजह से वो पौधे के आसपास में पॉलीथिन मल्चिंग कर देते, तो उसमें नमी
1: नमी रहती है।
0: रहती है और पौधा अच्छी तरह से उसमें वो खरपतवार नहीं होता है।
1: जी
0: फिर हमारे जो पौधे हैं उनके ऊपर जो पक्षी है वो जो बगाड़ते
1: हाँ,
0: हैं, तो
1: खा
0: उसके,
1: जाते हैं।
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: उसके लिए हम बर्ड नेट लगाते हैं, तो
1: अच्छा,
0: बर्ड नेट की वजह से उसके ऊपर छांव रहती है और जो फ्रूट रहता है वो बहुत एकदम
1: सही,
0: हेल्दी
1: ठीक
0: और
1: रहता है।
0: सही
1: हाँ ठीक रहता है।
0: क्वालिटी वाला
1: जी
0: निकलता है।
1: जी
0: वो एक हमने किया था। एक तोता हमारे जो अनार में बहुत बिगड़ करता है, जो अच्छा फ्रूट रहता है उसके ऊपर आके वो चांच मारता है, तो हमने क्या किया कि तोते को भी पेट तो भरना है,
1: हाँ
0: तो उसके हमने अनार के साथ में हमने गेहूं लगवा दिए, तो
1: अच्छा,
0: तोता जब वो पहला, उसको धान चाहिए तो वो गेहूं की वो फली
1: बाली जो
0: काट
1: होता है, हाँ
0: के
1: हाँ
0: लेके
1: खाने के
0: जाता
1: लिए।
0: है और उसका पेट भरता है। और जो इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्टर पट्टी एक आता है जो ऐसे वो पवन से हिलती है, उसके सूर्य के प्रकाश से उसके तोते के आँख में वो प्रकाश पड़ता है तो भी भाग जाता है। फिर हमने एक मिनी ट्रैक्टर बसाया, तो मिनी ट्रैक्टर की वजह से हमारा जो ये जीवामृत है या हमारा जो कोई स्प्रेड है, तो वो ट्रैक्टर की वजह से छोटे ट्रैक्टर से वो स्प्रेड हो जाता है। फिर हमने ये जीवामृत वाला आपको बताऊं तो जीवामृत में कैसा होता है कि हमारी गाय होती है उसमें 10 किलो गोबर लेना है, 10 किलो यूरिन लेना है, 2 किलो बेसन लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है, 500 ग्राम सजीव माटी होती है, वो लेके उसको एक ड्रम में 200 लीटर में डालते हैं और

0: उसके बाद में वो स्प्रेड बनता है
1: जी।
0: तो हर हफ्ते में वो देना है, तो उसकी वजह से हमें कोई रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं
1: है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसे पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद देने की जरूरत
0: हम डालते ही नहीं है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, जो ट्रेडिशनल खेती होती है, जो परंपरागत खेती होती है, और जो आधुनिक तकनीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: परंपरागत खेती रखनी चाहिए, और हम तो एक ही बात बताने की, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि अपने को रागी है, ज्वार है, हमारा जो हमारा परंपरागत जो धान है हमें ये प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए, उसमें जहर नहीं आता है।
1: बिल्कुल, आपको जब देश का जो इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपको प्रतिष्ठित अवार्ड जो आपको मिला पद्मश्री, तो उस पल आपका अनुभव कैसा रहा, क्या बदलाव आया?
0: क्या बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ, और उन्होंने जब एक किसान के बेटे को पद्मश्री जब दिया, कोई इतनी सरकारें आती आती गई, गए सब गए, लेकिन किसी ने कोई किसान को जो रियल गांव में काम करते हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी समझ सकते, तो उन्होंने जब मैंने अप्लाई किया था 2017 में अप्लाई किया, उसी टाइम हमने वो करके भूल गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2017 के दिन सुबह में मुझे 6:30 बजे कॉल आया, तो पहले तो बिल्कुल वो हो गया कि हमारा कोई उठ गया, क्योंकि सुबह में कॉल किसी का ऐसे ही गलत कॉल आता
1: है, डर लगता है।
0: फिर बाद में हमें उन्होंने बधाई दी कि आपको बधाई हो गया ना भाई, आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है, तो फिर बाद में मुझे 26 जनवरी को ये इसका ऐलान हो गया पद्मश्री का, और 13/12/2017 के दिन माननीय प्रधानमंत्री की हाजिरी में माननीय प्रणब मुखर्जी से कर कमलों से मुझे ये पद्मश्री सम्मान दिया गया।
1: और क्या बदलाव आया उसके बाद आपके जीवन में?
0: उसके बाद में तो हमें कोई जानता नहीं था, और सभी लोग जानने लगे कि ज्ञानापी कौन है, सब मीडिया वाले आ गए, सब अखबार वाले आ गए सभी, और फिर तो बाद में किसान लोगों को बहुत हर्ष हुआ कि नहीं वाकिफ में इसका
1: और आप जिम्मेदारी की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती है। कृषि के लिए बहुत काम किया,
0: बिल्कुल। उनके बाद में तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा काम
1: और जिम्मेदारी दुगनी बढ़ गई,
0: बिल्कुल।
1: तो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है, क्या कहते हैं
0: आने वाले इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक तो हमने एक FPO का गठन किया है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसका एक हमने संघ बनाया है, अभी हमारे साथ में 20-21 FPO जुड़ गए हैं, तो सभी हम मिलकर काम करते हैं, किसान भाई की क्या जरूरत रहती है, उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको जो चाहिए वो FPO के माध्यम से हम पूरा करते हैं, उसको अच्छा सीड चाहिए तो भी मिलते हैं, और अभी हम हाईटेक खेती पे जाना चाहते हैं।
1: क्या बात,
0: तो वो उसमें क्या है, उसमें उर्वरक जो रहते हैं प्रबंधक वो हम करने ऑटोमेशन ड्रिप लगाएंगे कि इनको कितना पानी चाहिए,
1: हाईटेक
0: करेंगे।
1: तो गेना भाई पटेल जी, आपने अमूल्य विचार और अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, आज हमने जाना कि समर्पण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति से कैसे खेती को लाभकारी और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ मैं काजल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि में आज आपने सुनी गेना भाई पटेल, जो कि एक समाज सेवी और पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनकी बातचीत काजल सूरी के साथ। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति काजल सूरी। और श्रोताओं, अब आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के बीच टूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 440 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत का पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उफ, क्या नगमा है। जी हाँ, उफ इसलिए क्योंकि इतना खूबसूरत गीत है ये कि कुछ कुछ होने लगता है भाई। इस ऐसे गीत जो दिल को ना कुछ गुदगुदा जाते हैं और उन पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं। आपके जीवन में ऐसे कुछ खास पल रहे होंगे जब ये गीत आपकी बहुत मदद कर चुके होंगे। तो आज तो अपने साथियों से बहुत सारी बातें ही करेंगे, लेकिन हाँ, इस गीत के बारे में बात करूँ तो क्या बात, मुझे लगता है आपके मुँह से भी यही शब्द निकला होगा, वाह क्या बात, सुबह सुबह इतना खूबसूरत गीत सुनने को मिल गया है। तो इस 90 के गाने यानी 1990 के दशक के ये जो गाने थे ना, ये सीधे दिल तक पहुंचते थे और ऐसा जादू चलाते हैं ना ये आज भी, कि आज के जो युवा पीढ़ी है जिसे हम जेन जी और जेन अल्फा कहते हैं, वो भी इसके मुरीद हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रील्स वो इन ऐसे ही 90s के गानों को और पुराने गानों पर बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो ऐसे ही बने रहें आप हमारे साथ और उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आप हमारा शो सुन रहे हैं। बहुत सारे साथी अपने घर के कामों को निपटाने में व्यस्त होंगे, कुछ अपना काम कर रहे होंगे और कुछ आज रविवार है तो बिल्कुल अच्छे से अपने दिन की आराम आराम से शुरुआत कर रहे होंगे और इस कार्यक्रम को सुनते हुए या तो नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ता बनाने की तैयारी या फिर दिन के लिए क्या करना या कहीं जाना है, ये सब दिमाग में चल रहा होगा। तो इतनी सारी जो उलझने, इतने सारे काम जो करने हैं, अगर इनके साथ म्यूज़िक की डोज मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है, दिल्ली में आज सुबह सुबह ही बारिश हुई है और आपके शहर, आपके गांव में क्या मौसम का हाल है ये तो आप हमें बताएं ही, लेकिन साथ में आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि 90 के गाने, जो 90 के दशक के गाने थे, वो आपकी कभी किसी मोड़ पर कितनी मदद कर पाए। क्या आपको अपनी दिल की बात किसी को कहने के लिए इन गानों का सहारा लेना पड़ा? अगर गानों का सहारा लिया तो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे, कितनी मदद की इन गानों ने, आज का सवाल आपसे यही। तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगले एक घंटे तक यानी 11 बजे तक तो मैं आपके साथ अब बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें करने वाली हूं और एक से बढ़कर एक ऐसे ही रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे गुदगुदाने वाले, खट्टी मीठी यादों को ताज़ा करने वाले गीत होंगे। और ऐसा ही अगला गीत है कुमार शानू की आवाज़ में, ये बहुत ही खूबसूरत गीत आशिकी फिल्म से। जी, आपने मुझे लगता है म्यूजिक से जरूर पहचान लिया होगा कौन सा गीत है ये। जी हाँ, नहीं समझ में आया, चलिए आप समझिए। और आपको बता दूं कि आप जो आप हैं आपके अपनी दोस्त सुषमा के साथ। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ, पूरे 11 बजे तक रहूंगी आपके साथ ही। और आपकी मेल्स का रहेगा इंतजार ipradiodelhi@gmail.com पर।

सनम चाहिए आशिकी के लिए, इस सदाबहार गाने को सुनकर किस किस के दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो गई हैं। सच में ना, 90 के दौर की बात करें तो रोमांस ही जहन में आता है, दिमाग में कुछ कुछ होने लगता है और दिल में भी हलचल हो जाती है। तो कुमार शानू की आवाज़ और नदीम श्रवण की ये धुन दिल को छू जाती है। कैसी लगी आपको ये धुन, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। इसी प्यार भरे एहसास के साथ हम आगे बढ़ाते हैं आज का अपना कारवां। और जो सवाल हमने आपसे पूछा कि कभी आपने 90s के जो गीत हैं उनका सहारा लिया अपने दिल की बात कहने का, क्योंकि 90s के गीत में प्यार मोहब्बत की बात तो हुई ही, लेकिन साथ साथ और भी

भरी जज्बातों को कहने के लिए बहुत सारे ऐसे गीत हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम प्यार मोहब्बत की ही बात करें तो भाई कहते हैं ना कि हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि कुछ अच्छी चीज़ें उसके सामने आए। तो हम तो यही कहेंगे कि जब आपको लगे आप किसी को चाहते हैं मन ही मन, या कहते ना कि एक अच्छा साथी उसे मिले, और ऐसे गीतों के जरिए अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी भावना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गीतों का सहारा लेके अपनी बात दिल की पहुंचा देते हैं उस तक। और आपने कभी ऐसा किया है तो ज़रूर बताएं। और जो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा आए, एक अच्छा साथी आए जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सकें, जो आपको अच्छा लगता है और आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, या ऐसा कौन सा गाना था जिसका सहारा लेकर आपने अपने दिल की बात उन तक पहुँचाई, ज़रूर बताएं। आपका अपना शो है, आपका अपना कार्यक्रम, आपकी पसंद, और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा। और अगला गीत जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, लव स्टोरी फिल्म से गीत चुना है मैंने आपके लिए, अनुराधा नहीं बल्कि कौन, ये तो आप पहचाने, अमित कुमार और कौन है साथ में, ये थोड़ा गेस करें, थोड़ा सा सस्पेंस। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गीत लव स्टोरी फिल्म से।

बहुत सारी मेल्स अब हमारे पास आ चुकी हैं, बहुत सारे संदेश हम देख रहे हैं अपने इनबॉक्स में। तो सबसे पहला जो मेल मैं ले रही हूँ ये है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। ये लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें नगमे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए 90s की बात होती है तो 90 के दशक में तो ऐसे भी दिल में कुछ कुछ होने लगता है, ऐसे गीत हैं और सच में चेहरे पे ही उन फिल्मों और उन गीतों का एहसास दिख जाता है, एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं जब हम इन गीतों को सुनते हैं। तो ये लिखते हैं कि पुराने गाने के अलावा 90 के दशक के गीत भी बहुत बेहतरीन और कर्णप्रिय रहे हैं। गीतकार और संगीतकार और गायक बहुत ही अच्छे अच्छे नगमे पेश किए हैं। प्रेम, प्यार और सुंदरता से ओत प्रोत नगमों के अलावा गमजदा गीतों को भी बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। ऋषि कपूर के फिल्म से इन्होंने गीत सुनना चाहा है, तो अगला जो गीत है जो आपने फरमाइश की है इसी फिल्म का गीत मैंने लाइनअप करके रखा है जो आपको सुनने को मिलेगा। कुछ और साथियों के मेल्स मैं भी शामिल कर रही हूँ उसके बाद। और अब देखिए अगला जो संदेश है ये है बिट्टू भाटिया का, झज्जर हरियाणा से रीटा भाटिया और रजत मयंक भाटिया के साथ ही इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में हमें शामिल करें। और अनिल मोहन है, इन्होंने संदेश भेजा है हमें उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक के साथ। ये संदेश इन्होंने पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजा और ये लिखते हैं कि 90 के दशक के दौरान आकाशवाणी दिल्ली यानी युववाणी से फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हुए मैंने इन सभी गीतों को शामिल किया। तो भैया आप तो हमारे साथ ही हमारे स्टेशन पर काम कर चुके हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि आप हमारे सीनियर्स हुए। और इन्होंने लिखा कि कैसेट के उस दौर को भुला पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और सुषमा जी आपने ऐसे गीतों को शामिल कर हमारी यादों को एक बार फिर से तरोताज़ा कर दिया है। बहरहाल हमेशा की ही तरह एक बार फिर से कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ की, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गीत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कैसेट्स को का जिक्र करके ना मेरी बातें मेरी यादें भी ताज़ा कर दी, क्योंकि हम भी इतने ही फ़ैन होते थे और हमारे पास बहुत सारी कैसेट्स, आज भी मेरे पास बहुत सारी कैसेट्स रखी हुई हैं। मुझे पता है उनका कोई इस्तेमाल नहीं है और मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके ध्यान में आपकी जानकारी में कोई ऐसा काम है जहाँ पर उन कैसेट्स का इस्तेमाल हो सकता है तो ज़रूर हमें बताएं, मैं अपनी कैसेट्स वहाँ ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कैसेट्स हैं, क्योंकि मैं भी म्यूज़िक की बहुत दीवानी थी और आज तक मैंने संभाल कर रखा है उन सभी कैसेट्स को। तो शुक्रिया, आपने भी मेरी याद को ताज़ा कर दिया। अगला संदेश है ये है हरजिंदर सिंह भाटिया जी, इन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं कि हाँ ये सत श्री अकाल, हैप्पी वीकेंड, हमेशा खुश रहे, तो आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आपको भी। ये लिखते हैं कि पूरे परिवार के साथ मैं प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है और इनको मेरी आवाज़, शुक्रिया शुक्रिया आपने मेरी तारीफ कर दी, मेरा तो पूरा दिन बन गया, प्रोग्राम तो बना ही बना, पूरा दिन भी बन गया। स्टेशन रोड जमशेदपुर से इन्होंने ये लिखा है और इन्होंने मैंने तो आपसे कहा था आप बताएं 90 के दशक के ऐसे कौन से गीत हैं जिनके जरिए आपने अपने दिल की बात अपने साथी तक पहुंचाई हो या किसी और को। बहुत सारे गीत हैं ऐसे, जरूरी नहीं कि आप अपने जो लव है आपका वो आप एक मेल और फीमेल का ही होगा, और भी बहुत सारे गीत हैं, जैसे कि हमारे एक और साथी की हमने मेल अभी शामिल की जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर किसी का गुस्से का इजहार भी करना तो उसके लिए भी गीत है, हंसी खुशी के लिए भी गीत है, अपनी और दूसरी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के भी गीत हैं। ऐसा कुछ किया है तो जरूर बताएं हमें। हम और साथियों से भी कह रहे हैं जो हमें थोड़ा सा लेट ट्यून इन किया, जिन्होंने और लेट से सुनना शुरू किया, उनके लिए भी हम ये कह रहे हैं कि आप जरूर हमें बताएं। हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com, इस पर हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। और हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया के साथ इन्होंने अपना संदेश भेजा था, जिन जो अभी हमारे साथी थी हरजिंदर जी। बिट्टू गगनेजा जी ने भी संदेश भेजा है, पूनम गगनेजा, प्रिया विशाल, दिशानी और निमित आहूजा के साथ
इनको भी इन्होंने सिर्फ अपना नाम सुनना चाहा है। तो अगला गीत आप सबके लिए डेडिकेटेड है हमारी तरफ से। बोधराज खोरवाल जी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी और भानु प्रकाश गीतिका खोरवाल के साथ इन्होंने संदेश भेजा और अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। साथियों और भी बहुत सारे संदेश आए हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे। और एक और संदेश मैं ले रही हूँ अगला गीत सुनवाने से पहले। ये लिखते हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ मौसम लुक्का छुपी का खेल खेल रहा है, पल में बारिश पल में धूप, वैसे हमारे यहाँ बरसात अभी तक बढ़िया हुई है। सुषमा जी एक गीत, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मेरे लिए बहुत करीब है ये दिल के, तो कोशिश करूंगी आपकी पसंद का ये गीत सुनवाने की का। अगर ये ना हो सके तो कुछ और गीत जिंदगी पर हो पाएगा ना, चलेगा ना आज, क्योंकि देखिए कोशिश तो रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी आपकी पसंद का गीत सुनवाने का भी। और ये लिखते हैं कि ये गीत मुझे बहुत हिम्मत देता है, जब भी मन उदास होता है तो मैं इसे कई बार सुनता हूँ, और हो सके तो सुनाना, तो कोशिश करूँगी इस गीत को सुनवाने की। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जो गीत मैं सुनवाऊँगी ना आपको, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये थे हमारे गुलाब दास मानिकपुरी जी, जिनका संदेश अभी हमने शामिल किया। और अगला संदेश देख लेती हूँ, ये हैं सतीश आनेजा जी, और ये लिखते हैं इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। चंडीगढ़ सिटी से बिमला आनेजा के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। सतीश जी हो सके तो आप भी 90 के दशक की अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। आसिफ अली हैं, इन्होंने भी अपनी पसंद का नहीं, इन्होंने लिखा कोई भी किसी भी फिल्म का गीत सुनवाएं। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से इन्होंने ये संदेश भेजा है। आसिफ अली तो है ही, मुस्कान आसिफ के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है। संदीप मक्कर जी का भी संदेश आया है और इन्होंने भी अपनी पसंद की फिल्म का गीत सुनना चाहा है। 90 की दशक की ही फिल्म है जिसका जिक्र इन्होंने किया है, और ये लिखते हैं कि उस फिल्म के गीत इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने ये संदेश भेजा है ज्योति मन्नत भरत और कमल के साथ, कमल साहनी के साथ, पिंगा वाला चौक जालंधर से इन्होंने ये संदेश भेजा है। और श्रोताओं और भी संदेशों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत खूबसूरत गीत है कुमार सानू की आवाज़ में, दीवाना फिल्म से। सोचेंगे तुम्हें

जब तक म्यूजिक आ रहा है तब तक एक और संदेश शामिल करूं। मधु किरण का संदेश है, ये लिखते हैं कि आज सबकी छुट्टी है परंतु मेरी रसोई में छुट्टी नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। आज सुबह बारिश भी हो गई, मेरे पति हैं कि आपका रेडियो सुने जा रहे हैं और मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। इस बात पर एक गीत याद आया है जो इन्होंने

आप अपने पति जी को तो रेडियो सुनने दीजिए और साथ में भी आप रेडियो सुनिए मधु किरण जी, और जिस फिल्म का गीत आपने सुनना चाहे कोशिश करूंगी उसे सुनवाऊं, क्योंकि आपने लिखा कि उस गीत में दो शब्दों में ही बयां हो जाता है इजहार। तो मधु किरण जी ने ये संदेश भेजा है कड़कड़ डुमा दिल्ली से।

आवाज 90 के दशक के गीतों को सुनकर हमारे जो साथी हैं उनके दिल में भी कुछ कुछ हलचल हो रही है, मतलब मचल रहे हैं उनके दिल भी, और बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो ये लिखते हैं कि ये हमारे साथी हैं मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये लिखते हैं कि हम दीदी जी सन 1900 से रेडियो सुन रहे से जुड़े हुए हैं, और अब हम जब भी गीत सुनते थे तो गीतों पर झूम उठते थे। आज भी पुराने गीतों को सुनते हैं तो ऐसे ही झूम उठते हैं। गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो ये बात तो सही कही आपने, 80 का दशक हो या 90 का दशक हो, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत थे उस समय। एक तरह से बहुत सारा म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारा बदलाव और बहुत तरह से अलग अलग आवाज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी। और देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि कुमार सानू हो गए, उदित नारायण, अलका याग्निक, बाला सुब्रमण्यम, इन सब की आवाज़, और भी कविता कृष्णमूर्ति, एक से बढ़कर एक अनुराधा पौडवाल, सबकी आवाज़ एक से बढ़कर एक, और जवां होते दिलों की धड़कनें बन चुकी थी ये सारी की सारी आवाज़ें। और देखिए

चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। इन्होंने वैसे कुछ ये लिखते हैं कि हाँ, मेरा दिल भी कितना पागल है, 90 के दशक का ये गीत इन्होंने सुनना चाहा है शायद, इसलिए इन्होंने ये लिखा है। तो देखिए, ये दिल भी कितना पागल है, देखिए कोशिश करेंगे इस गीत को भी सुनवाने की। हमारे साथी हैं, कुछ साथी हमारे दो दो बार भेज रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई दो दो बार आप संदेश भेजेंगे तो बाकी साथियों के संदेश हम नहीं ले पाएंगे। फिर ये अगला संदेश है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। और इन्होंने जिस गीत का जिक्र किया है वो कहते हैं कि ये गीत हमें बहुत पसंद है। उम्मीद करूंगी कि इस गीत को भी मैं कोशिश करूंगी कि प्ले कर पाऊं इस गीत को। और देखिए, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं हमारे पास। सुदर्शन मुखी जी हैं, इनका संदेश है और ये लिखते हैं कि 90 के दशक के गीत नॉटी सॉन्ग्स, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, दिल से बड़ी वाली बधाई। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप सुन रहे हैं इतना कीमती समय निकाल कर और इतना कीमती समय आप हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते हैं कि आपका दिन भी अच्छा रहे, जीवन भी अच्छा रहे, तो बहुत अच्छी बात, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लव स्टोरी फिल्म का जो गीत सुना इन्होंने वो इनको बहुत पसंद आया। अनीता और सिमरन मुखी के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा शांति नगर सोनीपत से। और अगले जो हमारे लिसनर्स हैं इनको भी देख लेते हैं, ये हैं सुनील पाठक जी और ये लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है ये भी हम देखते हैं। सिर्फ इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से इन्होंने संदेश भेजा, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक के साथ। और हमेशा आपकी दुआएं हमारे साथ बनी रहें, तो जैसे कि आपने लिखा कि आपकी दुआएं हमारे साथ बनी रहें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मस्कीन जी का भी, तुलसी मस्कीन जी हैं, इनका भी संदेश आ गया है और ये लिख रहे हैं कि रोमांटिक गीत में मेल पढ़े जी, थैंक यू। अच्छा, ये चाहते हैं कि इनका संदेश पढ़े। तो देखिए, आपने 90 के दशक में तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं, आपकी भी तो रोमांस की कितनी स्टोरियाँ होंगी या कुछ अच्छे अनुभव होंगे मस्किन जी। लेकिन इन्होंने अपने साथियों के साथ बिहारी कॉलोनी शाहदरा से ये संदेश भेजा है, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन के साथ, साथ ही डब्बू सम्राट जो है उनका, और चंडीगढ़ से भी राहुल खुराना रचित और केशु रिधान खुराना के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। मोहम्मद फरहान ने भी अपना संदेश भेजा है, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, सलमान इरफान और इसरार और नरगिस खातून के साथ। लाल गिरी जी ने संदेश भेजा है रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से, और इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। तो सावन के झूले के लेकर तो कोशिश करेंगे सावन का महीना एक गीत सावन पर भी सुनवाएं। और हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी के साथ इन्होंने संदेश भेजा, स्वर्ण सिंह जी ने भी संदेश भेजा जो कि हम शामिल कर चुके हैं, आशा देवी ने संदेश भेजा है किशनगंज बिहार से, ये हैं रविंद्र मोहन दास के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है हमें, सुधाकर जाधव जी ने संदेश भेजा मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से अपने साथियों के साथ, और बहुत सारे साथियों के नाम लिखे हैं जैसे कि प्रशांत राजे हैं, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, प्रणाली सानवी और हर्षिता देशमुख के साथ इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। सुधाकर जाधव जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं, राघव बघेल हैं, इन्होंने संदेश भेजा है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल के साथ, और लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेजा है इन्होंने। ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी बारिश कम है, ट्यूबवेल से धान में सिंचाई हो रही है, तो धरती का पानी भी आप इतना ना खींचें कि धरती भी पानी के लिए तरसती रहे, ट्यूबवेल का उतना ही पानी इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी, क्योंकि ट्यूबवेल के अत्यधिक पानी के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा में पानी की बहुत कमी हो चुकी है, और सरकार अब लोगों को जागरूक कर रही है कि धान की खेती ना करें,
दें या धान की खेती करनी है तो उसको एक ही बार में बो दें, उसको ज़्यादा पानी, उतना ज़्यादा पानी ना करें, या फिर ऐसे धान की वैरायटी बोएं जिसमें पानी कम लगे। तो आप भी इस तरफ अपना ध्यान दें और कोशिश करें अपने इलाके में अगर पानी कम है तो ट्यूबवेल का इस्तेमाल कम करें ताकि पीने के लिए पानी बचे और धरती के लिए भी पानी रहे। अंकित कांगड़ा हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है।

बहुत सारे साथी हैं जिनके संदेश अभी और भी हैं जिन्हें मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने ये संदेश भेजा है और ये सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत गीत है साजन फिल्म से, ये बहुत ही खूबसूरत गीत अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है काफ़ी देर से। जब तक म्यूज़िक आ रहा है मैं आपके संदेश शामिल करूँगी। सईद अब्बासी जी का संदेश है, निगत परवीन आवासी, शहनवाज, सरफराज फरदीन और सुहान आवासी के साथ ही लिखते हैं कि आकाशवाणी से महफिल, मन भावन, उर्दू सर्विस से पसंद अपनी अपनी प्रोग्राम किए हैं, उनमें इन सब गीतों को शामिल किया था इन्होंने। वो ग्रामोफोन का ज़माना था, हम कैसे भुला सकते हैं। उस वक्त के 150 रिकॉर्ड मेरे पास आज भी महफूज हैं। तो बहुत अच्छी बात, आपने एक धरोहर को सहेज के रखा और मेरे पास भी बहुत सारी कैसेट्स हैं। और ये संदेश भेजा है इन्होंने ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से।

और दोस्तों एक मेल हमारे पास आया पुणे महाराष्ट्र से हैं, ये सुफियान मलिक, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हैप्पी वीकेंड, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ फ्रॉम सऊदी अरेबिया बाय एआईआर रेडियो ऐप एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर

0: us, Indian nationals living abroad, to be connected with the Akashwani radio channel by the app. Keep it up and please keep on going like this. Thank you so much. आप हमें सऊदी अरबिया से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसे ही आप अन्य साथियों को भी जरूर सुनाएं, और अपने देश के साथ और खूबसूरत बातों के साथ और अपने दिलों के जज्बातों और धड़कनों के साथ ही हमारे साथ आप जुड़े रहें. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही और भी साथी हैं हमारे, जैसे रोजी डेकेस्ट्रो. इन्होंने पर्ल डेकेस्ट्रो, बिलिस डेकेस्ट्रो और जॉन डेकेस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से अपना संदेश हम तक पहुंचाया है. और देखिए, बहुत सारे साथियों की ये फरमाइश थी कि सावन का महीना है तो सावन का गीत भी, तो आया सावन झूम के फिल्म से ये गीत आप सबके लिए. साथ ही जो साथी रह गए हैं जिनके प्रोग्राम में मैं ना मेल शामिल नहीं कर चुकी हूँ, उन्हें ज़रूर शामिल करूँगी. तो अब अगला जो संदेश है, देखिए सुमैरा प्रवीण जी हैं, ये मोहम्मद सईद अवासी जी के परिवार से ही हैं. तो आप सबका मैसेज मैं शामिल कर चुकी हूँ, बहुत बार आपका संदेश आया है. तो मैंने पसंद का गीत भी सुनवाया, मुझे मैंने आपका मैसेज ज़रूर शामिल किया. तो आप ये ना सोचें कि संदेश शामिल नहीं किया है. और ये देखिए तुलसी मस्किन जी ने फिर एक बार लिखा मैसेज, ये लिखते हैं कि ये गीत फिल्म दीवाना का मैं बहुत गाता था, मुझे ये गीत अच्छा लगा. तो शुक्रिया सभी साथियों के साथ जिनके नाम हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं. नवी हसन जी का मारहटारा दरवाज़ा एटा से संदेश आया है. नावेद हसन, सुहेल हसन, अनस अनम और यशफ रसीद वारसी के साथ इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है. और किसी भी गीत में इन्होंने कहा कि शामिल करें. घड़ी भी इशारा कर रही है कि समय कम है. तो अक्सर हमने कोशिश की अपने इस कार्यक्रम में कि सभी के मेल्स को शामिल करें. अनिल जैन जी हैं जिनका मलियान सरधना मेरठ से संदेश हम तक पहुँचा. इन्होंने संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम के साथ अपना संदेश भेजा. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये लिखते हैं कि आपके यहाँ हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे, तो आपका ये आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे. आमीना तखान हैं, इन्होंने गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी और के साथ अपना संदेश भेजा है. और देखिए घड़ी इशारा करिए कि अब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है. तो अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त. नमस्कार, मुझे दीजिए यहीं पर विदा. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है. अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उन्होंने निरंतर प्रयासरत रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें. श्री मोदी ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खूबियां भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करती हैं. आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं. श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है. परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील सोच से प्रेरित भारतीय वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी. इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. बैठक की अध्यक्षता खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे. इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगे. इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है. डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम

0: के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 11:10 हो चुके हैं और अब सुनेंगे आप सबरस। सबरस में आज सबसे पहले आप सुनेंगे लालित्य मोनशा की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सबरस। सबरस में आज आपने सुने लालित्य मोहन शाह, सुचित्रा और शुभा मुद्गल गुरदास मान के स्वर में गीत और गज़ल। और साथ ही श्रोताओ, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का। प्रस्तुत है सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार हैं फतेह अली, राग शुद्ध सारंग, तबले पर संगति कर रहे हैं अमान अली।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितार वादन। कलाकार थे फतेह अली, राग शुद्ध सारंग, तबले पर संगति कर रहे थे अमान अली। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
4: He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector. Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. He said the achievement placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector. Mr. Modi said that today, Gen Z engineers, designers, coders, and scientists are creating new technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological, and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jayashankar will

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों और सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: रेनू कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ
1: भाई
0: चले।
1: क्या बात है, बहुत सही कहा। और देखो यमुना मस्ती, और अगर ऐसे में सावन हो तो फिर तो कहना ही क्या है। अब देखो जैसे आज जब मैं सुबह आ रही थी तो हल्की हल्की रिमझिम जो थी ना,
0: जी
1: बहुत ही अच्छी लग रही थी मन को, एकदम लुभावनी। और बस उसमें अगर थोड़ी सी बूंदे हमारे शरीर पर पड़ जाएं तो कहना ही क्या। ऐसे लगता है ना कि जैसे जो गर्मी थी पूरे शरीर को एकदम से ठंडक का एहसास हो गया, और जो मन है वो भी बहुत ही सुहाना हो जाता है।
0: जी हाँ, सावन हो, सावन में झूले पड़े हों, हार श्रृंगार हो, महिलाएं
1: बिल्कुल
0: सज धज के तैयार होकर के जब निकलें तो एक अलग ही अनोखी एक छटा सी बिखर जाती है। और
1: बिल्कुल
0: साथ ही में
1: बिल्कुल
0: हमारा तीज त्यौहार जो है हमारी पारंपरिक विरासत है ना रेणु,
1: बिल्कुल
0: तो हम बड़े उसे उत्साह के साथ मनाते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं कि ये तीज त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमारे मनाने का कारण बहुत से होते हैं, वो क्या हैं और
1: बिल्कुल
0: उन पर हम क्या-क्या पकवान बनाते हैं, कैसे-कैसे हम घर को सजाते भी हैं।
1: बिल्कुल। और देखो जैसे तुमने अभी इसकी बात की कि हमारे जो व्रत पर्व वगैरह होते हैं उनको सभी बहुत उत्साह से साज श्रृंगार के साथ मनाते हैं, ऐसे ही आज 23 अगस्त को भी पुत्रदा एकादशी है।
0: जी
1: और जो बहुत सी महिलाएं हैं, सावन में इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और कई महिलाएं और पुरुष भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत रखते हैं और विष्णु

0: भगवान की पूजा आराधना की जाती है। और मनीषा, जितने भी हमारे जो पर्व है ना, एक तरह से ये हमारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को मजबूत करते हैं, क्योंकि बताते हैं कि अगर सावन हो या कोई भी मास हो, हर मास में एक व्रत रखना जो होता है वो हमारे शरीर के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और आज सावन का व्रत हो तो उसमें बात ही कुछ और है।
0: बिल्कुल
1: रिमझिम रिमझिम बूंदे गिरती रहती
0: बिल्कुल
1: है।

0: देखिए रेनू, होता ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं
1: बिल्कुल
0: वो परिवार की हमारी ऐसी रीढ़ होती हैं जिसके बिना घर परिवार अंदर बाहर कुछ भी काम नामुमकिन है।
1: बिल्कुल
0: बच्चों का, बूढ़ों का, सभी का बहुत ध्यान रखती हैं और उसके लिए ज़रूरत होती है उन्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें महिलाओं को खास तौर पर प्रभावित करती हैं। इनमें से एक हमारी जो बीमारी है वो बड़ी आम समस्या है महिलाओं में, एनीमिया की। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी और ये
1: बिल्कुल
0: आजकल बहुत आम है, जिससे थकान होती है, इसमें कमजोरी हो जाती है। और हमारी सरकार है एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए एक एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चला रही है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पौष्टिक आहार, यानी कि किचन से ही हमारी शुरुआत
1: बिल्कुल
0: होती है, तो पौष्टिक आहार लें। और हमारे अंदर खून की कमी है कितनी है उसकी जांच भी बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: और इसके जो मोटे मोटे लक्षण हैं,
1: देखो इसके ये बहुत ही मनीषा जो बात बोली तुमने, वो पता है जो महिलाएं होती हैं वो इन जो समस्याएं हैं इनसे गुजर भी रही होती हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। उन्हें पता है क्या लगता है, मैंने बहुत अधिक काम कर लिया होगा तो शायद मुझे थकान हो गई होगी, जैसे अभी तुमने लक्षणों की बात की। अगर देखो

0: कोई भी महिला और बहन, उसे बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस हो रही है, या चलते चलते उसकी सांस फूल रही है, या फिर जैसे जो हमारी त्वचा होती है उसका रंग एकदम से जो
1: पीला पड़
0: सामान्य
1: गया
0: से पीला पड़ रहा हो, या
1: जी।
0: फिर चक्कर आने लगें अगर हम कोई काम करें और चक्कर आने लगें, इसके अलावा दिल की धड़कन जो है वो हमारी एकदम से तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ये सारे लक्षण होते हैं। तो ये जो ऐसी समस्याएं हैं जो रोजमर्रा में मुझे लगता है महिलाओं को महसूस होती हैं, लेकिन वो ये सोचकर कि भाई अधिक थकान, ज्यादा काम किया तो इसलिए हो गया होगा,
1: नजरअंदाज हो जाती हैं
0: नजरअंदाज करती
1: जी
0: हैं, और ये भी सोचते हैं कि थोड़ा आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा।
1: जी हाँ
0: लेकिन सब ठीक नहीं होता है, और वो सब ठीक कैसे होगा, जब जो हमारी बहनें और महिलाएं वो बचाव करेंगी, खान पान अपना अच्छा करेंगी, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगी, और जो मौसमी फल होते हैं, मौसम के अनुरूप जो जो फल होते हैं उनका सेवन करना मनीषा बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ।
0: तो ये
1: साथ
0: सब
1: ही रेनू एक चीज़ छोटी सी मैं बताऊंगी कि एनीमिया की कमी में ज़्यादातर हम महिलाओं को डॉक्टर भी बोलते हैं कि अनार खाएं, चुकंदर
0: बिल्कुल
1: खाएं और गुड़ का सेवन भी ज़रूर करें,
0: बिल्कुल
1: और विटामिन सी भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आयरन को अवशोषित करता है।
0: बिल्कुल
1: नियमित जांच कराते रहें, और ज़्यादा अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
0: जरूरी है।
1: और जब भी इतना सब कुछ हम लाल चुकंदर लाल अनार खाएंगे रेनू, तो हमारे गाल भी लाल लाल हो जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: हम सुंदर
0: बिल्कुल
1: खूबसूरत दिखेंगे, और महीना चल रहा है सावन का,
0: सावन
1: और
0: का
1: ऐसे में जब हम खूबसूरत दिखेंगे तो हमें भाई एक शिकायत अक्सर महिलाओं को रहती है कि हमें तो वो देखते ही नहीं है,
0: बिल्कुल सही बात
1: ध्यान
0: है
1: नहीं देते, क्यों जी
0: सही
1: नौकरी है
0: बात
1: बहुत
0: है
1: सारे काम है। तो महिलाओं की शिकायतों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ऐसे में महिलाएं अक्सर यही गुनगुनाती हैं, हाय हाय ये
0: क्या
1: मजबूरी
0: बात है, बिल्कुल सही बात है।

0: मनीषा भाई देखो, हमारी जो बहनें हैं महिलाएं, उनकी शिकायत जायज भी है, क्योंकि अब वो अगर अपने ऊपर ध्यान देंगी और योग और व्यायाम भी करेंगी, और अगर ऐसे में भाई उनके जो पिया हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो यही कहेंगी कि क्योंकि सावन का महीना भी है और सावन बीता भी जा रहा है,
1: जी
0: तो ऐसे में जो हमारे भाई हैं उनको अपने परिवार की, खास तौर से पत्नी की, इस मौसम में तो सुन ही लेनी चाहिए।
1: जी हाँ, हम गीत संगीत और भी चलता रहेगा। अब
0: बिल्कुल।
1: रेनू आगे क्या सुनवा रही हैं आप?
0: देखो अब ना, जैसे कि अभी हमने बात की कि महिलाओं को अनीमिया की समस्या हो जाती है, खाने पीने के साथ साथ योग और व्यायाम भी हमारे जीवन में मनीषा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम योग को नियमित रूप से अपना लेते हैं तो अपने आप ही जो हमारा शरीर है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है।
1: जी
0: तो ऐसे में हम अपनी बहनों को अनीमिया के बारे में तो हमने बताया, तो नियमित योग और व्यायाम भी उनको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आज मनीषा हम अपनी बहनों के लिए बातचीत लेकर आए हैं, बातचीत का विषय है योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र विकास, और डॉक्टर एनएस यादव से हमारी बहन कमलेश मुद्गल इस विषय में बातचीत कर रही हैं।
2: मेरी हर बहन चहकती रहे और उसके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनती रहे, क्योंकि पूरी गृहस्थी जो है वो हमारी बहनों के आसपास उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहूँ तो रीढ़ की हड्डी हैं हमारी बहनें, क्योंकि घर उनके बिना चल ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए समय समय पर हम नित नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यनारायण यादव को, जो योग विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: जब भी हमारी बहनों से हम योग की बात करते हैं, बहनें कहेंगी हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि सुबह बच्चों का काम करना है, उसके बाद में फिर खेती बाड़ी का भी काम करना है, भाई हमारे पास तो योग का समय नहीं है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि योग के लिए चाहे 20 मिनट निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ समय आपको अपने उस शरीर के लिए देना है जिससे कि आप पूरे दिन दौड़ भाग करती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि योग क्या है?
3: योग आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, भारत सरकार ने योग दिवस के रूप में बहुत प्रचार कर दिया है। तो योग तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैरना, खेलना, टहलना सब जरूरी है, उस तरह से ऋषि मुनियों की एक ऐसी विद्या है जो अनेक प्रकार के आसन हैं, मुद्राएं हैं, कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाए, तो बीमारियों से बचने का और बीमारियों से स्वस्थ रहने का एक मार्ग है योग।
2: जब हम बात करते हैं योग की तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये इतने कठिन आसन है हम तो नहीं कर पाएंगे, इसमें इतना समय लगेगा हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग की बात करें तो ऐसे वे कौन कौन से सिंपल आसन है जिन्हें की हमारी बहन करके स्वस्थ रह सकते?
3: आजकल तो गांव-गांव में, शहर के हर जगह योग सिखाने वाले लोग हैं, तो अपने निकटतम जगह पर पूछे, उसमें कुछ आसनों का मैं नाम बताता हूँ महिलाओं के लिए। जैसे गोमुख आसन है, ताड़ आसन है, कोण आसन है, सूर्य नमस्कार है, श्वास की क्रियाओं में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अगर इतना करते हैं तो वो हमेशा पर्याप्त है। दूसरा जो आज का संदर्भ है ध्यान का,
2: जी
3: ध्यान भी जरूर करना चाहिए महिलाओं
2: जी
3: को।
2: देखिए, योग का क्या एक समय निश्चित है, या जब योग करें तो योग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमारी बहनें रखें?
3: योग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं अपनी बहनों को कि योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम ध्यान ही नहीं है। योग का मतलब गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि युक्त आहार अभ्यारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगे नहि दुखा। योग का मतलब होता है समय से भोजन करना, ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गांव के लोगों के लिए ईश्वर ने इतने कृपा

0: किया है कि उनको सब्जियां हर सीजन में अलग अलग होती हैं, सीजन के अनुसार ही सब्जियां खाएं और फल खाएं, अनाज खाएं, तो जो उनके खेतों में जिस समय जो हो रहा है वो खाएं और समय से खाएं। और गांव के लोग तो अनुशासित होते ही हैं, सूर्यास्त से पहले जो भोजन कर लिया लेकिन सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें और ऋतु के अनुसार करें, सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तो वो भी एक योग है। दूसरा, आचरण भी अपना अनुशासन करें, जैसे हम दूसरे के बारे में ना सोचें, दूसरे की आलोचना ना करें, वो भी एक योग है।
1: जी
0: और अपने काम को पूरा मन से एक पूजा समझ के, एक कर्तव्य समझ के, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे महिला हो, अगर अपने काम को पूरा ध्यान से करें, एकाग्रता से करें, वो भी एक योग है। जी
1: यानी योग जो है वो पूरे हमारी जितनी भी दिनचर्या है उस सब में समाया हुआ है, चाहे हम सुबह उठते हैं वहां से लेकर और रात को सोते हैं वहां तक।
0: जी
1: जब बार बार महिलाओं की बात करते हैं, अगर हमारी बहनें तनावग्रस्त होती हैं या परेशान हो जाती हैं, तो दूसरी बहन उनको सलाह देती है कि ऐसा कर, तूने ध्यान कर लिया कर, तो तनाव से ना मुक्ति मिल जाएगी। जब तनाव आता है तभी हम ध्यान की तरफ क्यों जाते हैं, तो ये ध्यान क्या है?
0: ध्यान कहने के लिए तो बहुत सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है,
1: जी
0: इसको बस समझ लिया जाए। ध्यान से जैसे दादी जी भी कहती हैं अपने पोते को जब जाता है, चाहे बेटे को भी कहते हैं माता पिता, ध्यान से जाना, ध्यान से टिफिन खा लेना। तो ध्यान का मतलब कि वर्तमान में रहना, जो भी हम काम करें अगर हम वर्तमान में अगर सांस भी लेते हैं। माता पिता हम कई बार सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोना है बचपन से ही, बाल कैसे रखना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि सांस कैसे लेनी है।
1: जी
0: हम अपने सांस को बैठ के कभी देखते हैं, बड़े से बड़े भी, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन जब हम बैठ के आंख बंद करके जब हम अपनी सांस को देखने लगे, हस्तक्षेप ना करें, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी देर आने में लग रहा है, कितनी देर निकलने में लग रहा है, अगर हम एक एक सांस को केवल 5 मिनट अगर इतना कर लेते हैं ना, इससे सरल और इससे अच्छा और इससे लाभकारी कोई ध्यान नहीं है। देखेंगे ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने प्रकार के ध्यान के मार्ग अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे।
1: जी
0: तो सबसे पहला ध्यान है कि आंख बंद करके बैठ जाए, और करने का समय क्या है, खाली पेट, नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, रात के भोजन से 1 घंटा पहले, जब भी आपके पास समय है, तीनों में से तीनों समय कर सकते हैं 5-5 मिनट, एक भी समय तो जरूर करना चाहिए। तो बैठ करके सबसे पहले अपने आंख बंद करके अपने शरीर को देखिए कि मैं कैसे बैठी हूँ, एकदम शांत मन से। उस समय सब चिंता छोड़ दीजिए, मेरा काम क्या हुआ, क्या होना है, ना पीछे जाइए ना आगे का सोचिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, हर समय जब भी हम आंख बंद करते हैं तो विचारों का जो उधेड़बुन है वो तो चलती ही रहती है, तो उस उधेड़बुन को सबसे पहले तो हमारी बहनों को कंट्रोल करना है, या एक आम इंसान के रूप में भी जब हम बात करें तो उसको तो हमें पहले कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी क्या कुछ पहले हमें सोचना पड़ेगा या उसका कुछ अभ्यास करना पड़ेगा?
0: कि इस फील्ड में मुझे 45 साल से ज्यादा हो गया कराते हुए, दुनिया में सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती।
1: जी, और जब हम मन पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं तब
0: तो भाई मन, लोग कहते हैं कि मन ही तो नहीं एकाग्र होता है, शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी अस्थाणु तुम आपनोति तत्व वायु निरोधेत। कैसे मन को एकाग्र किया जाए, न कोई दुनिया में सर्जरी है, न कोई दवाई है, कि अगर श्वास को आप देखना शुरू कर दीजिए रोज रोज, तो आपका मन भटकना ही बंद हो जाएगा।
1: जी
0: और करके देखिए, तो
1: जी
0: जैसे जैसे मन पर विजय प्राप्त होने लगे, पहले अगर 1 मिनट में 100 जगह जाता है तो 50 बार जाएगा, फिर 25 बार जाएगा, फिर 10 बार करते करते शून्य हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा बच्चे की तरह।
1: यानी जैसे जैसे हमारी बहनें अभ्यास करेंगी तो
0: जी
1: अभ्यास के बाद जो है वो अपने सांसों को आते जाते बिल्कुल ध्यान से देख पाएंगी, कैसे सांस जा रही है, कैसे आ रही है, वो जो उधेड़बुन उनके पहले दिमाग में रहती थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
0: खत्म हो जाएगी। और आज सारी बीमारियों का जड़, आज जितना भी तनाव है, किसी डायबिटीज है, किसी को सिर दर्द है, महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं तनाव के कारण।
1: जी
0: और तनाव को दूर करने का दुनिया में अगर कोई रास्ता है तो ये ध्यान है,
1: जी
0: प्राणायाम है। तो इस श्वास को ही अगर देखना शुरू करें, उसके बाद ये लेट के भी करें, बैठ के नहीं बैठा जाता, कई लोगों से कमर में दर्द है या कोई थका हुआ है या बीमार है, ताकत नहीं बैठने की, तो वो लेट जाए और लेट करके शरीर को ढीला छोड़ के आंख बंद करें, बंद करके भी अपने शरीर को देखें, फिर श्वास को देखें,
1: जी
0: और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि वाकई मन शांत हुआ। और उसे केवल मन नहीं शांत होगा, सिर दर्द कब दूर हो गया, अनिद्रा की बीमारी, गुस्से, चिड़चिड़ापन, नकारात्मकता, और भी बीमारियां, पाचन की बीमारियां, सब धीरे धीरे केवल इससे दूर हो जाएगा।
1: जी
0: तो ये अभ्यास करें। और उसके बाद ध्यान के साथ साथ कहते हैं 3 तरह का ध्यान होना है। शरीर का ध्यान, पहले शरीर को शिथिल करिए बैठ के चाहे लेट के, फिर उसके बाद मन को करिए श्वास के द्वारा। इसके बाद कोई विचार नहीं आना चाहिए, जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो चप्पल को बिस्तर पर नहीं अलाउ करते,
1: जी
0: उसी तरह से बोलिए ध्यान करते समय कि मेरा समय है, विचारों को प्रणाम कीजिए नम्रता से,
1: जी
0: तो उस तरह से थॉट को

0: विचारों को ध्यान के समय बोलिए कि थोड़ी देर के बाद मैं मिलूंगी, सारे काम बाकी हैं, उपला भी पातना है, पशुओं को चारा भी देना है, खेती में भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए कि लेकिन ये मेरा 5 मिनट है ना, ये मेरा समय है, चाहे 15 मिनट, रोज एक टाइम अपना निकालिए, ना पति के लिए, ना बच्चे के लिए, ना परिवार के लिए, ना दुनिया के लिए, 5 से 15 मिनट अपना समय निकालिए 24 घंटे में से, और उसमें केवल प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और रिलैक्स करके विचारों पर ध्यान कीजिए कि विचार नहीं आना चाहिए। तो उसका क्या लाभ होगा कि धीरे धीरे इतना नियंत्रण हो जाएगा कि जब चाहेंगे तभी गुस्सा आएगा, तो फिर गुस्सा ही नहीं आएगा, तो समझिए कि अनेक बीमारियां दूर, तनाव ही कहते हैं, नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन, तो इससे क्या होगा, संतुष्टि का अभाव होगा ध्यान करने से। कैसे लाभ होगा स्वास्थ्य पर, कि केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है नैतिक स्वास्थ्य, कि हम अपनी नजर में हम ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन अगर नैतिक पतन हमारा हो चुका है तो हम अपनी नजर में भी नहीं उत्थान कर पाते हैं, लेकिन ध्यान करने से, प्राणायाम करने से आत्मदृष्टि में हम ऊंचा उठते हैं। तो नैतिक उत्थान, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आध्यात्म का मतलब होता है अपनी धी कहते हैं विद्या को,
1: जी
0: आत्मबुद्धि को हम शोधित कर सकते हैं, अपनी कमियों को हम देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं,
1: जी
0: वो ध्यान से सबसे बड़ी बात आती है।
1: जी और योग और ध्यान में जब हम बात करें तो ऐसा भी कर सकते हैं हमारे कि एक दिन योग कर लें, एक दिन ध्यान, या ध्यान ज्यादा इफेक्टिव है योग के बजाय?
0: वो एक दूसरे का भाग है, जैसे भोजन है, सब्जी का अलग भूमिका है, रोटी की अलग भूमिका है, फल की अलग है, तो अगर हम आसन करके और ध्यान करें तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे गांव के लोग की भाषा में, दही को जब मथते हैं, दूध को जब खूब मथते हैं तब घी
1: तभी
0: ऊपर आ
1: मट्ठा
0: जाए,
1: निकलता,
0: बिना
1: वैसे घी
0: मथे जो
1: आएगा।
0: है बाहर नहीं आएगा।
1: जी
0: तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, तो शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है, तो शरीर के जितने भी विजाती द्रव्य हैं, गंदगियां हैं, वो इकट्ठे हो जाती हैं, तब उसको फेफड़ा को निकाल के बाहर करने में, किडनी को निकाल के यूरिन से बाहर निकालने में आसानी हो जाती है।
1: जी
0: अगर नहीं हम करते हैं, सीधा ध्यान करते हैं तो भी निकलेगा, लेकिन अगर आसन की बात करें तो ज्यादा लाभ होगा।
1: तो मैं तो यही सलाह दूंगी अपने बहनों को कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको बहुत ही ध्यान रखना है, योग और ध्यान से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए हो और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी बहनें सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र विकास। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर NS यादव और इनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुद्गल। तो रेनू, योग भगाए रोग, यानी कि स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो योग का दामन हमें कभी नहीं
3: छोड़ना
2: छोड़ना
3: चाहिए।

0: मनीषा, देखो आज हमारा जो देश है वो हर जगह पर बहुत आगे है। किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देख लें, उद्योग के क्षेत्र में देख लें, या फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लें। और हमारे देश को आज यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे जो सेनानी थे उनका बहुत योगदान रहा। हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो सर्वस्व है वो हमारे देश पर अर्पित कर दिया था। मनीषा, इसके साथ साथ हमारे देश के साथ साथ साथ कई विदेशी भी ऐसे थे जो हमारी भारत की भूमि पर आए, और उसके बाद उन्हें हमारी मातृभूमि ने, हमारी संस्कृति ने इतना आकर्षित किया कि वो यहीं पर रच बस गए। न केवल रचे बसे बल्कि उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किए और योगदान भी दिया।
1: जी हाँ, और ऐसी ही एक महिला थी एनी बेसेंट।
0: बिल्कुल
1: एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और महिलाओं के अधिकारों के
0: बिल्कुल
1: लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: बिल्कुल। और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को इंग्लैंड में हुआ था, और जब ये भारत में 1893 में यहाँ पर आई तो उसके बाद यहाँ की मिट्टी से ये पूरी तरह से जुड़ गई। और मनीषा, इन्होंने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की थी।
1: जी हाँ रेनू, और वो एक आध्यात्मिक महिला थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऐसे अपना लिया था कि वो फर्क नहीं था उनमें
0: बिल्कुल
1: किसी भारतीय महिला में। उनका जीवन एक संत की तरह था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए बहुत योगदान
0: बिल्कुल
1: किया और हमारे ग्रंथों से भी वो बड़ा लगाव रखती थी। उन्होंने गीता का अनुवाद भी किया
0: बिल्कुल
1: और साथ ही साथ बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की, जो कि बाद में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना।
0: बिल्कुल
1: और ऐसी वीरांगना को, ऐसी जो हमारी धरती पर आई ऐसी महिला को, एनी बेसेंट को हम शत शत नमन
0: नमन
1: करते
0: करते हैं।

0: और मनीषा, हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यही कारण है कि आज हम अपने देश में चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे राजकुमार शुक्ल, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज 23 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बिहार के चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी को वहाँ पर आने के लिए राजी किया था, और 1917 में गांधी जी वहाँ पर गए और भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। राजकुमार शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण योगदान था कि उनके इस प्रयास से गांधी जी को भारत की मुख्य राजनीति में स्थापित होने में बहुत ही योगदान मिला था।
1: जी हाँ, और ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक हमारे रहे अन्नामणि। ये मौसम वैज्ञानिक थे, ये भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम वैज्ञानिक थी। इन्होंने सटीक उपकरण बनाए भारत में मौसम की भविष्यवाणी करने वाले, तापमान, हवा को नापने वाले, और दर्जनों उपकरणों को उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया। तो कितनी बड़ी उपलब्धि
0: बहुत
1: थी
0: बड़ी
1: हमारे
0: उपलब्धि
1: देश के
0: है।
1: लिए। और ऊर्जा क्षेत्र में इन्होंने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च करके देश को आगे बढ़ाया, और इन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
0: और मनीषा, ऐसी जो महान महिला थी अन्नामणि जी, इन्होंने मौसम की सटीक भविष्यवाणी की, तभी तो ऐसे गीत भी बने, ये मौसम
1: मौसम
0: का
1: का
0: जादू
1: जादू
0: है
1: है
0: मितवा।
1: मितवा।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, लेट्स स्टार्ट द फन।

0: रेनू, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और इस दिन 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस उपलब्धि के साथ भारत पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश हमारा भारत बना। और चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 उतरा था, उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा।
1: बिल्कुल। और मनीषा, इसको इसीलिए मनाया जाता है, आज 23 अगस्त को विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे देश के युवा हैं उनके अंदर और विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो और हमारे देश में विज्ञान के लिए नए नए आविष्कार किए जाएँ, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विज्ञान से जुड़ें और देश को विज्ञान के क्षेत्र में और आगे लेकर जाएँ।
0: जी हाँ, और चांद तारों तक पहुंच जाएं और
1: बिल्कुल
0: बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते रहें।

0: मनीषा, बेटियां जो हैं वो हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं, और अभी खेलों में भी हमने अपनी बेटियों का दमखम देखा। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसने सच में वास्तव में अपना काम किया है। यह जो योजना है ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू की गई थी, और मनीषा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि देश में घटते बाल लिंगानुपात में सुधार हो और जो बालिकाएँ हैं वो अधिक से अधिक जन्म लें और उनकी शिक्षा अच्छे से शुरू की जाए और उन्हें सशक्त भी बनाया जाए।
1: जी हाँ, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है बाल लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सोच बदलना।
0: बिल्कुल।
1: और जो हम कहते हैं ना कि कोई महिला गर्भवती होती है तुरंत बड़ी जिज्ञासा होती है इसका लिंग परीक्षण
0: हाँ,
1: कराने
0: बिल्कुल,
1: की, तो उस
0: बिल्कुल।
1: पर भी रोक लगाई जाए और ये चल भी रहा है, इस पर बहुत
0: बिल्कुल।
1: सख्ती भी है। और ये योजना है ना रेणु, ये हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यानी कि
0: बिल्कुल
1: तीनों मंत्रालय भरपूर जोर लगा रहे हैं बेटियों की सुरक्षा और संरक्षण में।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना जैसी जो बचत योजनाएं हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया है ताकि माँ बाप बेटियों के भविष्य के लिए पैसे बचा सके।
0: बिल्कुल। और मनीषा, हमारी जो लाडली हैं जब वो पढ़ेंगी तभी वो आगे भी बढ़ेंगी।

0: और मनीषा, हमारी बहनें भी अगर हमसे अपनी कोई बात साझा करना चाहती होंगी, हमें कुछ बताना चाहती होंगी, तो वो हमें अपना पत्र भेज सकती हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001।
1: जी हाँ, चिट्ठी भी लिख सकती हैं और साथ ही साथ अपना फ़ोन उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए और हमें ईमेल भी कर सकती हैं। और ईमेल का पता है feedback@gmail.com।
0: बिल्कुल
1: यानी कि बहनों को कोई भी शिकायत हो, कोई सुझाव देना हो, तो बेझिझक हमें मेल या पत्र ज़रूर लिखें।
0: बिल्कुल। और आज के हमारे जो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं तुषार पाराशर।
1: और कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: तो इसी के साथ मनीषा, हम अपनी बहनों को अब कहते हैं बहनों, राम
1: राम राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी

0: इलाका बताए जाने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: On the occasion, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jayashankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Defence Minister Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. An interaction session with the MSMEs at the Garden Reach Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Defence Minister will witness the final of the Durand Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Supergiant at Yuva Bharati Krirangan later in the day. Tensions between Washington and Tehran have escalated further after US President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new U.S. territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on the 18th of this month. Mr. Trump had previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor

0: Door will remain closed unless the United States alters its stance. A Panama-flagged cargo ship with 24 crew members, mostly Chinese on board, sank in the Bay of Bengal yesterday. Officials said the ship sank about 240 nautical miles off the Odisha coast. 20 of the crew members on the ship, MV Ocean Winner, were Chinese, 3 Myanmarese and 1 Bangladeshi. The ship was heading to Singapore, carrying 72,100 million tons of iron ore fines from Odisha. Indian Coast Guard and the Indian Navy have launched a rescue operation. So far, 2 persons have been rescued from the waters. The IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. The IMD has forecast heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, coastal Karnataka, East Uttar Pradesh, Gangetic, West Bengal and Jharkhand today. And in cricket, India were 110 for 2 against host Sri Lanka on day 1 in the second and final test of the series in Colombo when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एक ही फिल्म से प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के गीत और फिल्म से जुड़ी रोचक बातें। आज हम बात करेंगे साल 1975 की एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक ही परिवार के 3 कलाकार असली जिंदगी में भी आपस में जुड़े थे और पर्दे पर भी पिता बेटा की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज की फिल्म है धर्म करम। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 दिसंबर 1975 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था शोमैन राज कपूर साहब ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी उनके बेटे रणधीर कपूर ने। फिल्म में अन्य कलाकार थे रेखा, प्रेमनाथ, दारा सिंह और जगदीश राज। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था आरके फिल्म्स लिमिटेड और यशराज फिल्म्स ने। अब बात करते हैं इस फिल्म के बेहतरीन संगीत की। फिल्म का संगीत दिया था पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो दोस्तों, जब आरडी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी हो तो गीत तो कमाल के ही होंगे। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक कमाल का गीत फिल्म धर्म करम से, जिसे गाया मुकेश ने।

वाह क्या गीत है दोस्तों। ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इस फिल्म की आत्मा है। इतना प्रसिद्ध हुआ ये गीत कि मजरू सुल्तानपुरी साहब को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार की श्रेणी में फिल्म फेयर नामांकन मिला था और मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी और उसके किरदारों के अभिनय की। दोस्तों फिल्म धर्म करम की कहानी लिखी थी प्रयागराज ने और इस कहानी की खासियत यह थी कि इसमें रिश्तों की गहराई, संघर्ष और भावनाओं का एक खूबसूरत मेल था। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा आपके साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आपका पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और

और आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से प्रोग्राम। और हमारी आज की फिल्म है 1975 में बनी फिल्म धर्म करम। अब आपको सुनाते हैं इस फिल्म की कहानी संक्षेप में। कहानी है शंकर नाम के एक अपराधी की, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है। शंकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि अगर उसकी पत्नी को बेटा हो तो वो उसे कभी अपने जैसा अपराधी नहीं बनने देगा। बेटे का भविष्य संवारने के लिए शंकर एक बड़ा फैसला लेता है। वो चुपके से अपने नवजात बेटे को एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार के बच्चे से बदल देता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान की तकदीर उसके खून में लिखी जाती है, या फिर परवरिश और माहौल उसे बदल सकता है। यही उलझन, यही टकराव है फिल्म धर्म करम की कहानी का। इस उलझन को सुलझाने के लिए दोस्तों, आप ये फिल्म एक बार ज़रूर देखिए और फिल्म का पूरा आनंद लीजिए। अब पेश है इसी फिल्म का अगला खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब हम अपने श्रोताओं के मेल शामिल कर लेते हैं जिनका उनको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो पहला मेल हमें मिला है इंदिरापुरम भंवरपुर से राधे श्याम और चंपा और राजू देवांगन का, और इन्होंने लिखा है कि एक ही फिल्म के गीत इनको पसंद आ रहे हैं। शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमें मेल भेजने के लिए। अगला मेल हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल उषा और टिल्लू नायक जी का, इनको भी हमारी आज की फिल्म की कहानी और गीत पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इन्होंने लिखा है कि आप चर्चा कर रहे हैं अपने दौर की बेहतरीन फिल्म धर्म करम के बारे में, बेहतरीन रोचक बातें किस्से कहानी और नगमे सुनवा रहे हैं, तो धन्यवाद मुकेश कुमार धर्मेंद्र छिप्पा जी, आपने बहुत अच्छा हमें ये मेल भेजा है और हमारे प्रोग्राम की तारीफ करी है, इससे आपका इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये मेल हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हमें ये मेल भेजा है। और अगला मेल हमें मिला है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ जी का, ये है विरम गांव गुजरात से और इनके साथ हैं अजीत भवसार और प्रमिला और भावेश कुमार भवसार जी, इनको भी आज की फिल्म धर्म करम बहुत पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो मेल और मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। अगला मेल हमें मिला है प्रमिला जैन का, इन्होंने फिल्म से जुड़ी रोचक बातें हमें लिखी हैं कि प्रसिद्ध हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसे राज कपूर ने प्रोड्यूस किया, हाँ ये हम बता चुके हैं, इसके लिए इस इन जानकारी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगला मेल हम शामिल करते हैं अहमद फूलवाले का, ये हमें मेल मिला है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से और इनके साथ हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य दुखनी जूही और इमरान अहमद, और इनको भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और खासकर फिल्म के सभी गीत इनको पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मेल भेजकर हमारी हौसला अफजाई करते रहिए जिससे हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। तो अब बढ़ते हैं कलाकारों के अभिनय के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर अभिनेता राज कपूर साहब की, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक अहम किरदार में भी नज़र आए। उनके सजीव अभिनय ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। उनके बेटे रणधीर कपूर ने न सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट किया बल्कि पर्दे पर भी वो एक बेटे की भूमिका में दिखे। असली जिंदगी का रिश्ता पर्दे पर भी उतना ही असरदार नजर आया। बेहतरीन अदाकारा रेखा जी ने इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय से एक अलग ही रंग भरा। आइए सुनते हैं रेखा पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, आपको इस फिल्म की एक और दिलचस्प बात बता दें कि राज कपूर साहब, जो खुद एक महान निर्देशक और अभिनेता थे, उन्होंने अपने बेटे रणधीर कपूर को निर्देशन की कमान सौंपी और उन्होंने अपने पिता राज कपूर के साथ मिलकर एक ऐसी यादगार फिल्म बनाई जो पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की गहराई को दिखाती है। कुल मिलाकर फिल्म धर्म धर्म करम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो चलते चलते सुनते जाइए इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

संगीत के साथ मैं कुछ मेल शामिल करना चाहूँगी। हमें ये मेल मिला है असलम खान, रेशमा खान, फातिमा गांव नांगली जाजू बिजनौर से। इनको भी हमारी आज की फिल्म और उसके गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। और एक दो मेल मैं जल्दी से और शामिल करना चाहूँगी। अगला मेल हमें मिला है भगवत वर्मा जी का और इनके साथ हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य। इन्होंने भी कहानी और सभी गीत इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और एक और मेल चलते चलते शामिल करूँगी रोहित वशिष्ठ जी का कि ये वी आर इन्जॉइंग द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और इनको फिल्म और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया।

0: इस गीत के साथ ही अपनी दोस्त नंदा इसर को अनुमति दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: तेरी की

0: डिज़ाइनर्स और साइंसदान नई नई टेक्नोलॉजियां तैयार कर रहे हैं। आज खला के कौमी दिन के मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाबी को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने 23 अगस्त 2023 के उस लम्हे का तذکرہ किया जब चंद्रयान 3 चांद के कुतुब जनूबी के खत्ते पर कामयाबी के साथ उतरा था। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से भारत खला के शोबे में दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया था। साथ ही उन्होंने भारतीय साइंसदानों की काबिल कदर खिदमात की सताइश भी की। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। नौजवानों की उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और इसी महकमे की वजीर ममलिकत रक्षा निखल खडसे ने सभी 11 ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों और वफूद के सरबराहों का खैर मकदम किया। वजारती इजलास में खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के माबैन इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के वजीरों की मीटिंग हुई थी जो मुश्तरका बयान मंजूर करने के साथ ख़त्म हो गई। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तंदुरुस्ती और माहौलियात के लिए साइकिलिंग के फ़ायदों को उजागर करते हुए इसे सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का बाज़ाब्ता हिस्सा बनाए जाने पर जोर दिया है। आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग प्रोग्राम के बाद नमा निगारों से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग फिट इंडिया तहरीक का लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की संडे ऑन साइकिल पहल का मकसद लोगों को साइकिलिंग अख्तियार करने और तंदुरुस्ती के कल्चर को फ़रोग देने की हौसला अफजाई करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रेजा शंकर आज से रूस का दो रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर मौसूफ तजारती इक्तसादी साइंसी तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के वज़ीर ख़ारजा सेर्गी लाफरूफ से भी मुलाकात करेंगे और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ उड़ीसा और वस्ती आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय साहली कर्नाटक मशरकी उत्तर प्रदेश गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली के बाद हिस्सों में आज सुबह हल्की से लेकर औसत बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक शहर में बेशतर मकामात पर हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश और कहीं कहीं औसत बारिश हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हमसाया मुल्कों को तंबीह की है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के इक्तसादी मुहिम में शामिल न हो। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी मुल्क इसमें शामिल होते हैं तो ईरान उन्हें अपना दुश्मन तसव्वुर करेगा। IRIB के साथ एक इंटरव्यू में जनाब रजाई ने कहा कि ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमसाया मुल्कों ने अमेरिका के इक्तसादी दबाव डालने के इकदाम की हमायत की तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर खित्ते के मुल्क अमेरिका की मुहिम में शामिल होते हैं तो ईरान खलीज फारस और आबनाए हुरमुस से तेल की बरामदात को रोक सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर से बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुज को नए अमेरिकी इलाके के तौर पर दिखाया गया है। सदर ट्रंप ने इस महीने की 18 तारीख को भी इसी तरह की तस्वीर शेयर की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 150 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलराउंडर सारंश जैन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। कुलदीप यादव इन्फेक्शन की वजह से टीम में शामिल नहीं हैं। भारत को 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीता था। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज रात भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्वालिफाई करने का इनसार चीन और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच पर भी होगा। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों पर जोर दिया है। वो आलमी सतह पर हुनरमंद अफराद को रागिब करने के लिए मजबूत इको निज़ाम तैयार करें। वज़ीर आज़म ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर रूस के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सहेली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को अपने खिलाफ अमरीका की इक्तसादी मुहिम में शामिल होने के खिलाफ खबरदार किया है। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला आज रात ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड हैव quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें, हम उसमें consistent रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी risk लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said that his company has built 3 factories and already has the capacity to produce 1 rocket per month. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. He said the achievement placed India among the world's leading spacefaring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. We have more from our correspondent.
3: India is celebrating National Space Day today. The country observes the day every year on August 23rd to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the moon. On this day in 2023, the spacecraft landed near the lunar South Pole region, making India the first country to achieve the feat and placing it among the world's

0: Leading spacefaring nations. National Space Day is not only a celebration of a historic achievement, but also an occasion to inspire the younger generation towards space science and innovation. From communication and weather forecasting to navigation and disaster management, space technology is playing an increasingly important role in everyday life. The day also looks ahead to India's ambitious space program, including human space flight and the vision for the coming decades. Saqlain Akhtar, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. He also saluted country's scientists, engineers, and innovators, saying that their dedication continues to propel the nation to greater heights, and also highlighted country's ambitious missions like Gaganyaan. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector. Mr. Modi said that today, Gen Z engineers, designers, coders and scientists are creating new technologies.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है
1: The BRICS Sports Ministers meeting is underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, as part of India's BRICS Chairship 2026. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, and Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Nikhil Kadse, welcomed the sports ministers and heads of delegation from all 11 BRICS member countries and engaging in discussions with them. The ministerial engagement is focusing on strengthening cooperation among BRICS countries through sports. The sports track under India's BRICS chairship has identified traditional and indigenous sports, sports technology and sports manufacturing as key areas of cooperation. The meeting is featuring statements by heads of delegation from all 11 BRICS member countries, followed by discussions and bilateral meetings. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake a two-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jaishankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Raksha Mantri Rajnath Singh today participated in the Bhumi Pujan ceremony of five facilities for the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Yantra India Limited in Kolkata. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari attended the event. Garden Reach Shipbuilders and Engineers is a premier Navratan defense public sector undertaking based in Kolkata. Among the five projects, three projects of the Garden Reach mark a significant step towards enhancing the shipyard's manufacturing capacity and infrastructure. Advancing the Government of India's Atmanirbhar Bharat and Make in India vision, these projects will enable the company to meet the growing requirements of the maritime forces and other defence and maritime stakeholders. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. The IMD has forecast heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Jharkhand today. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall this morning. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places with moderate rainfall at isolated places in the city. A fresh low-pressure area has formed over the Northwest Bay of Bengal and adjoining areas, triggering another spell of heavy rain in Odisha. The IMD has warned of heavy to very heavy rainfall in several districts, particularly in northern and southern Odisha. With several areas still recovering from recent floods, rising river levels and renewed rainfall have heightened concerns. More from our correspondent.
3: Many parts of Odisha are experiencing another spell of heavy rain under the influence of a fresh low-pressure area over the northwest bay of Bengal. The IMD has also forecast heavy to very heavy rainfall in Keonjhar, Mayurbhanj, Raigada, Koraput and Kalahandi today, with heavy rain also likely in several other districts. Thuamul Rampur in Kalahandi recorded a staggering 345 mm of rain in the last 24 hours, the highest in the state. The weather system is likely to sustain rainfall activity over Odisha through the coming days. Rivers including Bansadhara and Salandhi are rising amid incessant rain, while flood-hit areas remain vulnerable. About 14 lakh people have already been affected by the recent floods in seven districts, with relief and restoration operations continuing. Fishermen have been advised against venturing into the sea, as rough conditions are expected along the Odisha coast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Heavy overnight rainfall has triggered a flood-like situation across several areas of Agartala, including Chandrapur, Baldakal and Aralia in Tripura. The water levels of rivers and canals rose sharply, inundating several houses, roads and surrounding areas and disrupting normal life. In international news, Iran's Secretary of the Supreme National Security Council, Mohsin Rezai, has warned neighboring countries against joining the United States economic campaign against Tehran, saying such participation would lead Iran to consider them enemies. In an interview with IRIB, Rezai said Iran is not seeking escalation but warned that Tehran would respond if neighboring countries supported Washington's economic pressure measures. He further warned that Iran could block oil exports from the Persian Gulf and the Strait of Hormuz if regional countries joined the U.S. campaign. His remarks come after U.S. President Donald Trump announced what he described as an economic D-Day campaign against Iran, calling it the most crushing economic operation ever taken against any country, and urging U.S. allies to join Washington in isolating Tehran. At least 37 people were injured after a 5.9 magnitude earthquake struck Ibaraki Prefecture, northeast of Tokyo, earlier today. The quake also caused burst water pipes and disrupted transport services in some areas. According to the Japan Meteorological Agency, the earthquake occurred at a depth of about 70 kilometers. And in sports, in cricket, India were 168 for 2 against hosts Sri Lanka on day one of the second and final test of the series in Colombo when reports last came in. Devdutt Padikkal continued his excellent form, scoring another half a century and was unbeaten on 55, while Shubman Gill was batting on 43. Both players have stitched together an unbeaten 102-run partnership for the third wicket. Earlier, India won the toss and opted to bat. Both Indian openers were dismissed in the first session. KL Rahul scored 18 before being dismissed by Lahiru Kumara, while Yashasvi Jaiswal fell for 45 to Asitha Fernando. India have made one change to their playing 11, with seasoned Madhya Pradesh all-rounder Sairanj Jain making his test debut. Kuldeep Yadav has been ruled out due to an infection. The hosts have also been forced into changes. Dinesh Chandimal has been ruled out after suffering a concussion, while Nishan Madhushka has been dropped. Kamil Mishra is making his debut, while Pasindu Suryabandara also returns to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
5: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
4: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
4: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया, और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
4: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। 4th चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
7: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी तोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
8: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में एक एक की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
4: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

दोस्तों, इस गाने में जिस तरह से सायरा बानो ने अपनी नृत्य प्रतिभा का परिचय दिया है, वो आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कलाकार कौन हैं। जी हाँ, वो हैं बीते ज़माने की जानी मानी अभिनेत्री सायरा बानो। और आज हम उनकी फिल्मों के कुछ गाने आपको सुनवाएंगे और साथ ही में उनकी जिंदगी और उनके करियर से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से भी आपको बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। नमस्कार।

आशा भोसले जी की आवाज में ये गाना सायरा बानो के सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक है और इस गाने में उनके डांस स्टेप्स को आज भी लोग कॉपी करते हैं।

1967 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं और इसमें जिस तरह से सायरा बानो ने अपने नृत्य का परिचय दिया है वो आज भी हम सबको बेहद पसंद आता है।

दोस्तों, सायरा बानो भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज और बेहद ही लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए दोस्तों हम सब के दिलों में राज किया है। बात करें अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उनका जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था और उनको अभिनय की कला के साथ साथ नृत्य की कला भी अपने परिवार से ही मिली थी, क्योंकि उनकी माँ अपने जमाने में जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी और उनकी माँ का नाम था नसीम बानो और उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार भी कहा जाता है। और इसके साथ ही अगर उनके पिता की बात करें तो उनका नाम था एहसान उल हक, जो कि जाने माने फिल्म निर्माता थे। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि परिवार से ही उन्हें फिल्मों के बारे में बेहद अच्छी जानकारी मिली और एक्टिंग का जो उनका अभिनय था, उसकी यात्रा थी, उसमें उनके परिवार का भी सहयोग मिला। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से सायरा बानो ने जब अपनी ये बात अपनी माँ को बताई कि वो एक कलाकार बनना चाहती हैं, एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, हीरोइन बनना चाहती थी, तो उनकी माँ ने इस चीज़ के लिए उन्हें मना किया। आपको भी जानकर हैरानी हुई ना, लेकिन ये सच है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात से स्वीकार किया था कि दरअसल फिल्मी दुनिया के जो कार्य करने के तरीके हैं, जिस तरह की वहाँ पर नियम और कानून हैं, जिस तरह से वहाँ का माहौल रहता है, ये उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वे नहीं चाहती कि उनकी बेटी फिल्मों में आए। लेकिन सायरा बानो को तो फिल्मों में आना था और इस तरह से उन्होंने कैसे कन्विंस किया अपने माता को, और पिता तो पहले से ही राजी थे, और इस तरीके से उनको पहली फिल्म मिली शम्मी कपूर के साथ जंगली, और उनके अभिनय करियर की हो गई शुरुआत। और ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था।

आसमान इस फिल्म से आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत उनसे मिली नजर।

दोस्तों, सायरा बानो जब लगभग 6 साल की थी तो उनको पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन भेजा गया और वहाँ के मशहूर एलिट स्कूल क्वींस हाउस में उनकी पढ़ाई हुई। और जब छुट्टियाँ होती तो वे हिंदुस्तान चली जाती अपने माता पिता के पास। और ऐसे ही एक छुट्टी में वो अपने घर आई हुई थी और फिल्म देख रही थी आन। और आन फिल्म महबूब खान साहब ने बनाई थी और इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। और इस फिल्म को देखते वक्त दिलीप साहब की अदाकारी इतना सायरा के बालमन को भाई कि उन्होंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। और लंदन में पढ़ाई के दौरान भी सायरा बानो ने ये सोचा था कि एक दिन वो दिलीप कुमार से मिलेंगी और उनसे अपनी शादी की चाहत को बताएंगी। और ये बात उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू में भी कही है। और ये जब पता चला सायरा की माँ नसीम बानो को, तो उन्होंने कह दिया कि अगर आपको दिलीप कुमार की शरीके हयात यानी पत्नी बनना है तो पहले उनकी पसंद नापसंद और उनके शौक को, उनके मिजाज को तो जान लीजिए, समझ लीजिए। और इसके बाद सायरा बानो ने ऐसा ही किया। और उन्हें जब मालूम हुआ कि दिलीप कुमार साहब को उर्दू बेहद पसंद है, शेरो शायरी करना भी बेहद पसंद है, तो सायरा बानो ने बाकायदा मौलवी साहब से उर्दू पढ़ना लिखना और सीखना शुरू कर दिया। यहां तक कि दिलीप साहब को सितार पसंद था तो सायरा बानो ने सितार सीखने की कोशिश भी की। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प किस्से जो कि हमारी आज की कलाकार सायरा बानो पर आधारित हैं वो हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी के साथ।

एक ऐसा ही किस्सा है साल 1955 से जुड़ा हुआ, जब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान फिल्म प्रोड्यूसर एस.एस. वासन ने दिलीप कुमार की मुलाकात एक मशहूर ज्योतिषी से कराई और ज्योतिषी ने कहा कि उनकी शादी 40 बरस के बाद होगी और जो उनकी दुल्हन बनेगी वो उनसे करीब आधी उम्र की होगी और वो फिल्मों से भी जुड़ी होगी। अब इस भविष्यवाणी को सुनकर दिलीप साहब बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसे एक मजाक के तौर पर लिया, लेकिन उनको नहीं पता था ये भविष्यवाणी आगे चलकर सच होगी। और जब दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो से हुई तब ये भविष्यवाणी सच निकली।

दोस्तों, इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं और ये मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी का ईमेल आया है और इन्होंने लिखा है कि आपको मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार। और सायरा बानो पर केंद्रित कार्यक्रम एक ही कलाकार बेहद पसंद आ रहा है।

भी हमें बेहद पसंद आया। इसी तरीके से एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो पर केंद्रित गाने सुनवा रहे हैं, उनकी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं और उनका फिल्मी सफरनामा बेहद रोचक जानकारी के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें बेहद ही पसंद आ रहा है। यादगार प्रस्तुति के लिए आपको बधाई, ये कहना है हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापारा से। ऐसे ही हम कुछ और संदेश लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि सायरा बानो के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो बहुत सारी अच्छी खासी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों को पसंद आते हैं। जैसे कि 1968 में एक फिल्म आई थी पड़ोसन, और इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया बिंदु का किरदार आज भी बेहद कल्ट माना जाता है। उसी तरह से 1970 में आई थी पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार के साथ इस फिल्म में उनकी भूमिका को बेहद सराहना मिली। शागिर्द 1967 में आई थी जॉय मुखर्जी के साथ, इस सुपर डुपर हिट फिल्म में उनके लिए फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं जैसे कि आई मिलन की बेला, ब्लफ मास्टर, झुक गया आसमान, विक्टोरिया नंबर 203। और बात अगर दिलीप कुमार साहब की हो, क्योंकि उनके साथ भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है और उनमें से कुछ बेहतरीन फिल्मों के अगर नाम लेना हो तो गोपी, सगीना और बैराग प्रमुख हैं। तो लगभग दो दशकों तक फिल्मी दुनिया में वे सक्रिय रहीं और आज 23 अगस्त है और आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था, तो इस तरह से हम उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएँ भी अपने इस चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल की ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से दे देते हैं। और साथ ही अब आपको पड़ोसन फिल्म से ही एक बेहद प्यारा सा नगमा सुनाते हैं जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार साहब ने।

एक ऐसा मैसेज हमारे पास और भी आया है जो कि मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का है। इन्होंने लिखा है, अरुणेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आप जैसे श्रोताओं का प्यार है और हाँ लगाव है जो हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतरीन बना देता है। और कुछ और मैसेज जल्दी से ले लेते हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हैं। इसके अलावा गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार में आज आप सायरा बानो पर जो जानकारी दे रहे हैं, उनकी फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो दिलचस्प किस्से सुना रहे हैं वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से भी मैसेज आया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सायरा बानो की, और सायरा बानो की अगर कुछ और बातें करें उनकी फिल्मों के बारे में खास तौर पर, तो आपको पता है ना दिलीप कुमार साहब जो है बेहद ही शांत और गंभीर स्वभाव के माने जाते थे, जबकि सायरा बानो तो बेहद ही चुलबुली और शरारती अंदाज वाली महिला थी। और 1967 में फिल्म पन्हाला में शूटिंग के दौरान एक दिन रात में बिजली चली गई। ऐसे में दिलीप साहब चुपचाप बाहर निकल जाते और

और खिड़की पर छोटे छोटे पत्थर मारते। अब सुनसान माहौल में पत्थरों की आवाज सुनकर सायरा और उनका स्टाफ डरने लग जाता और इसमें दिलीप साहब को बेहद मजा आता। ऐसा ही एक और किस्सा है, फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान सायरा बानो की तबीयत अचानक खराब हो गई और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। और इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर मनोज कुमार साहब से किसी ने कहा कि वे सायरा बानो की जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को लेकर के फिल्म को पूरी कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मनोज कुमार साहब ने कहा कि वह सायरा के ठीक होने का इंतजार करेंगे और जरूरत पड़ी तो फिल्म को बंद कर देंगे, लेकिन सायरा बानो के बिना पूरब और पश्चिम फिल्म नहीं बनेगी। और इस व्यवहार से मनोज कुमार के इस व्यवहार से दिलीप साहब यानी दिलीप कुमार साहब बेहद प्रभावित हुए और बहुत सालों बाद जब मनोज कुमार ने क्रांति फिल्म बनाई और दिलीप कुमार साहब को उसमें काम करने का ऑफर दिया तो उन्होंने बिना स्क्रीन प्ले यानी बिना कहानी सुने ही या पढ़े ही इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। दिलीप कुमार ने इसे मनोज कुमार के पुराने एहसान का सम्मान बताया। एक और भी दिलचस्प किस्सा यह है कि जब दिलीप कुमार का और सायरा बानो से पूछा गया कि उनका अगर बेटा होता तो कैसा होता, तो उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेटा होता तो शाहरुख खान जैसा होता। दरअसल एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि दुख और दर्द भी सायरा बानो की जिंदगी में आया। दरअसल दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में सायरा बानो की प्रेगनेंसी को लेकर के एक ज़रूरी बात ये बताई थी कि उस दौरान कुछ फिल्मी जो मैगजीन्स होती हैं या जो अखबार होते हैं जो फिल्मों की गॉसिप्स लिखते हैं, और उसमें ये लिखा गया था कि सायरा बानो माँ नहीं बन सकती हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। दिलीप कुमार साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके मुताबिक 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई थी और जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते वे बाथरूम से गिर गई थी। और इसके बाद जब वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो ऑपरेशन नहीं हो पाया और गर्भनाल में फंसने की वजह से बच्चे को बचाया नहीं जा सका। तो ये एक बेहद ही दर्दनाक हादसा था और इसके बाद सायरा बानो ने दोबारा फिर कभी इस दिशा में नहीं सोचा। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की जो जोड़ी थी वो बेहद ही दिलचस्प और उन्होंने सुख दुख सब साथ साथ अपने ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों को साथ साथ महत्व दिया है। और अब दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो आपको इस कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों मैं भी चला अब अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, इस वायदे के साथ फिर किसी न किसी कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाथरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी देखो जैसे ही सामान लगे ना मोए तो मायके की बहुत याद आवे।
0: हाँ।
1: पेड़न पे पड़े झूले और गीत गाती सखी याद आवे।
0: हाँ बहना, मायको तो मायको होए, हमारो बचपन तो वही मायके में बीतो है ना। कितने हंसी ठिठोलिन की गूंज व आंगन में बसी है, सावन की झरी के संग वे गीत हु याद आमे। सावन आयो रिम झिम रिम।

0: बोयो सखी, बस जे ना है कि हम झूला झूलते और गीत गाते, भैया तो झगड़ो हूँ खूब हो तो, जब भैया अलबेटा में फंसाए देते।
1: और बहन बहन भाई के झगड़े में एक लंग सबरी बहने रह जाती और दूसरे लंग सबरे भाई।
0: हाँ
1: पर देखो ना, ब्याह के बाद याई बंधन के काजें भाई बहन एक दूजे के काजें हुड़के हैं, याद करे हैं, कितेक लोकगीत या के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
0: हाँ सखी, भैया के काजे बहना दरवाजे पे खड़ी प्रतीक्षा करें और भैया की राह देखें, इन सब में हूँ कितेक आनंद आए और कितेक हुड़क होए माए की जावे की।
1: हाँ, आनंद तो प्रतीक्षा में हूँ होए बहना, पर देखो अब तो मोबाइल ने, मेट्रो ने, गाड़ी ने समय की प्रतीक्षा को कम कर दियो है।
0: हाँ, और सखी रक्षाबंधन तो पूरे देश में मनाया जाए, पर जो हमारे ब्रज में सनूने की प्रथा चली आई रही है ना, वो सबते अनूठी है, क्योंकि ब्रज में दामाद को घी बूरो खवायो जाए यह दिना।
1: हाँ, और चुटकी हुले में के कहा घी बूरा खाए बिना जाए रे।
0: हाँ, और सनूने पे दीवार पे गेरुते लीप के खड़िया ते सनूने रखी जाए।
1: बेना श्रवण कुमार हूँ बनाए जामे, माता पिता को तराजू में बिठाए भये। देखो बेना, जे त्योहार ऐसा है कि जामे रंग बिरंगे धागे पवित्र बंधन ते आत्मा की गहराई तक जुड़े हैं, और यह पवित्र सात्विक बंधन की प्रथा सदियों पुरानी है। यही रक्षा सूत्र ने देवतान की रक्षा करी जब इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी।
0: हाँ सखी, और यमुना ने यमराज को राखी बांध के अमरता को वरदान प्राप्त कियो, और द्रौपदी ने हूँ श्री कृष्ण को धागो बांधो, तो देखो ना कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर बढ़ाए के लाज राखी। या त्योहार पे बहना जब भाई की कलाई पर राखी बंधे तो जे ही सोचे के बुरे वक्त में हमारो भाई हमारी रक्षा करे।
1: और बहना, इतिहास और लोक साहित्य ते कई कहानी निकसे हैं। एक कहानी है कि जब सिकंदर दुनिया जीत पे निकसो हो, तो वहाँ की रानी ने राजा पुरु को धागा भेज अपने पति की रक्षा की याचना करी, और याई तरिया मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के आक्रमण ते बचाव के काजें हुमायूं को राखी बांधी और रक्षा की कामना करी।
0: सखी बड़ो ही पवित्र त्योहार है जे भाई बहन के रिश्ते को, जा मैं भैया राखी बंधवाए को आतुर रहवे और बहन की बाट देखे, और जो सखियां और बहनें आते हैं बेहू अपने की बाट देखे।

0: बड़ो ही मधुर गीत आपने सुनवायो संवेद स्वर में। बहना सावन की ऋतु मिलन और विरह को संगम सी लगे। कहूँ तो बाट जोहती सखियाँ और कहूँ पियाते मिलन या भैया के आईबे की खुशी। सच में ही सावन कैसे लोक जीवन को प्रभावित करे और गीतन में जे भाव प्रकट हुए हैं।
1: हाँ सखी, तुम सही कह रही हो। सावन में गाए जाए वाले लोकगीतन में प्रेम और संस्कृति की झलक मिले। तो आज यही विषय पे भेंट वार्ता सुनवाए दें। जब भेंट वार्ता का विषय है ब्रज में सावन के लोकगीतन में लोक जीवन, प्रेम और संस्कृति की मधुर अभिव्यक्ति, यहाँ पे जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल और भेंट कर रही हैं श्रुति पुरी।
2: राधे राधे श्रोताओं, सावन के संग ही संग ब्रज की धरती पे हरियाली सी छाई रही है। घटा घिर रही हैं, बिजुरी चमके हैं, मोर बोले हैं और बांगन में झूले पड़ गए हैं। आज की ब्रजमाधुरी में हम बात कर रहे हैं ब्रज की उन पुरानी मल्हारन की, जिनमें केवल सावन की फुहार नाए बल्कि ब्रज को लोक जीवन, नारी के मन की बात, प्रेम भक्ति रिश्तेन की मिठास और समाज की अनेक तस्वीरें ने दिखाया गया है। आज हमारे संग हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल जी, ब्रज भाषा लोक संस्कृति की समर्पित साधिका हैं। पूर्णिमा जी राधे राधे।
3: सभी श्रोता भैया बहनन को राधे राधे।
2: देखो पूर्णिमा जी, सावन को नाम सुनते ही ब्रज में जो हरियाली धरती है, कदम्ब की डार है, झूला झूलती सखियां हैं, यमुना की लहर और दूर दूर तक कहीं कान्हा की मुरली की तान सुनाई देवे है, तो ब्रज में ऐसा लगे है कि सावन बरस रहे है। और सावन को जो महीना हुए है ना, वो मन के भीजवे को महीना है और या भीगे मन ते निकले हैं हमारी ये लोक गीत मल्हार। तो हम आपते जे जानना चाह रहे हैं पूर्णिमा जी के सावन के लोक गीतन में, सावन की मल्हारन में कैसे लोक संस्कृति चित्रित है जाए है, या के बारे में हमें कछु बताओ।
3: हाँ श्रुति बहन, मैं तो यही कहूंगी कि ब्रज की मल्हार केवल गीत ही ना है, ब्रज के लोक मन की आवाज है।
2: बिल्कुल।
3: तो मैं आपको एक मल्हार सुनाऊं। सावन आयो और ब्रज में झूला ना पड़े, मल्हार ना गाई जाए, ऐसो कैसा है सके है।
2: बिल्कुल।
3: बागन में झूला पड़े हैं, रेशम की डोरी से झूला सजे हैं, सखी झूले हैं और मन में राधे श्याम की छवि बसे है। यही भाव की एक सुंदर मल्हार है।
2: हाँ सुनाओ।

0: गयो अधिक सुहावनो जी। सावन की या
1: बात
0: मल्हार में बहन प्रकृति भी है और भक्ति भी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। और
0: हाँ
1: अभी हाल ही तीज निकल के गई है,
0: हाँ
1: तो तीज की हूँ कछु व्याख्या करो सावन के गीतन में।
0: तीज तो ब्रज की बेटी और बहुन को बहुत प्यारो त्योहार है। तीज आई तो बागल में झूला पड़ गयो और पीहर की याद भी जगवे लग जाए।
1: सच
0: जो
1: में।
0: बहन बेटी अपनी ससुराल में हुए है ना, तो मैं वाई की एक मल्हार सुनाऊं।

0: गए या मल्हार में श्रुति बहन, जो बेटी अपनी ससुरार में है ना, वो अपने बारे में वर्णन कर रही है और
1: हाँ
0: वो पियर जावे को सपनों देख रही है।
1: हाँ और वहाँ के मन की कसक कितनी बढ़िया या मल्हार के माध्यम से बताई गई है कि कैसे छटपटाए रही है कि
0: हाँ
1: अपने वीर के संग वो अपने पीहड़ चली जाए और वहां पे सब घरवारेन के संग झूला झूलवे को तरस रही है। लेकिन ऐसे और भी कई लोक चित्र होंगे ना जो मल्हारन में प्रत्यक्ष परिलक्षित है रहे होंगे, बिनके बारे में हूँ कछु बताओ।
0: हाँ बहन, हाँ तो बहन, सावन के महीना में बहू बेटी सब सज धज के हरी हरी चूड़ी पहन के कुआं पे पानी भरवे जाएं और आपस में बात करें हैं, और कछु तो अपने मन में मगन है कि पानी भरती रहें और जो अगल बगल में बात होती रहे ना, बात सुनती रहें। तो ऐसे ही एक चित्रण में मल्हार के द्वारा आपको सबको सुनाऊं। बहू अपनी सास से कहे है कि मैं पानी भरवे गई और मैंने वहां एक बात सुनी। तो बाकी सास कहे कि क्या सुनी, तो वो मल्हारन के माध्यम से वह अपनी भावनाएं व्यक्त करे है।
1: बिल्कुल सुनाओ।
0: हाँ वो कहे है।

0: मेरी सासुल सुने आई नई नई बात कुएं पे मैं ना बोलती। वो अपनी सास से कह रही है कि सासुल आज मैंने कहा सुनो मेरी
1: हाँ
0: बात समझो।
1: हाँ
0: तो सास कह रही है हाँ बहू बता। एक लुगाई सासुल यों कहे अरी बहना तेरे बलम को दूजो ब्याह कुए पे मैं ना बोलती।
1: पूर्णिमा जी, देखो लोकगीत में कितना बढ़िया चित्रण किया है। मैना के मुख सौ अपने हृदय की बात कह रही है। और एक बात और है ना कि लोकगीत तो लोक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो आगे या गीत में कहा कहे हो गए है।
0: हाँ बहन वो कह रही है अपनी सास से पूछ रही है कि मेरे पति की दूसरी शादी की दूसरे ब्याह की चर्चा क्यों चल रही है। तो पूछ रही है के तोरी सासुल मेरी मैं हीन बाप की अरे सासुल कह तो मैं लाई थोड़ो दान कुए पे मैं ना बोलती। फिर सास कह रही है
1: जवाब दे रही
0: हाँ
1: है।

0: थोड़ो दान कुए पे मैं ना बोलती।
1: कितना प्यारा लिखा है।
0: हाँ बहन, ये तो आपसी बातचीत को एक माध्यम है जाए आपस में, या मल्हार
1: बिल्कुल।
0: के माध्यम से सब बात है जाए। अब वो बता रही है कि वो दूसरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे
1: हाँ,
0: हो।
1: कि कहीं मेरे रूप रंग पे तो सवाल
0: हाँ हाँ वो
1: ना
0: सास बतावे फिर अपनी बहू को, बता रही है कि तू तोरी बहुअल मेरी सामरी, तू तोरी
1: होए।

0: बोलती
1: बहुत ही
0: मेरी
1: सुंदर,
0: बहुवल।
1: बहुत सुंदर। देखो लोकगीत जो हुए हैं ना, हमें केवल मनोरंजन ना ही करावे हैं, बल्कि समाज की जो बीती हुई तस्वीर है ना, वह को सामने लाए के रखे हैं। तो पूर्णिमा जी, कहा सावन की मल्हारन में सामाजिक जीवन की लोक गाथाएं भी मिले हैं।
0: हाँ महल, देखो एक ऐसी मल्हार है कि पहले समय में अपनी बेटी को, बालकन को ब्याह छोटी उम्र में कर दियो जाओ, फिर वो बेटी ब्याह के बाद कई साल तक अपने मायके में ही रहे करेगी, और जब तक वो जवान है जाएं, उनके मन में प्रेम प्यार की बात हिलोर लेवे लग जाएं, तो उनको फिर कहूं दूसरी जगह प्रेम चक्कर चल जाए करे हो कब। तो ऐसी ही एक मल्हार चंदना के रूप में हमारे लोक जीवन में बड़ी प्रसिद्ध है कि चंदना को विवाह छोटी उम्र में है गयो, फिर वाके बाद वो अपने मायके में रही, तो वाको बाद में जब वो थोड़ी बड़ी भई, समझदार भई, तो वाको प्रेम एक समला नाम के सुनार के संग है गयो। और
1: अच्छा।
0: जब बाकी भाभी को ये बात पतो चली, तो माने अपने पति से कही, यही को चित्रण मैं मल्हार के द्वारा करूं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो अपने पति ते कह रही है और चंदना को भी समझा रही है, तीजन चर्चा हीरी चंदना चल रही जी, ए जी कोई मचोए, अरे हम में

0: जी जगत हंसाई, चंदना तेरी है रही जी।
1: समझाए रही है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: गामन में तो बड़ी जल्दी फैल जाए ना ऐसी बात।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, चंदना की जो भाभी है ना, वो अपने पति से या कि चंदना के भैया ते कह रही है, ए जी कोई सुनने ले ओ,

0: उसके भैया ने चिट्ठिया लिखी। चिट्ठिया को मतलब धोरे पे कारो लाला जी ने लेके
1: कितना
0: दियो
1: बढ़िया
0: जी
1: लिखा है ना, धोरे पे
0: पे कारो।
1: कागज, यानी
0: हाँ
1: सफेद कागज पे

0: सही जी।
1: कितनी बढ़िया बात कही है चंदना की मल्हार जी, हमें बतावे है कि लोकगीतन में केवल प्रेम और त्योहार नहीं है, बल्कि समाज की मर्यादा, स्त्री की स्थिति और वह समय की सामाजिक व्यवस्थाओं दर्ज है। तो हम आपसे पूर्णिमा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रज में कान्हा की भी तो लीलाएं हुआ करती, तो कान्हा की लीला भी का मल्हारन में अलग अलग रूपन में मिले है?
0: हाँ बहन, बिल्कुल अलग अलग रूपन में मिले हैं। कान्हा तो ब्रज के कण कण में बसे हैं, कहीं मुरलीधर, कभी गोपाल, कभी नटखट कान्हा, और कभी मनिहारी बन के ब्रज की नारिन के बीच में लीला करे हैं।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ कान्हा को राधा के रूप में वर्णन ना है, यहाँ कान्हा राधा का रूप बनाए के नाया हमें। यहाँ तो कान्हा चूड़ी बेचने वाली मनिहारी को रूप धरे हैं। लोकगीत में या मल्हार मेवा को बड़ा सुंदर चित्रण है।

0: नर लाल छलवे को रानी राधे का।
1: देखो कान्हा को ये रूप, उनकी चंचलता, हास परिहास, ब्रज की लोक लीलान को कितना जीवंत, हाँ जीवंत बनाए देवे हैं। और देखो बहन, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आपकी जो मल्हार में भक्ति और दाम्पत्य स्नेह को जो भाव है वो बहुत गहरा दिखे है, जैसे आपने मैना की बात करी या जैसे आपने जो अभी चंदना को मल्हार सुनायो, तो वहाँ में दाम्पत्य जीवन के बारे में हूँ कछु लक्षण से दिखे हैं, बिनको कछु बयान मिले हैं, तो दाम्पत्य जीवन की भी बात मल्हारन में आई है।
0: हाँ बहन बिल्कुल आई है। या को सबसे बढ़िया एक चित्रण है सुदामा की पत्नी द्वारा अपने पति को भगवान के पास भेजनो और उन पे विश्वास करनो, और वो सुदामा जी ते कह रही हैं सुशीला जी

0: मेरे स्वामी कृष्ण हरेंगे त्यारी पीर चले जाओ स्वामी द्वारिका। और वो अपनी स्थिति को वर्णन कर रही हैं सुशीला जी कि छान पुरानी स्वामी है गई मेरे स्वामी टप टप टप कत बूंद चले जाओ स्वामी द्वारिका।
1: कितना मार्मिक है।
0: और कहा कह रही है फूटी परात तय सब फूट गए मेरे स्वामी थाली के है गए नौ दस टूक चले जाओ स्वामी द्वारिका।
1: यही तो है कि ब्रज के लोक गीतन में दुख के बीच में हूँ आस बनी रहवे है। तो पूर्णिमा बहन एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँ हूँ कि जैसे संयोग को मल्हार हुए है वैसे ही विरह की भावना हूँ, विरह के मल्हार हूँ तो ब्रज में बहुत प्रचलित हैं और वो तो बहुत ही मार्मिक रूप में मिले हैं। जैसे एक मौकू याद आए रहे हो है कि जब ते गए हैं मोहन छोड़ के ब्रज का भयो है बेहाल पड़े हैं लाले जान के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऐसा ही और मल्हार आपकी स्मृति में आए रहे हो तो हमारे श्रोताओं से साझा करो।
0: एक सबते मार्मिक और सबते ही विश्वास की और करुणा की एक मल्हार है जो आप समझेंगे कि रुक्मणी और कृष्ण को प्रेम। तो रुक्मणी जी आंसू बहाती बहाती पाती लिख रही हैं और श्री हरि पे अपनी खबर भेज रही हैं और विनती कर रही हैं

0: जी बहन, या आखंती नीर बरस रहे हो है, पर मन श्री हरि को पुकार रहे हो है, विरह में भी भक्ति बस गई है।
1: कितना मार्मिक है, हृदय पसीज सो जाए है ऐसी मल्हारन को सुन के। पर देखो, एक मुको याद आ रही है, मैंने बहुत पहले सुनियो हो कि जब भगवान पे विश्वास की बात है, और ये भी एक द्रौपदी की मल्हार मैंने सुनी काई, बहुत समय पहले सुनी, आपको कच्ची स्मृति में आ रही है, बहुत ही मार्मिक सी
0: बहन
1: मल्हार
0: भाई,
1: है।
0: हम कैसे भूल सके हैं, वो तो हमारी धरोहर है बहन। हाँ, सभा के बीच में द्रौपदी संकट में ही और अपने साम्रे को मल्हार के द्वारा पुकार रही, मेरी बहना।

0: बहना।
1: आगे कहाँ कह रहे हैं या मल्हार में?
0: हाँ बहन, स्त्री की लज्जा ही सबसे बड़ो गहनो है, और बाकी लाज उतर रही है तो वो कन्या के आस लगाए के बैठी है
1: बिल्कुल
0: और कह
1: साची कह
0: रही
1: रही है।
0: है कि ची

0: अरे
1: कितना भावुक वर्णन है ना। और या को एक और कड़ी तो है या कि एक और
0: हाँ
1: ही कड़ी
0: बहन,
1: है।
0: ये तो सबसे बढ़िया है, वो बता रही है कि कैसे हारे कहाँ वे हो। हाँ मेरी बहना जुआ में पति ने हारी, रोवे द्रौपदी सी नारी, लाज बचइयो मेरे सामरे।
1: तो अटूट भरोसा दिखाई दे
0: हाँ
1: रहे हो है
0: सुती
1: यहाँ
0: बहन,
1: में। ये तो बहुत मर्म की बात हमने करी। पर एक बात बताओ पूर्णिमा बहन, कि जब मल्हार में ज्यादातर जो हुए है ना, वो श्यामा श्याम के श्रृंगार को वर्णन हो मिले हैं। बिनकू हिंडोरा पे बैठे वह भी दिखावे हैं, बिनकू झूला झूलामत वह भी दिखावे हैं, और जो विहार करते वह भी दिखावे हैं। तो ऐसा हो कछु श्रृंगार को सुंदर वर्णन आप हमें हमारे श्रोतान को बताओ मल्हार के माध्यम से।
0: हाँ बिल्कुल बहन। ब्रज की नारी अपने श्याम के रूप को देख के बहन उनकी छवि को मन में बसाए ले है और कह रही है रुक्मणी कि मेरी मैया मोइना सुहावे शिशु, पाल मेरो तो पति श्याम
1: कितना
0: है।
1: सुंदर लिखा है।
0: हाँ
1: हाँ
0: बता रही है मोर

0: मेरी
1: वाह
0: बहन।
1: बहुत
0: या को भाव तो आप समझ गई होंगी जब
1: बिल्कुल
0: उनको रिश्तों
1: बिल्कुल
0: शिशुपाल के संग करने की सोची ना उनके पिताजी
1: बिल्कुल। और
0: भैया
1: देखो
0: ने।
1: कितना सुंदर वर्णन किया है, मोर मुकुट हू है, वैजंती माल है, हाथन में मुरली है, और शाम के या रूप को ब्रज में याही की भक्ति करी जाए है, प्रेम बरसायो जाए है याही रूप पे, और प्रेम और भक्ति दोनों याही रूप में तो बसे हैं। तो पूर्णिमा जी, आज आपने सावन की मल्हार के माध्यम से ब्रज के लोक जीवन, प्रेम भक्ति और सामाजिक जीवन की बहुत सुंदर तस्वीर हमारे श्रोतान के सामने रखी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें ब्रज के लोक जीवन, प्रेम भक्ति, नारी मन और संस्कृति ते बेजोड़ तरीका से जोड़ दियो है। याई मधुर भाव के साथ हम आपको हृदय से अभिनंदन करे हैं और आप ते विदा ले में हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे हैं भेंट वार्ता। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल और भेंट करता हैं श्रुति पुरी। अभियाई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए है। मोय यानी वंदना जोहरी को
3: और मोय यानी के वंदना को
2: देव अनुमति। नमस्कार।
3: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
2: विवेक।

0: कुमार तोमर।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। आज हम आए हैं आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के
1: रेडियो क्विज प्रोग्राम में।
0: मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
2: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
3: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
4: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
5: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
6: मैं सवरीन कक्षा 8वीं से।
0: तो दोस्तों, आज हमारी पिटारे में है अनेक छोटी छोटी मगर प्रेरणादायक कहानियाँ और कविताओं का खजाना। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हंसने को, गर्व करने को, भावुक होने को? क्योंकि हम भारत की बात करेंगे जो हमारे दिलों में बसता है। वैसे सौम्या, इस बात से मुझे याद आया, आपको एक कहानी लेकर आई है।
3: हाँ जरूर, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगी?
0: जरूर जरूर।
3: दोस्तों, कहानियाँ सुनना जो सबको पसंद है, आधुनिक मानव का विकास भी तो एक सुंदर कहानी है। आज मैं आप सभी के सामने भारत की अनेकता में एकता विषय को लेकर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रंगों की एक ही डोर। कहानी छोटी है लेकिन दिल छू लेने वाली है। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी के सफर पर चलते हैं। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की एक छोटी सी सोसाइटी में एक नया सांस्कृतिक पार्क बन रहा था। पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कैनवस लगाया गया, जिस पर पूरे भारत की एक साझी पेंटिंग बनानी थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों से आए 4 बच्चों को चुना गया। असम से अंधता, पंजाब से मनप्रीत, तमिलनाडु से कार्तिक और राजस्थान से आया कबीर। पहले दिन जब चारों बच्चे पार्क में मिले तो सबने अपनी अपनी कला दिखानी शुरू करी। मनप्रीत ने ढोल और सरसों के खेत बनाए। कार्तिक ने अपने रंगों से सुंदर मंदिर और नारियल के पेड़ उकेरे। अंधता ने बिहू नृत्य की आकृति बनाई और कबीर ने रेत के टीले तथा रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सुंदर कठपुतलियां बना दी। लेकिन जब शाम को उन्होंने पेंटिंग को दूर से देखा तो वह बहुत बिखरी सी लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि यह एक ही कैनवस है। सब अपनी अपनी तस्वीर को बेहतर बताने लगे। तभी सोसाइटी के दादाजी वहां आए। उन्होंने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बच्चों, तुम सबने अपनी अपनी जगह की तो सुंदरता को उकेर दिया, लेकिन एक बात बताओ, इस चित्र में भारत कहाँ है? कार्तिक ने पूछा, दादाजी, भारत तो इन सब में है ना? दादाजी ने कहा, ये सब अलग अलग मोती हैं। जब तक इन्हें एक धागे में ना पिरोया जाए, यह माला नहीं बनेगी। अगले दिन चारों बच्चों ने एक अनोखी योजना बनाई। मनप्रीत के खेतों के ऊपर से बहती हुई नदी को कार्तिक ने अपने नारियल के बागों से जोड़ दिया। कबीर के राजस्थान के रेगिस्तान की सीमाओं पर अंधता के असम की हरी भरी चाय की पत्तियां बिछा दी और सबने मिलकर बीचों बीच एक विशाल तिरंगा फहराता हुआ बनाया, जिसकी छाव में ये सारे दृश्य एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जब पेंटिंग पूरी हुई तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत एक ही सांस ले रहा हो। भाषा अलग थी, पहचान अलग थी, खान पान अलग था, लेकिन कला के उस कैन

0: उसने सबको एक कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही तो है अपना प्यारा भारत। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, बोलियों, खान पान, नृत्य कला आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। मगर जब एक भारत की बात आती है तो हम सब भारतीय बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी तो यही कहा है, पहले और सबसे अंत में हम सब भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।
1: इतना देशभक्ति प्रेम देखकर मानो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है।

0: अक्षता, तुम्हारे पास भी तो एक सुंदर कविता थी, क्या तुम वो हम सबको सुनाओगी?
1: जरूर जरूर, मैं सबको अपनी प्यारी सी कविता जरूर सुनाऊंगी। आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी लोरी लेकर आई हूँ, जिसका विषय है एक लोरी शहीदों के नाम। निंदियां आना मीठी मीठी, जब पल के झपकाऊं मैं, नमन शहीदों को तुम्हें करना, जब

गाऊं मैं। तो चलिए अब मैं इस मीठी सी निंदिया में उन महान वीरों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आजादी जती नश फाक उल्ला से।

मैं बुध को देखूं और सुने आऊं मैं, स्वामी विवेका गौतम बुद्ध को देखूं और सुने आऊं मैं। निंदियां आना मीठी मीठी जब पहले की झपकाऊं मैं। वीरता उम्र के मोहताज नहीं होती। अब मैं उन बाल वीरों के सपने के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने छोटी उम्र में ही अद्भुत साहस किया। गुरु गोविंद सिंह के चार शहाबजादे जिनको बाल में ही दीवारों में चिनवा दिया गया था। जोरा जीत जुजार फते सा, जोरा जीत जुजार फते सा, बालक वीर बन आऊं मैं।

भारत की वीर गाथा केवल और केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। अब मैं उन वीरांगनाओं के सपनों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने साहस और त्याग की मिसाल कायम की। रानी अहिल्या झलकारी दी से।

0: थी जब पल के झपकाऊं मैं, नमन शहीदों को तुम करना जब उनमें खो जाऊं मैं, जब उनमें खो जाऊं मैं। धन्यवाद।
1: अरे वाह, इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर।

0: सबरीन, तुम्हारी आंखें कुछ लाल लाल सी लग रही हैं। लगता है तुमने रात भर कहानियां ही लिखते में अपनी आंखों को दर्द दिया है बस।
1: हाँ, क्या करूं?
2: सबरीन, आप ना टीवी कम देखना आज और अपनी आंखों को आराम देना, तो आपकी आंखों की लालिमा चली जाएगी।
0: ठंडे पानी से आंखों को धुला करो सुबह सुबह बहुत अच्छी तरीके से।
3: आप घर जाकर 15 मिनट अपने आंखों के ऊपर खीरा रखना
1: और अपनी आंखों के आसपास हमेशा सफाई रखना।
4: आप टीवी और फोन बहुत कम देखना।
2: वैसे अगर हम आंखों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, 25 अगस्त से नेत्र पखवाड़ा आ रहा है और ये 8 सितंबर तक चलेगा।
0: अरे वाह,
1: इस नेत्र पखवाड़े से तो हमें काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। किसी को इसका उद्देश्य पता है?
0: नहीं, आप क्या बताएंगी?
1: इसका उद्देश्य ये है कि ये लोगों को नेत्र दान के प्रति प्रेरित करता है और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है इसकी।
3: दोस्तों, यह मौसम बारिश का है, अगर इस मौसम में गीत संगीत के साथ चाय पकौड़े हो जाए तो बात ही क्या। बरसात की बात की है तो क्यों ना हम अपने विद्यालय की छात्रा साक्षी दीदी से कजरी का गीत सुने।
5: हाँ हाँ, जरूर जरूर।

0: अरे रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, चलो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ चलो
2: हाँ, जरूर।
1: वैसे सौम्या तुमने क्या सोचा है रक्षाबंधन के बारे में?
0: मैं तो अपने भाई से काफी सारे तोहफे मांगूंगी और उसको सबसे प्यारी राखी बांधूंगी ताकि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे।
1: और अक्षिता तुमने?
3: मैं तो अपने भाई को कितनी भी प्यारी राखी बांध दूं, देगा तो बेको वो वैसे भी कुछ भी नहीं।
1: कैसा भाई है? अक्षत तुमने क्या सोचा है अपनी बहन को देने के लिए?
4: मैं अपनी बहन को ढेर सारी चॉकलेट दूंगा।
1: बस चॉकलेट ही?
4: और क्या,
3: अपनी बहन को बस चॉकलेट से मनाओगे?
4: हाँ बस।
3: अरे ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है, क्या वो खुश हो जाएगी चॉकलेट से?
4: छोटा है लेकिन मेरी भावनाओं से भरा है।
0: हाँ वैसे भी भाई बहनों को तोहफों से ज्यादा भावनाएं चाहिए होती हैं।
3: ये भाई बहन के बीच का प्यार जताता है और इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए।
5: हाँ एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो उसकी सुरक्षा करे, उसके साथ रहे।
4: और एक भाई भी राखी बनवाने के बाद वह सारी चीजें करता है जिससे कि उसकी बहन सुरक्षित रहे। और हाँ मैं अपनी बहन के लिए चॉकलेट्स के अलावा रेडियो पे एक गाना भी डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: कौन सा?

0: बातें तो बहुत हो गईं, अब समय हो गया है घर जाने का। तो आप तैयार हैं घर चलने को?
1: हाँ।
0: तो चलो अब घर चलते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई कहानी नई कविताओं के साथ
2: इसी चैनल इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर।
0: तब तक

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

0: स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग, किस्सा गोपी चंद का।
1: नमस्कार। आज के कार्यक्रम में लोक संगीत विधा स्वांग, किस्सा गोपीचंद। आकाशवाणी दिल्ली के ग्रेडेड कलाकार केशव कुमार और साथी को। केशव कुमार हैं गोपीचंद और पूजा राम हैं।

रानी पाटम दे, कोमल चौधरी बहन चंद्रावल, परवेश भाटी हैं गुरु गोरखनाथ, अभिषेक भाटी हैं गुरु भाई, मोहित भाटी गुरु भाई और खेमचंद फोगाट हैं हारमोनियम पर, प्रदीप लहरी हैं ढोलक पर, सुभाष चंद नगाड़ा पर, हरीश कुमार टैट पर और लोकेश कुमार हैं बैंजो पर। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति स्वांग किस्सा गोपीचंद।

0: दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत है स्वांग किस्सा राजा गोपीचंद। धारा नगरी यानी धौलागढ़ के राजा पद्मसेन, जिनका इकलौता पुत्र था गोपीचंद और इकलौती पुत्री थी चंद्रावल। राजा की मृत्यु के पश्चात गोपीचंद राजा बन जाते हैं। साथियों, गोपीचंद की मां का नाम था मैरावंती। उनके 16 रानियां थी और 12 बेटियां थी, लेकिन पुत्र नहीं था। एक रोज की बात, बड़ी रानी पाटमदे, जिसको एक स्वप्न दिखाई दिया। सपने में राजा गोपीचंद साधु के बाने में दिखाई देते हैं। दिल दहल जाता है रानी पाटमदे का। सुबह होती है, उदासी घूम रही थी। राजा गोपीचंद पूछने लगे, महारानी, क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकता हूँ?
1: महाराज, मुझे सपना आया है, और सपना भी ऐसा कि कोई भी रानी ये नहीं चाहेगी कि उसका ये सपना पूरा हो। मैं आपसे अपने सपने का जिक्र करना चाहती हूँ महाराज।
0: महारानी, सपने आल जंजाल हुआ करते हैं। सपने की बात कोई सत्य नहीं हुआ करती। जन क्या दिखाई दे जा सपने में, कह करके बताइए महारानी।

प्रेमी बंधु, इस तरह से सपने का सारा हाल महारानी पाटन दे महाराज गोपी जी को बताती है। मां बैनावंती एक रोज अपने पुत्र गोपीचंद को महलों में स्नान करते हुए देख लेती है। स्वर्ण जैसा शरीर, सोचने लगी ये कंचन जैसी काया एक दिन पिता पद्मसेन की तरह काल का ग्रास बन जाएगी, क्यों ना अपने बेटे को अमर करा दिया जाए। प्रेमियों, कहने लगी गोपीचंद, तू गोरखनाथ का शिष्य बन जा, अगर तू अमर हो जाएगा तेरी सूरत भी देखती रहूंगी और मेरे मन पे तसल्ली रहेगी कि मेरा बेटा अमर है। मना करते ही गोपीचंद मैया, योग साधना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मां की जिद के आगे हार जाते हैं, जाकर के गोरखनाथ का शिष्य बना देती है। साथियों, गोपीचंद कान फड़ा के जोगी तो बन गए, लेकिन जब

0: प्राणी मैनावंती वापस आती है। रात को सुनी सुनी हवेलियों को देख करके चिंतन करने लगी। सुनी हवेलियां खाने की तरह दौड़ रही थी। बारे कन्या और सोले रानियों का रुदन देखती है। अब तो सुबह होते ही रानी पाटंदे पहुंच जाती गोरखनाथ जी के पास में। महारानी मैनावंती किस तरह से गोपीचंद से कह रही है, गोपीचंद कहिए माता,
1: मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपनी आंखों का तारा अपनी आंखों से दूर कर लिया। आज ही तेरी माँ तुझे वापस लेने के लिए आई है, चल मेरे लाल वापस महलों में चल।
0: हे माता, तूने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे सांसारिक मोह माया से दूर कर दिया और उस परमात्मा के ध्यान में लीन कर दिया है।
1: नहीं,
0: लेकिन आप वापस चलने की बात करती है।
1: हाँ।
0: अब मैं गुरु की सेवा में लीन हूँ, आज गुरु गोरखनाथ ही मेरे दाता है, विधाता है, माँ है, बाप है, भगवान है, उसके अलावा भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
1: ऐसी बात मत कर बेटा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
0: कहिए माता।

0: हाँ तो गोपीचंद।
1: गुरुजी, आपने जो मुझे इस सांसारिक मोहमास दूर करके अमृत की तरफ रास्ता दिखाया है, जो तुमने प्राणायाम योग अभ्यास मुझे बताए हैं, मैं भली भांति करने लगा हूँ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए।
0: अच्छी बात है गोपीचंद।

0: गोपी चंद
1: जी गुरु जी,
0: आज से आप संपूर्ण साधु बन गए हैं, लेकिन आपका योग जब सफल होगा कि आप अपने महलों में जाकर के अपने बिहार से भीख मांग करके लाएंगे, जब आपका योग सफल होगा।
1: गुरु जी, ये आपने कैसा प्रश्न कर दिया ना गुरु जी, ना ऐसा प्रश्न मेरे सामने मत कीजिए गुरु जी।
0: अगर गोपीचंद, इसमें भी आपकी एक परीक्षा है, अगर आप अपनी बिहाई से माँ कहकर के भिक्षा लाए तो आपका योग सफल हो जाएगा।
1: गुरु जी, जिसके साथ मैंने शादी की है, सात फेरे लिए हैं, मरने जीने का वादा किया है, आज अपनी अर्धांगिनी को कुसुम से जाके मैं माँ कहूंगा। गुरु जी, कोई दूसरा प्रश्न कर दीजिए, ये बड़ा कठिन सवाल है गुरु जी।
0: गोपीचंद, आपको ये आज आपके गुरु का आदेश है कि आपको भिक्षा माँ कहकर के ही

मुझे इस बात का आभास नहीं था मेरी माँ मेरे साथ ऐसा भी करेगी। मैं तो सोच रहा था कि अमर हो जाऊंगा, लेकिन इस बात का पता नहीं था कि ऐसा ऐसा कर्म भी मुझे करना पड़ेगा जिसके साथ शादी कर रखी है, साथ फेरे ले रखे हैं, उसको मां भी कहना पड़ेगा मेरी बात।

इस तरह से गुरु के आदेश पाकर के गोपीचंद चिमटा कमंडल झोली उठा करके चल देते हैं, पहुंच जाते हैं धारा नगरी के उन्हीं रणवासों में। आराख निरंजन, भगवान कोई अंदर हो तो मैं अपने गुरु का आदेश पाकर के भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मैं अपनी किस तरह से अलग जगाऊंगा, आप सुनते रहिए। अगर भगवान भिक्षा दे तो बाहर आ जाएं, मेरी बात सुन लीजिए।

0: आइए प्यारे साथियों, गोपीचंद अलग जगह रहे हैं रानी पाटन देवी के महल के दरवाजे पर। माई,
1: आपकी आवाज काफी देर से मेरे कानों में पड़ी हुई है महाराज, मुझे सुनाई दिया और मैं अपने महाराज की आवाज को बखूबी जानती हूँ। क्या हालत
0: के दरवाजे पर एक घंटे से अलग जगा रहे थे, एक मुट्ठी चून मिल जाए मेरे गुरु का आदेश था। सो भगवान के दरवाजे पर आ गए, भिक्षा देंगे तो साधु ले लेंगे माई, वरना
1: माई
0: खाली लौट जाएंगे।
1: मैं आपकी माँ नहीं लगती महाराज, मैं तो आपके साथ साथ फेरे लेकर इस घर में आई थी। आज आपने ये गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, ये बाणा धार लिया है, आप आइए इन रंग महलों में, ये सब आपका है महाराज।
0: ये रंग महल मेरे काम के नहीं है, मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, धुना रमाता हूँ, राख रमाता हूँ। ना मुझे राजभोग चाहिए, ना सांसारिक सुख चाहिए। आपको भिक्षा देनी है तो भगवान ड्योढ़ी पर आ जाइए माता।
1: अगर आपको भिक्षा चाहिए महाराज तो मेरी बात सुननी पड़ेगी।
0: सुनाइए भगवान।

0: फिर रहे हो महाराज। आपने हंसकर मेरे सपने को टाल दिया था, लेकिन आज आपने मेरा सपना सच कर दिया महाराज।
1: माई, पिछले जीवन की मेरी कुछ भी बात याद नहीं है। जब साधु का संस्कार किया जाता है तो उसके पूर्व जन्म का मृत संस्कार भी कर दिया जाता है, अर्थात उसके पूर्व में कोई उसका रिश्तेदार रिश्ते में है उसका कोई नहीं होता है। आप कहिए क्या कहना चाहती।

0: प्रेमी बंधु, इस तरह से गोपीचंद अपनी डोडी से भिक्षा लेकर के गुरु के डेरे में पहुंच जाते हैं। भजन और ध्यान में लीन है, काफी समय बीतता जाता है। गुरु गोरखनाथ 1400 शिष्यों के साथ बंगाल नगरी में पहुंच जाते हैं, विकट नगरी में। प्रेमी साथियों, अब तो एक रोज गोरखनाथ जी कहने लगे, बेटे गोपीचंद, सुना है इस शहर में तेरी बहन चंद्रावल ब्याही है, उसकी ड्योढ़ी से भिक्षा ले आओ। गुरुजी, मोह ममता जाग उठेगी, मुझे बहन के दर्शन किए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज जब मुझे मेरी इकलौती बहन इस साधु के बाणे में देखेगी, हो सकता है अपने आप को संभाल ना पाए और मेरी बहन प्राण त्याग दे। गुरु परीक्षा ले रहे थे, कहने लगे, नहीं गोपीचंद, तुम्हें अपनी बहन की डोडी पर जाना है। अब तो गोपीचंद झोली लेकर के बहन की डोडी की तरफ चल रहे हैं। बानी से भिक्षा लेने के लिए गोपीचंद ने मना कर दिया कि जब बहन की डोडी पर आ ही गया तो अपनी माजाई बहन के दर्शन कर जाऊं। बानी ने जाकर कहा कि महारानी, आपके भैया साधु के भेष में दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। तन बदन में आग सी लग गई। चंद्रावल के हाथ में कोड़ा उठा लिया के बांधी, तुझे पता है जब मेरा भाई गोपीचंद आता है 5-5 किलोमीटर दूर तक धूल उड़ती चली आती है, इतने रथ घोड़े सेना उनके साथ में होती है। बांधी कहने लगी, नहीं महारानी, आज साधु के भेष में तुम्हारे भाई दरवाजे पर खड़े होकर ये कह रहे कि अपनी बहन के हाथ से भिक्षा चाहिए। बहन चंद्रावल जैसे ही ड्योढ़ी पर पहुंचती है, अपने भाई को देखती है, कहिए बहन।
1: मैं ये क्या देख रही हूँ कि आज तुमने साधु का वेश धारण कर रखा है।
0: बहन, मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा अमर हो जाए।
1: नहीं,
0: मैंने अपनी बात माँ की आज्ञा को मानते नहीं हुए ये वेश धारण किया। बहन,
1: नहीं भैया, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने एक लौते पुत्र को अपनी आँखों से दूर कर दे। हे मेरे भैया, क्या किसी रानी ने तुझे बोली मारी है?
0: नहीं बहन।
1: फिर?
0: मैंने बताया ना, मेरे माँ का आदेश हुआ, मेरी माँ की इच्छा थी, मेरी माँ की चाहत थी, वो मुझे अमर बनाना चाहती थी। सो आज मैं उस परम योगी गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन करके आज तेरी डोडी पर भिक्षा लेने के लिए आया हूँ।
1: बहन, भैया, तेरी ये बहन कुछ कहना चाहती है, मेरी बात को सुनिए।
0: बहन
1: सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत विधा स्वांग किस्सा गोपीचंद। कलाकार थे केशव कुमार गोपीचंद, पूजा राव रानी पाटमदे, कोमल चौधरी बहन चंद्रावल, परवेश भाटी गुरु औरखनाथ, अभिषेक भाटी गुरु भाई, मोहित भाटी गुरु भाई, खेमचंद फोगाट हारमोनियम पर संगत कर रहे थे, प्रदीप लहरी ढोलक पर, सुभाष चंद नगाड़े पर, हरीश कुमार पैड पर और लोकेश कुमार कर रहे थे बैंजो पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शिव नंदन लाल।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान

0: निशान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कलकत्ता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वे महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़ें और संसद में इसका समर्थन करें। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में सहयोग करके इसे साबित करना चाहिए। श्रीमती ईरानी ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र से हटा दिया है। अधिकरण मानना है कि यह बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 291 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 117, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरला, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged them to remain consistent in their efforts to build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as a preferred destination to build their careers and future in the space sector. During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pawan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended the greetings on the occasion of the National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
0: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
2: Raksha Mantri Rajnath Singh today stressed the need for self-reliance in making warships, offshore vessels and in other related fields, describing it vital for security of the country. He emphasized the need of good quality of maintenance services in this field with aim to make India a future shipbuilding hub. While addressing the Bhumi Pujan ceremony for five projects of Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited YIL in Kolkata, Mr. Singh said Atmanirbharta is the need of the hour. He said GRSE in Kolkata could lead in shipbuilding in the future. The minister also informed GRSE is building a cargo ship for Germany. The BRICS Sports Ministers meeting has concluded in Visakhapatnam, Andhra Pradesh with the adoption by consensus of the BRICS Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of BRICS countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. Held under India's BRICS Chairship 2026, the meeting brought together sports ministers and senior representatives of member states to discuss ways to promote sports development, youth participation and international cooperation. In his opening remarks, Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya called for building a strong BRICS sporting partnership with practical and sustained cooperation. He proposed greater athlete and coach exchanges, joint competitions and sharing of sports science and technology. The participating countries reaffirmed the role of sport in promoting fitness, healthy lifestyles, youth development, cultural exchange and stronger people-to-people ties among BRIC nations. The National Green Tribunal, NGT, has sought a response from the centre over a petition challenging recent changes to rules governing the protection of the Ganga River. A bench headed by NGT Chairperson Justice Prakash Srivastav, along with expert member Afroz Ahmed, took note of the notification issued earlier this month, allegedly removing the crucial no-construction zone along the river and its tributaries. The Green Tribunal observed that the change was alleged to be contrary to existing environmental rules, earlier judgments of the NGT and the Constitution Courts, the Environment Protection Act 1986 and the original notification. Delhi police has clarified that no permission has been granted to any individual organization for holding protests or gathering at Jantar Mantar today. It said that various videos and posts have been circulated, calling upon people to gather and assemble on the issue of reservation reforms. In a social media post, police said that prohibitory orders are already in force in New Delhi district. It further said that protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited. In cricket, India were 291 for 4 against host Sri Lanka in the second and final test of the two-match series in Colombo when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to bat. India won the first test by 165 runs and currently lead the series 1-0. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेमंत भाई, देखिए सावन का महीना चल रहा है
1: बिल्कुल
0: और यह महीना 30 जुलाई

0: को शुरू हुआ था और भाई देखिए 28 अगस्त को यह महीना समाप्त होने जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: और सावन के जो महीने की काफ़ी महिमा है हमारे यहाँ, विशेषकर अपने ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो काफ़ी और भी ज़्यादा महिमा है। और भगवान शिव को समर्पित ये सबसे पवित्र माह है। इस दौरान वर्षा ऋतु की शीतलता के बीच शिव भक्त शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं, तथा सोमवार के जो सावन हैं उनके व्रत का अधिक महत्व है। और धार्मिक या पौराणिक महत्व की बात करें तो देखिए, मान्यता है कि सावन मास में समुद्र मंथन के दौरान निकला हला हल विष भगवान शंकर शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था,
1: बिल्कुल।
0: और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था।
1: तो जैसा कि लोक गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम है, तो आइए सुनते हैं सावन पर आधारित ये सावन गीत।
0: कोमल चौधरी से।

0: तो सुनील भाई, अभी हमारे साथियों ने सुना कोमल चौधरी की आवाज़ में ये सावन गीत। कहते हैं ना, साल में यूं तो 12 महीने होते हैं, लेकिन सावन का एक अपना महत्व है ना। बात हम लोकगीतों की कर रहे हैं, तो लोकगीतों की सबसे बड़ी खूबी यह है सुनील भाई, कि ये हमारे सीधे दिल को छूते हैं, इनमें कोई बनावट नहीं होती। जहाँ शास्त्रीय संगीत के लिए सुरों और ताल की गहरी समझ जरूरी होती है, वहीं लोकगीतों में केवल खुशी के भाव जो हैं, और ये लोकगीत हैं जो खुशी के भाव से गाए जाते हैं। मिट्टी से जुड़ा हर इंसान इन गीतों को आसानी से समझ सकता है। इनमें गांव के खेतों की महक, बहती नदियों की आवाज़ और रोज़मर्रा के जीवन का सुख दुख भी छुपा होता है। जब महिलाएं सावन के महीने में झूले पर कजरी गाती हैं या शादी के घर में मंगल गीत गाए जाते हैं, तो पूरा माहौल जो है खुशी से भर जाता है।
1: बिल्कुल नहीं हेमंत भाई, देखिए सावन की आपने बात की, तो सावन महीने में इतना ही नहीं, देखिए वैसे तो हर महीने में तकरीबन हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं, लेकिन सावन के महीने में अभी देखिए पीछे हमने हरियाली तीज मनाई, नाग पंचमी मनाई, और इस समय भाई देखिए रक्षाबंधन की राखी की तैयारी जोरों पर चल रही है। तो कहने का मतलब इस महीने का अपना अलग ही महत्व है।
0: तो अब सुनते हैं सुबे सिंह कपासिया की आवाज़ में एक और सावन गीत।

0: हेमंत भाई, ये तो सावन गीत सुना सूबे सिंह कपासिया से।
1: जी
0: और देखिए, सावन माह के हम बात कर रहे हैं तो सावन माह और ज्ञान के बीच भी गहरा संबंध होता है।
1: जी
0: वर्षा ऋतु में जिस प्रकार जल से धरती का सिंचन होता है और फल फूल उगते हैं, वैसे ही जब हमारे मन में ज्ञान का अभिषेक होता है तो हमारी बुद्धि विकसित होती है और मन की पीड़ा शांत हो जाती है। सावन का महीना मन के ज्ञान को माध्यम से शीतल और आनंदित करने का समय होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये लोक संगीत की हम बात कर रहे थे कि लोक संगीत जो है हमारी असली पहचान है, जो आधुनिक दौर में भी हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रखता है। आज के समय में जब लोग पुराने तौर तरीकों को भूलते जा रहे हैं, तब ये गीत हमारी अनमोल धरोहर को संभाल कर रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, वे किन बातों पर खुश होते थे और उनके जीने का अंदाज क्या था। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये गीत मानसिक शांति और सुकून देते हैं। बात यदि हम कम शब्दों में कहें सुनील भाई, तो लोकगीत हमारी आत्मा का संगीत है जो समाज में हमेशा प्यार और जिंदा दिली बिखेरते रहते हैं। तो अब सुनते हैं एक और सावन गीत, झूला तो झूले बाग में, सविता शर्मा की आवाज़ में।

0: झूला तो झूले बाग में, ये लोकगीत सावन गीत सुना सविता शर्मा से, और सविता शर्मा के गाए इस सावन गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। खेल खिलाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सभी खेलों के बारे में, सभी खिलाड़ियों के बारे में। मैं विदुषी वत्स और मेरे साथ है मेरे साथी अतुल।
3: नमस्कार श्रोताओं और नमस्कार विदुषी।
2: नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हमारे पास बहुत सारे खेल और उनके समाचार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बात होगी हॉकी की, बैडमिंटन की,
3: बहुत कुछ है विदुषी आज, रेसलिंग की और डूरन का फुटबॉल भी चल रहा है और बहुत कुछ। तो क्यों ना शुरुआत करें हॉकी से।
2: जी हाँ बिल्कुल।
3: बात करते हैं विश्व कप हॉकी की, जहां से कल का दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए निराशाजनक रहा। दूसरे चरण के पूल ई के एक मुकाबले में भारत को मेजबान नीदरलैंड्स के हाथों एक के मुकाबले 3 गोल से हार का सामना करना पड़ा। एम्स्टलवीन के वॉगनेर स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उसे हर हाल में जीत की जरूरत थी। लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी मुकाबले में नीदरलैंड्स ने अहम मौकों पर बेहतर प्रदर्शन किया और 3 अंक अपने नाम कर लिए। नीदरलैंड के फ्लोरिस वॉटेलबोअर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुकाबले का पहला हाफ गोल रहित रहा। दोनों टीमों ने लगातार एक दूसरे के सर्कल में दबाव बनाया, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति और नीदरलैंड्स का डिफेंस दोनों ही अपनी जगह मजबूत रहे। भारत ने कई अच्छे आक्रमण बनाए और पेनल्टी कॉर्नर के मौके भी हासिल किए, लेकिन उन्हें गोल में बदलने में सफलता नहीं मिली। तीसरे क्वार्टर में 41वें मिनट में नीदरलैंड्स को आखिरकार सफलता मिली। डुको टेलगेन कैंप ने गोल कर मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने इसके बाद बराबरी की कोशिश तेज कर दी, लेकिन चौथे क्वार्टर में नीदरलैंड्स ने अपने जवाबी हमले का शानदार इस्तेमाल किया। 51वें मिनट में ज्वेप उडेमेकर्स ने काउंटर अटैक पर शानदार वन टच फिनिश के जरिए नीदरलैंड्स की बढ़त 2-0 कर दी। भारत ने हार नहीं मानी और मुकाबला खत्म होने में लगभग 8.5 मिनट बाकी थे, तभी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर जोरदार ड्रैग फ्लिक के जरिए भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। भारतीय टीम ने इसके बाद बराबरी के लिए पूरा दबाव बनाया, लेकिन नीदरलैंड्स ने भारतीय आक्रमण का जवाब एक और तेज काउंटर से दिया। 55वें मिनट में थाइस वॉन डैम ने शानदार कौशल दिखाते हुए गेंद को गोलकीपर के ऊपर से उठाकर गोल में पहुंचाया और नीदरलैंड्स को 3-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आखिरी मिनटों में भारत ने वापसी की कोशिश की, लेकिन नीदरलैंड्स की रक्षा पंक्ति ने कोई और मौका नहीं दिया। मुकाबला 3-1 से नीदरलैंड के पक्ष में समाप्त हुआ। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ने पूल ई में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, जबकि भारत के लिए सेमीफाइनल की राह अब बेहद कठिन हो गई है। जहां भारत को अपने अगले मुकाबले में 5 गोल के बड़े अंतर से जीतना होगा, वहीं उसे यह भी देखना होगा कि उसी दिन नीदरलैंड्स इंग्लैंड को भी हराए। अब भारत के सामने अगली चुनौती अर्जेंटीना की है। भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला 24 अगस्त को होगा। भारतीय टीम के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर मुकाबला उसके विश्व कप अभियान की दिशा तय करेगा। मैच के बाद हार्दिक सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: हमें अपनी टीम पे बहुत ज्यादा नाज है, जैसा भी खेले एज अ टीम खेले हैं। एंड हॉकी एक ऐसा गेम है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है, यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट। आई थिंक वहाँ पे हम शूटे हैं, बट इफ इट्स अ फेलियर, इट्स अ फेलियर एज अ टीम। इफ वी विन तो वो जीत भी टीम को जाती, एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम।
3: विश्व कप की ही बात करें तो महिला वर्ग में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मुकाबला है जो उसके पूरे अभियान की दिशा तय कर सकता है। आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुकाबला एम्स्टलवीन के वॉगनेर हॉकी स्टेडियम में ही भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। पूल ई की स्थिति इस समय बेहद रोमांचक है। नीदरलैंड्स पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। दूसरे स्थान के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच मुकाबला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के खाते में फिलहाल 1-1 अंक है, जबकि चीन के पास 2 अंक हैं। भारत को ये 1 अंक पहले चरण में चीन के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ से मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर 1 अंक हासिल किया था। दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड से 0-2 से हार मिली थी। यानी भारत के लिए समीकरण काफी स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ही जरूरी है। लेकिन केवल जीत ही काफी नहीं होगी, इसके पहले भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स और चीन का मुकाबला होगा। उस मैच का परिणाम भी भारत की सेमीफाइनल उम्मीदों पर सीधा असर डालेगा। अगर नीदरलैंड्स चीन को हरा देता है और भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। अगर नीदरलैंड्स और चीन का मुकाबला ड्रॉ रहता है और भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तब भी भारत 4 अंकों के साथ चीन से आगे निकल सकता है। लेकिन अगर चीन नीदरलैंड्स को हरा देता है तो चीन 5 अंक तक पहुंच जाएगा और भारत की जीत के बावजूद भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इसलिए भारत के लिए शाम का नीदरलैंड्स चीन मुकाबला भी उतना महत्वपूर्ण है जितना रात का अपना मैच। बात अगर भारतीय टीम की करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-0 की हार के बावजूद भारतीय रक्षा पंक्ति ने काफी अनुशासित प्रदर्शन किया है। मेजबान टीम ने केवल 2 गोल किए और दोनों पेनल्टी कॉर्नर से आए। गोलकीपर सविता के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस ने लंबे समय तक नीदरलैंड्स के हमलों को रोक कर रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को डिफेंस के साथ साथ आक्रमण में भी अधिक प्रभावी होना होगा। सर्किल के अंदर बने मौकों को गोल में बदलना, पेनल्टी कॉर्नर का बेहतर इस्तेमाल करना

और शुरुआती मिनटों में दबाव बनाना भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ के बाद जीत की तलाश में उतरेगा। चीन ने उस मुकाबले में 39वें मिनट में बढ़त बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अबिगेल विल्सन ने पेनल्टी स्ट्रोक से बराबरी कर दी थी। इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला केवल दो टीमों की भिड़त नहीं है, यह सेमीफाइनल की आखिरी उम्मीदों की लड़ाई है। अब बात करते हैं 22 अगस्त को पूल ई और पूल एफ में जो अन्य मैच खेले गए उनके क्या नतीजे रहे। पुरुष और महिला वर्ग दोनों वर्ग की बात कर लेते हैं। विश्व कप के दूसरे चरण में 22 अगस्त को पूल ई और पूल एफ में 4 मुकाबले खेले गए। इनमें पुरुषों के पूल ई में भारत नीदरलैंड्स के अलावा इंग्लैंड अर्जेंटीना मुकाबला शामिल था, जबकि महिला पूल एफ में जर्मनी बेल्जियम और अर्जेंटीना स्पेन के मुकाबले हुए। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के पूल ई की। भारत और नीदरलैंड्स के मुकाबले के साथ ही इसी पूल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने थे। अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 3-1 से हराया। इस मुकाबले के हीरो रहे अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन। डोमेन ने 26वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल किया। 10 मिनट बाद उन्होंने सर्किल के किनारे से शानदार रिवर्स स्टिक शॉट लगाकर अर्जेंटीना की बढ़त 2-0 कर दी। इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश की। 50वें मिनट में सैम हूपर ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके स्कोर 1-2 किया, मगर अर्जेंटीना ने दबाव में संयम बनाए रखा और मैच खत्म होने से लगभग 2.5 मिनट पहले डोमेन ने ही एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की और अर्जेंटीना को 3-1 से जीत दिलाई। बात करें महिला पूल एफ की, तो वहां बेल्जियम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। मेजबान बेल्जियम ने 23वें मिनट में बढ़त बनाई। डेल्फिन मॉरियन ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे किया। जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए वापसी की, लेकिन बेल्जियम ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और फिर से बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद 42वें मिनट में शार्लोट एंगलबर्ट ने गोल करके बेल्जियम को 3-1 की मजबूत बढ़त दिला दी। जर्मनी ने आखिरी मिनटों में गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त फील्ड खिलाड़ी के साथ आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन बेल्जियम ने स्कोर को कायम रखा। 3-1 की जीत के साथ बेल्जियम ने सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। डेल्फिन मॉरियन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूल एफ के अन्य मुकाबलों की बात करें तो अर्जेंटीना ने स्पेन को 3-0 से हराया। अर्जेंटीना ने मैच की शुरुआत ही बेहद तेज अंदाज में की। मैच शुरू होने के केवल 33 सेकंड बाद अर्जेंटीना को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और अगुस्तीना गोरजिलानी ने उसे गोल में बदल दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद जुआना कास्टेलेरो ने पेनल्टी कॉर्नर से अर्जेंटीना की बढ़त 2-0 कर दी। 14वें मिनट में गोरजिलानी ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। स्पेन ने इसके बाद गोल करने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना की डिफेंस ने उसे कोई मौका नहीं दिया। 3-0 की जीत के साथ अर्जेंटीना ने महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। सोफिया कैरो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस तरह 22 अगस्त के मुकाबलों के बाद पूल ई और पूल एफ की तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। पुरुषों के पूल ई में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना ने अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि महिला पूल एफ में अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और बेल्जियम की उम्मीदें भी मजबूत हुई है। बात करें अगर आज खेले जाने वाले मुकाबलों की, तो पूल ई और पूल एफ के आगामी मुकाबले हॉकी विश्व कप 2026 के अब उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हर मुकाबला सेमीफाइनल की तस्वीर तय करने वाला है। पूल ई और पूल एफ में आज होने वाले मुकाबले इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात महिला पूल ई की करते हैं, जहां भारतीय टीम की नजरें खास तौर पर टिकी हैं। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स और चीन आमने सामने होंगे। इसके बाद रात 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला होगा। दोनों मुकाबले एम्स्टलवीन में ही खेले जाएंगे। बात पुरुष पूल एफ की, आज इस पूल में दो महत्वपूर्ण मुकाबले निर्धारित हैं। भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। इसके बाद रात 12 बजे यानी 24 अगस्त की शुरुआत में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबले इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पूल एफ में दूसरे चरण में पहुंची टीमों के बीच सेमीफाइनल की दौड़ जारी है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में दोनों टीमों के लिए 3 अंक महत्वपूर्ण होंगे। वहीं स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाला मुकाबला भी पूल एफ की अंतिम स्थिति पर असर डालेगा। महिला पूल एफ की शेष मैच 24 अगस्त को ही होंगे। वहां स्पेन और जर्मनी तथा बेल्जियम और अर्जेंटीना के मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों से इस पूल की अंतिम स्थिति और साफ होगी। यानी कुल मिलाकर आज भारतीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान महिला पूल ई पर रहेगा। शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स बनाम चीन और रात 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, ये दोनों मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय महिला टीम के लिए समीकरण सरल है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत और चीन के मुकाबले का अनुकूल परिणाम। दूसरी ओर पुरुष पूल एफ में जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और स्पेन बेल्जियम के मुकाबले सेमीफाइनल की दौड़ को और रोमांचक बनाएंगे। विश्व कप के इस दूसरे चरण में

0: एक एक गोल की अहमियत बढ़ गई है। पेनल्टी कॉर्नर, डिफेंस में अनुशासन और आखिरी मिनट तक दबाव बनाए रखने की क्षमता ही बड़े मुकाबलों का फैसला कर सकती है। भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें खास तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला मुकाबले पर रहेंगी।
1: हॉकी की बात से आगे बढ़ेंगे बैडमिंटन की तरफ, जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है और हमारे सहयोगी सेमीफाइनल्स की रिपोर्ट के साथ हैं तैयार।

0: चोट से जूझती ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की बैडमिंटन जोड़ी को शायद ये लगने लगा होगा कि 2026 उनके करियर का सबसे नाकाम साल है। इंजरी के चलते ना एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके, ना प्रतिष्ठित उबर कप में। लेकिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में उम्मीदों के विपरीत भारत के लिए मेडल जीत उन्होंने इतिहास रच डाला। शनिवार को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 8,000 से ज्यादा दर्शक ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की उस जोड़ी को देखने आए थे जिन्हें टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई उम्मीदवारों की गिनती में भी नहीं रख रहा था। आखिर शुक्रवार को इन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद वुमेन्स डबल्स में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। पिछली बार ये कारनामा 2011 में अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने किया था, जिनको ट्रीसा अपना रोल मॉडल मानती हैं।
1: They are one of the idols for us, the women's doubles that they made created histories in India.
0: BWF World Championships 2026 में ट्रीसा और गायत्री का खेल देख अश्विनी पुनप्पा भी प्रभावित हुई। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा,
2: Both Gayatri and Trisa can rotate well. Gayatri has smart smashes that she plays from the back of the court. Incredibly sharp at the net. Trisa, powerhouse from the back of the court. Moves into the net. Also can take the pace off from the net. Overall game, very solid from both Gayatri and Trisa.
0: शायद सफलता का एक पैमाना ये भी है, जब आपके आदर्श आपके गुणगान गाने लगे तो कामयाब हैं आप। हालांकि सेमीफाइनल में पहली वरीयता प्राप्त टान निंग और ल्यू शेंग शू की जोड़ी के सामने भारतीय जोड़ी अंडरडॉग थी।
3: From China, ल्यू शेंग शू and टान निंग।
0: लेकिन शायद वो क्वार्टर फाइनल में अपने से कई ज्यादा मजबूत चीनी जोड़ी को हराने वाली ट्रीसा और गायत्री की परफॉर्मेंस थी जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदें परवान चढ़ा रखी थी। बार बार स्टेडियम पुलेला पुलेला जॉली गुड के नारों से गूंजता। और गड़गड़ाती तालियों के बीच इन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की, 7-2 से प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ा। लेकिन टान और ल्यू की चीनी जोड़ी जिसका लोहा दुनिया मानती है कहां पीछे रहने वाली थी। 9 पॉइंट लगातार हासिल कर उन्होंने मैच का रुख बदला और ऐसी चीख पुकार के साथ हर पॉइंट का जश्न मनाया जो छत से उतरती भारतीय फैंस की खामोशी को चीरती चली गई। दर्शकों ने फिर भी गायत्री और ट्रीसा का उत्साहवर्धन करना नहीं छोड़ा। और भारतीय जोड़ी ने वापसी भी की। 24 मिनट तक चला ये पहला सेट किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जैसा था, उतार चढ़ाव से लबरेज। अंततः गायत्री और ट्रीसा ने इसे 21-18 से जीत 1-0 की बढ़त हासिल की।
1: Playing with this Chinese players, I feel like we were a bit more confident in the first game. Even when we were leading in the first half, then they covered into 11-7, they just took the break. And again, we covered them. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them.
0: दूसरा सेट भी उसी तर्ज पर शुरू हुआ। मिड गेम ब्रेक तक गायत्री और ट्रीसा 11-10 से आगे थी, पर फिर जैसे उफनती नदी अचानक सूखने लगी, रफ्तार भी थमती चली गई। अभी तक कुछ बेहतरीन क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट्स का मुजाहिरा कर पॉइंट्स जीतने वाली ट्रीसा से उन्हीं शॉट्स को खेलने में गलतियां होने लगी।
1: बट इन द सेकंड गेम वी डिडंट गेट द रिदम, आई फील लाइक इन आफ्टर द सेकंड गेम सेकंड हाफ आई फील लाइक दैट टाइम द फ्यू मिस्टेक दैट मेड अस लिटिल बिट अनकॉन्फिडेंट, आई फील लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ डाउटफुल अबाउट एवरी स्ट्रोक्स व्हाट वी आर प्लेइंग, आई फील लाइक या।
0: गायत्री से भी कुछ मौकों पर चूक हुई।
4: वो लोग काफी पेशेंटली खेले, वी कुडंट मैच बोथ ऑफ दोस थिंग्स। थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे, पर रिदम नहीं आया।
0: और चीनी जोड़ी ने भरपूर फायदा उठाते हुए 21-13 से दूसरी गेम जीत मैच में बराबरी हासिल की। तीसरी गेम में टान और ल्यू ने दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है और 21-8 से उसे जीत फाइनल का टिकट बुक कर लिया। कोच गोपीचंद पुलेला कोर्ट साइड पर मौजूद थे। मैच के बाद उन्होंने माना कि उनकी शिष्याओं से गलतियां हुई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि चीनी जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया।
5: till the second game, mid part, they were quite there in the match, and suddenly they didn't contact the shuttle as much, and then they just lost it. But also credit to the Chinese girls, because they were serving very well, because there was a good amount of spin and tumble on the serve, and then on the first return they were hitting very hard on the parallel. So I think Gayatri's and Teresa's chance of getting on the attack from the very beginning was not happening. But overall, happy with the way they've played.
0: Teresa aur Gayatri ko bhale hi kanse padak se santosh karna pada ho, unke is ekmatra padak ne भारत के लिए एक कमाल का कीर्तिमान स्थापित किया है। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले सिर्फ दो देश हैं, चीन और भारत। इस हफ्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भी भारतीय सरकार ने की है।
4: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have. In future, I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also gave us some other boost in this tournament.
0: इस कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश पाया है. वहीं पुरुषों के सिंगल्स में पहला सेट हारने के बाद फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मजबूत वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए. उनसे हारने वाले विक्टर लाई को कांस्य पदक मिला है, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दूसरा पदक है.
6: या शोर मचा ले ओ दिल्ली जब शटल हवा में उछले यहाँ, शोर मचा ले ओ दिल्ली जब शटल हवा में उछले यहाँ.
7: जी हाँ विदुषी, ये तो बात हुई कल जो मैच खेले गए और आज भी सभी वर्गों के फाइनल मैच खेले गए हैं, वहां से भी परिणाम आ चुके हैं. अगर मेन सिंगल की बात करें तो एलेक्स लेनियर फ्रांस के, उन्होंने जापान के कोदाई नारकुआ को 21-11 21-11 से हराकर मेन सिंगल का खिताब जीता है. और बात करें तो फ्रांस के लिए अच्छी खबर है कि मिक्स डबल्स में भी फ्रांस की जोड़ी डेलविन डेलरू और थॉम गिक्विल ने 22-20 21 और 21-15 से फेंग और हुआंग की चीनी जोड़ी को हराया है. इसके अलावा अगर बात करें तो विमेंस डबल में दक्षिण कोरिया ने पदक जीता है. बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने चीन की जोड़ी लियू शेंगशू और टेन निंग को 21-15 21-15 से खिताबी मुकाबले में हराया है. और इसके अलावा अगर बात करें तो इस समय विमेंस सिंगल्स का मैच चल रहा है, जहां पे दक्षिण कोरिया की ऑन से यंग जो है अकाने यामागुची के खिलाफ 21-17 से आगे चल रही हैं. और जबकि दूसरा गेम भी अभी चल रहा है, अपने श्रोताओं को लाइव स्कोर बताएंगे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा. और इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाने वाला है मेंस डबल्स का, जिसमें चीन की लियांग वेकिंग और वोंग चोंग की जोड़ी मलेशिया की सो वुई यिक और ओरोन चिया की जोड़ी से खेलेगी.
8: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर 2026 का मुकाबला शनिवार 22 अगस्त को हुआ पूरा. ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट थी जिसमें कुल 18 फाइनल स्पर्धाएं हुई, 9 पुरुष वर्ग में और 9 महिला वर्ग में. 26 देशों के 180 से अधिक एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया. भारत के लिए यह प्रतियोगिता बेहद शानदार रही. भारतीय एथलीटों ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते और कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहले और दूसरे दोनों स्थान हासिल किए हैं. आइए शुरू करते हैं पुरुष वर्ग से. पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारत के हरमनजोत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14:11.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस स्पर्धा में भारत का दबदबा देखने को मिला क्योंकि शिवाजी परशुराम ने 14:13.84 के साथ रजत और गोपी थोनाकल ने 14:15.98 के साथ कांस्य पदक जीता. अब अगर बात करें हाई जम्प की तो वहाँ भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम करा है. आदर्श राम थी शंकर ने 2.22 मीटर की ऊंचाई पार कर पहला स्थान हासिल किया. उनके बाद ओमान के फताक बेत जाबू और इराक के अब्दुल रहमान उमर रहे. लॉन्ग जंप की ओर चले तो भारत के स्टार एथलीट और दो बार के कॉमनवेल्थ गेम्स रजत पदक विजेता मुरली श्री शंकर ने

0: 8 मीटर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। और अब पुरुष वर्ग की सबसे बड़ी खबर, जैवलिन थ्रो में रोहित यादव ने जबरदस्त अंदाज में स्वर्ण पदक जीता। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का शानदार थ्रो किया। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और इसी थ्रो के साथ उन्होंने अपना पिछला पर्सनल बेस्ट 87.05 मीटर पीछे छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, 87.68 मीटर का यह थ्रो अब भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो है। रोहित ने किशोर जैना के 87.54 मीटर के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की ओर से उनसे आगे अब सिर्फ नीरज चोपड़ा है। और इस शानदार प्रदर्शन के बाद रोहित यादव ने क्या कहा, सुनिए उनकी प्रक्रिया।
1: पता है कि आखिरी थ्रो है और यहाँ पे मारना है, अंदर जो रहा है ना निकाल दो फिर उसको, वो कहीं ना कहीं वो चीज होनी चाहिए एथलीट को। अगर नहीं लग रहा है स्टार्ट में, आप डिस्टर्ब मत हो, आप अपने आप को फोकस रखो कि हम अपने आप कॉन्फिडेंस रखो कि मैं करूंगा कर लूंगा, बस यही हमारे अंदर था कि मैं करूंगा कर लूंगा, बस वही आखिरी तभी निकलती है फिर।
0: अब बात करते हैं महिलाओं की स्पर्धाओं की। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में युवा भारतीय धाविका अभिन्या राजा राजन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11.34 सेकंड का समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह प्रदर्शन और भी खास रहा क्योंकि अभिन्या ने अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी नहीं बल्कि उससे बेहतर करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड 11.53 सेकंड का था जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इस स्पर्धा में भारत का दबदबा साफ नजर आया। भद्रा ने 11.46 सेकंड के साथ रजत और स्नेहा ने 11.56 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भारत की विद्या रामराज ने 51.96 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह उनका पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन भी रहा। इस रेस में भारत की प्राची ने 52.57 सेकंड के साथ रजत और पुवम्मा राजू ने 52.78 सेकंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यानी इस स्पर्धा में भारत ने पोडियम की तीनों जगहों पर कब्जा किया। और इसके बाद महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में भारत की पूजा ने 4:17.24 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। लिली दास ने 4:18.32 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। और अब महिला वर्ग की आखिरी और बेहद खास भारतीय सफलता लॉन्ग जंप में एंसी सोजन की तरफ से। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक एंसी सोजन ने 6.71 मीटर के साथ शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस छलांग में हवा की रफ्तार +0.8 मीटर प्रति सेकंड थी। एंसी ने भारत को इस स्पर्धा में स्वर्ण दिलाया जबकि शैली सिंह ने 6.56 मीटर के साथ रजत और मुफसीना मोहम्मद ने 6.31 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। इस तरह लॉन्ग जंप में भी भारत ने पोडियम की तीनों जगहों पर कब्जा किया। एंसी सोजन का ये प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इसी स्टेडियम में कलिंगा स्टेडियम में जून में 6.88 मीटर की छलांग के साथ महिलाओं की लॉन्ग जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो अब सुनते हैं स्वर्ण पदक जीतने के बाद एंसी सोजन ने क्या कहा।
2: आई एम लॉक्ड अप फॉर एशियन गेम्स, आई वांट टू बी द गोल्ड मेडलिस्ट एंड हियर द नेशनल एंथम, आई हैव द कैपेसिटी टू गो फॉर दैट, जस्ट 12 सेंटीमीटर मोर फॉर माय ड्रीम डिस्टेंस, होपफुली आई विल रीच देयर, आई एम गेटिंग राइट टू इट, ट्रेनिंग इज गोइंग वेल, सो दिस इज जस्ट अ प्रिपरेटरी कॉम्पिटिशन, आई एम सीइंग लाइक दैट एट द फाइनल इज इन द एशियन गेम्स, सो आई विल गेट इट द करेक्शंस एंड ऑल, आई विल बी गुड शेप इन देयर।
0: तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय एथलीटों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर 2026 का शानदार समापन किया। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते जबकि कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक भी अपने नाम किए। इस प्रतियोगिता में भारत की मौजूदगी को और खास बना दिया।
3: एथलेटिक्स के बाद क्रिकेट का स्कोर बता देते हैं अपने श्रोताओं को। श्रीलंका और भारत के बीच दूसरा क्रिकेट मैच कोलंबो में आज से शुरू हुआ है जहां पे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन का स्कोर बनाया है। ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद हैं। भारत के लिए देवदत्त पडिकल ने शानदार 117 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन की पारी खेली।
0: बात करते हैं स्लोवाकिया की राजस्थानी ब्रातिस्लावा में जारी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जहां पुरुष फ्रीस्टाइल के मुकाबले अपने अंतिम दौर में हैं। 22 और 23 अगस्त को कुल 8 भार वर्गों में मुकाबले हो रहे हैं। 22 अगस्त को 57, 65, 79 और 92 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले हुए जबकि 23 अगस्त को 70, 74, 97 और 125 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। 57 किलो में भारत के रूपेश का अभियान क्वार्टर फाइनल में जापान के यामातो ओगावा के खिलाफ हार के साथ समाप्त हुआ। इस वर्ग का स्वर्ण रूस के मगोमेद ने अमेरिका के आई जाया को 8-4 से हराकर जीता। 65 किलोग्राम में भारत के रोहित कुमार का

0: पर किर्गिस्तान के ईसा इसकोव के खिलाफ हार के साथ समाप्त हुआ। इस वर्ग में अमेरिका के बोवेन ने जापान के ताकुतो ओसोदो को 8-2 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। 79 किलोग्राम में भारतीय चुनौती मुख्य दौर में आगे नहीं बढ़ सकी। इस वर्ग का स्वर्ण रूस के इस्माइल ने जापान के कीविन को 8-0 से हराकर जीता। 92 किलोग्राम में भी भारतीय पहलवान पदक दौर तक नहीं पहुंच सके। इस वर्ग के फाइनल में जॉर्जिया के सैंड्रो ने ईरान के अबोल फजल रहमानी को 5-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। खास बात यह रही कि जॉर्जिया ने 13 साल बाद इस वर्ग में अंडर 20 विश्व स्तर पर फ्री स्टाइल स्वर्ण हासिल किया है। अब 23 अगस्त यानी आज होने वाले मुकाबलों की बात करें तो 70, 74, 97 और 125 किलोग्राम भार वर्गों में भारतीय पहलवानों ने चुनौती पेश की है। इन्हीं सबके अंतिम पदक मुकाबले देर शाम खेले जाएंगे और अब इन मुकाबलों के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। अब आपको लिए चलते हैं फुटबॉल की तरफ और राजस्थानी दिल्ली में खेले जा रहे 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 वर्ग के मुकाबले रोमांचक दौर में पहुंच गए हैं। तो आपको अगर बता दें कि कल के दूसरे हिस्से में, दिन के दूसरे भाग में जो मैच खेले गए हैं उनमें मेघालय ने दमन एंड दीव को 8-0 से हराया। वहीं मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के मुकाबले में चंडीगढ़ ने 1-0 से जीत दर्ज की। दिल्ली और त्रिपुरा के बीच मुकाबले में त्रिपुरा ने 3-1 से बाजी जीती है, जबकि झारखंड आर्मी बॉयज को 9-0 से हराया गया है। आज के मैचेस की बात करें जहां जूनियर गर्ल्स अंडर 17 में चल रहे हैं क्वार्टर फाइनल, 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं, इनमें से 3 मुकाबलों के नतीजे आ चुके हैं। अभी अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को छत्तीसगढ़ ने 4-1 से हराया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में एनसीसी ने मेघालय को 6-0 से हराया। वहीं सीबीएसई और सीआईएससीई के बीच हुए मुकाबले में सीआईएससीई ने 1-0 से जीत दर्ज करी। और अब बिहार और झारखंड के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला शाम 4:30 बजे शुरू हो चुका है और इस समय अपने निर्णायक दौर में है। फुटबॉल की जानकारी को ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल डूरंड कप के 135वें संस्करण के फाइनल जो इस समय खेला जा रहा है। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में शाम 5 बजे ये मैच शुरू हुआ है और हाफ टाइम का स्कोर आपको बता देते हैं, जहां ईस्ट बंगाल आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है मोहन बगान से 4-1 से।
1: जी हाँ, और चलते चलते विदुषी एशियन गेम्स के लिए भी खबर है, जहाँ पे एशियन गेम्स जो कि जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे, वहाँ पे 492 खिलाड़ियों के दल को खेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। भारतीय दल में 265 पुरुष और 227 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये तो बात हुई एशियन गेम्स की, और आज संडे ऑन साइकिल का भी 87वां संस्करण था। तो ये तो हुई आज खेल खबरों की बात, और भी बहुत कुछ है लेकिन समय शायद आज परमिशन नहीं दे रहा है।
0: जी हाँ बिल्कुल, अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि इस प्रोग्राम को आज विराम दिया जाए। आप सभी श्रोताओं का खेल खिलाड़ी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता हैं शाहनवाज खान, मुझे विदुषी वत्स, और मेरे साथ अतुल जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
4: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
3: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
5: हमने यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi stressed that the country's vast talent pool and high risk-taking capacity would allow India to rapidly establish a dominant position in the global space sector.
7: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है.
6: Meanwhile, National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on the 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan-3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended the greetings on the occasion. Prime Minister Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
4: हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया. इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है. प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी. भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है.
6: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in shipbuilding, ship repair and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. He said that India is capable of becoming a global shipbuilding hub. Defense Minister was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers and Yantra India Limited, worth approximately 3,400 crore rupees in Kolkata. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1 has been identified and there is no cause for panic. The influenza strains currently circulating are also well matched with the vaccine strains recommended for the Northern Hemisphere. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. Delhi police has clarified that no permission has been granted to any individual organization for holding protest or gathering at the Jantar Mantar today. He said that various videos and posts have been circulated calling upon people to gather and assemble on the issue of reservation reforms. In a social media post, police said that prohibitory orders are already enforced in New Delhi district. The BRICS sports ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the sports joint declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sport through dialogue, mutual respect and inclusiveness. Addressing the gathering, Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia called for building a BRICS sporting partnership with practical and sustained cooperation. In men's cricket, India with 300 for 5 in the first innings against host Sri Lanka at stumps on day 1 of the second and final test in Colombo. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 of 193 balls. Earlier, India won the toss and opted to bat. India won the first test by 165 runs and currently lead the two-match series 1-0. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के संदर्भ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन और फिक्की द्वारा आयोजित चौथी टनल एवं ब्रिज कॉन्फ्रेंस 2026। 20 अगस्त गुरुवार को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल ने संवाददाताओं को बताया,
1: बहुत एक ऐतिहासिक शहर है, पूर्ण विकास के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे वो डीडीए के फ्लैट्स हो अथवा प्राइवेट कॉलोनियां हो, आरडब्ल्यूएस की सहायता से, उनके सहयोग से, उनके परामर्श से, और उस प्रकार का काम भी आगे तेज गति से बढ़ाया जाएगा।
0: इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया,
2: बहुत समय से जिस मास्टर प्लान का इंतजार दिल्ली को था वो दिल्ली की जनता को मिल पा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। दिल्ली जो कि एक ऐसी सिटी है, बढ़ती आबादी और लैंडलॉक दिल्ली जो कि 1484 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बंधी है, उसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है, पर उन लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, प्लान्ड एरिया हो, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है, हर वर्ग के लिए।

0: आवास भी इस मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि विशेष अट्रैक्शन है। दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं, उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो है वो बढ़ें, जनता को उनका अधिकार मिले और हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी 30 मीटर रोड पर अब कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो पाएगी। ये भी एक बड़ा कदम है दिल्ली के लिए। हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ इंफ्रा हो, कम्युनिटी सर्विसेज हो, गांव, अनऑथराइज कॉलोनी, फ्लैट एरिया, वेयर हाउस, फार्म हाउस, फॉरेस्ट, पार्क, यमुना फ्लड प्लेन, सोशो कल्चरल फैसिलिटी सेंटर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें मास्टर प्लान में जिस तरीके से डिटेल में इसके बारे में बात कही गई है, ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। दिल्ली के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करके दे दिया गया है जो असल में जमीनी स्तर पे डेवलपमेंट का काम था, टीओडी पॉलिसी दिल्ली को दी है। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जो समाधान चाहिए थे वो इस मास्टर प्लान के माध्यम से मिल पा रहे हैं।
1: इस अवसर पर दिल्ली के उप राज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू ने संवाददाताओं को बताया,
2: द प्लान प्रोवाइड्स A roadmap for sustainable and inclusive urban growth with greater ease of doing business, ease of living, and a cleaner and greener capital for all. It is indeed the implementational manual of the Sapdhara as expressed by the Prime Minister in his speech from Red Fort on 15th August. MPD 2047 should not remain only a planning document. The success of MPD will depend on how effectively we translate its vision and reforms into visible outcomes. It will be measured by the change citizens can see, experience in housing, mobility, infrastructure, environment, and quality of life. The plan provides a clear roadmap for building a better, more inclusive, and sustainable Delhi for the future. It provides a comprehensive framework for transforming Delhi into an inclusive, sustainable and globally competitive capital city. MPD 2047 provides a clear pathway to expand housing in Delhi, not just by creating more homes, but by creating dignified homes, livable neighborhoods and the infrastructure that supports them. MPD 2047 is about creating not only more space for Delhi's growing population, but also more opportunities for its people through better education, innovation, investment, and employment. Narela area is proposed to emerge as a major education and innovation hub with 138 hectares earmarked for universities, creating opportunities for knowledge, skills, research and employment. Dwarka area as an international gateway and a major investment and medical hub with the potential to attract new investment, employment and high value services to Delhi. MPD proposes to promote new industrial parks and townships to support emerging sectors such as IT, R&D, startups, data centers, logistics and creative industries, creating new opportunities for investment, innovation, and employment. Modernize and regenerate existing commercial centers to improve their infrastructure, competitiveness, and economic potential. A modern city not only builds the future, but also preserves the culture and heritage of the past. The Master Plan 2047 seeks to conserve our heritage while keeping it alive through appropriate reuse, tourism, and cultural activities. Since Delhi's heritage is not only our past, it is an important part of our identity and opportunity for the future. The plan focuses on conservation of approximately 1,500 hectare assets, preserving Delhi's rich historical and cultural identity for future generations. Museums, hotels, offices, libraries, and cultural activities while retaining their heritage character. TDR initiatives for heritage buildings will encourage conservation and provide greater economic viability for heritage owners. Integrated heritage and cultural circuits will be developed to promote tourism, cultural experiences, and local economic opportunities. Therefore, the objective is to preserve Delhi's heritage while also making it a living and economically sustainable part of city's future. The real test of the master plan will not be how comprehensive the document is, but how effectively we implement it. MPD 2047 gives us an opportunity to make Delhi a better planned, better connected, greener, more inclusive, and economically vibrant. It is the collective responsibility of all residents of Delhi to ensure that this vision moves from policy to implementation and from implementation to outcomes, and that citizens can see, experience, and benefit from. A Viksit Delhi will be an important contribution to the larger vision of Prime Minister's Viksit Bharat 2047. Thank you, Chair.
1: 19 अगस्त बुधवार को फिक्की द्वारा फिक्की सभागार में टनल एवं ब्रिज कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ब्रिज एवं टनल से जुड़े उद्योगपतियों और प्रशासकों, तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा,
3: अभी हम लोग जो टनल और ब्रिजेस के काम कर रहे हैं, ब्रिजेस में प्रीकास्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्रीकास्ट की कंपनीज को बुलाकर, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर, अब धीरे धीरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में प्रीकास्ट को मैंडेटरी करने का टाइम आया। पोल्यूशन कम करने के लिए अगर टोटल हमारा कंस्ट्रक्शन का काम अगर फैक्ट्री में होगा तो जरूरत नहीं है ये सब सीमेंट स्टील लाना, पूरा पोल्यूशन होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसके ऊपर भी अलग से काम होना चाहिए। टनल में अभी हम लोग कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ के टनल के टेंडर निकाल रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स हैं। अभी नुमालीगढ़ की टनल है 20,000 करोड़ की, रेलवे और है उसका टेंडर निकलेगा। बहुत सी अच्छे बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। कोई भी चीज़ में आप जब नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे तो इस बात का विश्वास रखो कि देयर इज अ मार्केट पोटेंशियल, जिसके कारण आपकी कॉस्ट भी कम होगी, समय भी बचेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आने वाले समय में वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसका उपयोग करके हम रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और टनल कंस्ट्रक्शन में अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो आगे बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चहल पहल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।
5: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दृढ परिस्थिति व्यवस्थायाः निर्माणाय, वैश्विक प्रतिभाः आकर्षणाय च अंतरिक्ष नवोद्यम संस्थानेभ्यः आग्रह कृतः। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवसस्य शुभाशयाः च प्रेषिताः। वृक्ष क्रीडा मंत्रिमण्डलेन वृक्ष क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृतम्। ऋतु विभागेन अद्य छत्तीसगढ़स्य, ओडिशा राज्यस्य, तटीय आंध्र प्रदेशस्य च पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रदत्ता अस्ति। ईरान देशेन तेहरान विरुद्धे अमेरिकीय आर्थिक अभियानेन सम्मिलितुं प्रतिवेशी राष्ट्राणां चेतितम्। अपि च FIH हॉकी विश्व चषक क्रीडायां भारतीय महिला दलम् अद्य रात्रौ उपांत्य चक्रीय स्थानाय ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यमाः प्रशासने स्वविश्वासं प्रकटितवन्तः। अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यम संस्थानां मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सह संवादावधौ श्री मोदी तान स्वप्रयत्न

0: नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अन्तरिक्षक्षेत्रीयं पारितन्त्रं निर्मातुं प्रेरितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशे अनुकूलं वातावरणं निर्मातव्यं यत्र विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं भविष्यं च निर्मातुं भारतं प्राथमिकतया गन्तव्यस्थानम् इति पश्येयुः।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी उक्तवान् यत् व्ययस्य दृष्ट्या भारतम् अत्यन्तं प्रतिस्पर्धाक्षमम् अस्ति, अथ च अत्र गुणवत्तापूर्णाः प्रतिभाः सन्ति यासु संकटस्वीकरणस्य दृढा क्षमता वर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतयोः विशेषतयोः संयोगेन भारतं वैश्विके अन्तरिक्षक्षेत्रे शीघ्रमेव श्रेष्ठस्थानं स्थापयितुं समर्थमस्ति।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: संवादावधौ भारतस्य स्कायरूट एयरोस्पेस इत्यस्य संस्थानस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना अंतरिक्षक्षेत्रं निजक्षेत्र उद्घाटनाय प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं प्रति आभारं प्रकटितवान्। ब्रिक्स क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृत्य आंध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स क्रीडा मन्त्रिणां सभा समाप्ता। घोषणापत्रे ब्रिक्स देशानां क्रीडा विषये संवादस्य परस्पर सम्मानस्य समावेशनस्य च माध्यमेन सहकारं सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितम्। भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायां 26,000+ वर्षे आयोजितायाम् अस्यां सभायां क्रीडामन्त्रिणः सदस्य राष्ट्राणां वरिष्ठप्रतिनिधयः च मिलित्वा क्रीडा विकासं युवसहभागित्वम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं च प्रोत्साहनाय उपायान् चर्चितवन्तः। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे व्यावहारिक निरंतर सहकार्येण सुदृढ़ ब्रिक्स क्रीडा सहभागितस्याः निर्माणाय आह्वानम् अकरोत्। सह क्रीडकानां प्रशिक्षकानां च आदान प्रदानं संयुक्त स्पर्धाः क्रीडा विज्ञानस्य अथ तंत्रज्ञानस्य च आदान प्रदानं प्रस्तावितवान्। डॉक्टर मांडविया अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं स्वस्य क्रीडा पर्यावरण व्यवस्थां परिवर्तयन् अस्ति, एवञ्च क्रीडांगणात् मञ्चपर्यन्तं अवसरान् कल्पयति। सः पैरा स्पोर्ट्स इत्यस्य प्रोत्साहनाय क्रीडासु महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं च भारतस्य प्रयत्नान् अपि प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियांतरिक्ष दिवसावसरे केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह चंद्रयान तृतीयस्य ऐतिहासिक सफलतायाः स्मरणं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉक्टर जितेन्द्र सिंह 23,000+ वर्षस्य अगस्त मासस्य 23 दिनांके घटितं तत् ऐतिहासिकं क्षणं स्मृतवान्, यदा चंद्रयान तृतीयं सफलतया चंद्रस्य दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशे अवतरितम्। सः उक्तवान् यत् अनया उपलब्धिना भारतं विश्वस्य प्रमुखान्तरिक्ष देशेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः भारतीय वैज्ञानिकानां योगदानस्य प्रशंसामपि अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ।

0: सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीराधाकृष्णन् उक्तवान् यत् अन्तरिक्षान्वेषणक्षेत्रे भारतस्य विशिष्टोपलब्धयः देशस्य वैज्ञानिकश्रेष्ठतायाः नवोन्मेषभावनायाः एवं ज्ञानस्य सीमाः च अग्रे नेतुं दृढसङ्कल्पस्य प्रमाणं सन्ति। असौ देशस्य वैज्ञानिकान् अभियन्त्रीन् तथा नवोन्मेषकान् नत्वा उक्तवान् यत् तेषां समर्पणं राष्ट्रं निरन्तरं नूतनासु उन्नतिषु नयति। असौ देशस्य गगनयानं सदृशानां महत्वाकांक्षी अभियानानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक सञ्चारपटले एकं दृश्य श्रव्य सन्देशं प्रकाश्य उक्तवान् यत् नूतन वैश्विक व्यवस्थायां भारतं स्वस्य अन्तरिक्षक्षेत्रस्य निरन्तरं विस्तारं करोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अद्य जेन्जी इति नवयुववर्गसम्बद्धाः अभियन्तारः रूपाङ्कनकाराः सङ्गणककार्यक्रमलेखकाः अथ वैज्ञानिकाः च नवप्रौद्योगिकीनां निर्माणं कुर्वन्ति।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ईरान देशस्य सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदः सचिवः मोहसेन रेजाई इत्याख्यः सीमावर्ती देशान् तेहरान नगरस्य विरुद्धं अमेरिका देशेन संचाल्यमाने आर्थिक अभियाने भागं न ग्रहीतुं सञ्चेतनाम् अयच्छत्। सः अवदत् यत् एतादृशे अभियाने सहभागिता कुर्वन् चेत् ईरान देशः तान् देशान् शत्रुरूपेण मन्येत। IRIB संस्थायै दत्ते साक्षात्कारे रेजाई वर्यः अवदत् यत् ईरान देशः वृद्धिं नेच्छति, किन्तु यदि समीपवर्तिदेशाः वाशिङ्ग्टनस्य आर्थिक भारोपायानां समर्थनं कुर्वन्ति तर्हि तेहरानः प्रतिकारात्मकं कार्यं करिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य युद्धपोतानां समुद्रीययानानां तथा अन्यसम्बद्धक्षेत्राणां निर्माणे आत्मनिर्भरतायाः आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। सः देशस्य सुरक्षायै आत्मनिर्भरताम् अत्यन्तं महत्वपूर्णां प्रतिपादितवान्। भारतं भविष्यस्य पोतनिर्माणकेन्द्रं कर्तुम् अस्मिन् क्षेत्रे उच्चगुणवत्तायुक्तानाम् अनुरक्षणसेवानाम् आवश्यकता अस्ति इति सः प्रतिपादितवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्रप्रदेशानां पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टि नारंग वर्णपरा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। IMD इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय तटीय कर्नाटक पूर्वी उत्तर प्रदेश गांगेय पश्चिम बंगाल झारखण्डानां पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। FIH हॉकी विश्व चषक क्रीडायां भारतीय महिला दलं अद्य रात्रौ ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, कुदरत का नियम है बदलाव।
1: बिल्कुल।
0: और तपती गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो हम सब के मन को खूब भाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए, विशेषकर दूषित जल या फिर साफ सफाई की बात ना की जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो देखिए भाई कई तरह के रोग व बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई मानव स्वास्थ्य, बेहतर जीवन और सशक्त समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। असुरक्षित पानी और गंदगी से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं
1: जी।
0: तो सुरक्षित पेयजल का महत्व काफ़ी है। देखिए, साफ पानी पीने से पेट के रोग संक्रमण नहीं होते। साथ ही शारीरिक कार्य की अगर बात करें तो यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और अंगों को ठीक से काम करने में मदद करता है। और इसके साथ इतना ही नहीं, हेमंत भाई देखिए, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन को सुरक्षित और पौष्टिक बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे अच्छी बात है कि पानी से ना बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे आपने बताया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पानी के जो पारंपरिक जो स्रोत हैं ना, उन्हें ढककर रखना चाहिए, समय पर उनकी सफाई करना और रसायनों से बचाना आवश्यक है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए खुले में शौच को भी पूरी तरह बंद करना होगा और हर घर में शौचालय के जो उपयोग अनिवार्य करना होगा।
0: इतना ही नहीं हेमंत भाई, देखिए आपने खुले में शौच की बात की, तो शौच करने के बाद देखिए खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना भी
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी है।
1: और आसपास जो जल भराव है उसमें जो जब जल भराव हो जाता है तो गंदगी वहां से भी पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं वो जल भराव को भी रोकना चाहिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: मच्छर भी पैदा होते हैं। मच्छर जो है, और ये मौसम ऐसा है जहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, खास करके मलेरिया हो गया आपका और दूसरी बीमारी, जो कई तरह की बीमारियाँ जो फैलती
0: यानी
1: हैं।
0: जो भी जल जनित रोग हैं वो सब इस समय अधिक फैलते हैं। तो भाई देखिए, सावधानी आपने अवश्य रखनी है। और देखिए, अगर बात करें स्वच्छता की जो विशेषता की,
1: जी
0: तो देखिए इसमें हैजा, टाइफाइड, फैलेनरल बैक्टीरिया नहीं होते और रासायनिक रूप से सुरक्षित इसमें जो फ्लोराइड या शीशे जैसी भारी धातु नहीं होती।
1: जी
0: तो देखिए, पारदर्शी अगर बात करें तो पानी साफ और दिखने में पारदर्शी होना चाहिए।
1: बिल्कुल होना चाहिए जी।
0: और यह शरीर में जो वही पानी की कमी को भी रोकता है और देखिए हमने बात की कि कई गंभीर बीमारियों के संक्रमण से बचाता है, साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र और शारीरिक अंगों को भी ठीक रखता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, स्वच्छता पर भी आपने पूरा ध्यान देना और साथ ही साथ भाई जो स्वच्छ जल का प्रयोग आपने करना।
1: और ऐसे समय पर जब यदि लगता है कि पानी गंदगी पानी थोड़ा गंदा है तो उसको उबाल कर भी पियेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भी कीटाणु और जो भी जीवाणु होंगे वो अपने आप ही मर जाते हैं। और
0: बिल्कुल,
1: कहीं ना
0: देखिए
1: कहीं
0: एक उबला हुआ पानी, अगर पानी को उबाल कर 3 मिनट तक उबाल कर उस पानी को पी जाए तो उससे अच्छा पानी कोई नहीं बताया
1: बिल्कुल
0: जाता।
1: बिल्कुल सही बात बोली आपने। और एक और बात सुनील भाई, ये है कि किसी भी देश की तरक्की का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है, कहीं ना कहीं वहाँ का जो व्यवसाय है वो बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ही, और व्यवसाय को एक दूसरे स्तर तक पहुंचाने के लिए सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना
0: बिल्कुल,
1: कहीं।
0: इस बारे में भी हेमंत भाई हम अब बातचीत करेंगे भाइयों से। लेकिन देखिए भाई, आज विशेष दिन है, विशेष इसलिए भी कि देखिए भाई भाइयों के संदेश हमें मिलते हैं और भाई अपने पसंद के कलाकार सुनते हैं।
1: जी
0: पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ कार्यक्रम है। आज के हमारे जो पहले कलाकार हैं वो हैं भाई सत्येंद्र यादव, और सत्येंद्र यादव को सुनने के लिए हमें काफ़ी संदेश मिले हैं। ये पहला संदेश मिला है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू का।
1: वहीं अगला अगली जो फरमाइश हमारे पास आई है, ये पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आई है विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है भाई सतीश अनेजा और विमला अनेजा की, और ये भी सुनना चाहते हैं सत्येंद्र यादव को।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, यश प्यार वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है भवला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल से, इसको भेजने वाले विजेंद्र कुमार, कांता, गुंजन, साहिल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश आई है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और उनके परिवार के सदस्य।
0: ये फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: सतेंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन साहब, नीति शाह और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और उनके परिवार के बाकी लोगों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
1: मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनके परिवार के सदस्य भी फरमाइश कर रहे हैं।
0: सतेंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लाहौर छत्तीसगढ़ से, देवशंकर, अजय देव और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश भी छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से आई है, कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र डूडी की। और ये फरमाइश मिली है गांव फरासी जिला हिसार से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलहत जहानाज, फरत जहानाज और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और भाई देखिए ये सभी सुनना चाहते हैं सतेंद्र यादव से रागनी, और रागनी का किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री। और ये उस मौके की रागनी है जब सत्यवान सावित्री दोनों की शादी तय होने वाली होती है, तब सत्यवान के शुभचिंतक सावित्री को समझाते हैं कि सत्यवान का राजपाट छिन चुका है, वह एक कंगले की हालत में है। उसे चेताते हैं कि कंगले से ब्याह करके वह सारी जिंदगी दुख और कष्टों को सामना करेगी। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी थी इंद्र यादव से, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और सरकार द्वारा देखिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में
1: जी
0: से एक योजना शुरू की गई, भारतमाला परियोजना, देश के राज्य मार्गों, सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित एक राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम है। यह सड़क परिवहन और राज जो मार्ग है मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में माल और यात्रियों की आवाजाही को तेज करना, आर्थिक गलियारों को सुधारना और सीमावर्ती तथा दूरदराज के इलाकों को जोड़ना है।
1: और इस योजना के तहत मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है। इन नई सड़कों की वजह से ट्रकों और गाड़ियों की औसत रफ्तार 30 किलोमीटर घंटा से प्रति किलोमीटर घंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और देश का व्यापार जो है तेज़ी से बढ़ता है।
0: और देखिए, इसका जो लक्ष्य है वो देश के 500 से अधिक जिलों को कम से कम 4 लेन वाले जो राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ना है। और साथ ही सीमा और तटीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का सड़क संपर्क को और अधिक बेहतर किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: और लॉजिस्टिक अगर दक्षता की बात करें तो इसका उद्देश्य यातायात की बाधाओं को कम करके परिवहन लागत और समय की बचत करना भी है।
1: बिल्कुल। और अभी जैसे फरमाइशी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं नरदेव बेनीवाल। और नरदेव बेनीवाल को सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारी फरमाइश हैं, और जिसमें पहली फरमाइश बेहरवाला खुर्द सिरसा से आई है। सुनील भाई, बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैनी जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़, और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी। और इसी क्रम
0: और
1: में
0: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं। ये जो फरमाइश मिली है नगर निगम वार्ड 28 से, और इसको भेजने वाली हैं बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, जबीना और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आदर्श नगर मलुट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, इसको भेजने वाले ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और उनका समस्त परिवार।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर महाराष्ट्र से, इसको भेजने वाले अभिजीत, सरिता, परिणीता और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लाड़ू, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जाह्नवी की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवांकर, निर्मला और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव कलाना तहसील भादरा राजस्थान से, इसको भेजने वाले हैं विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू की।
0: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं गांव खोखरा वाली विनोद वारसा, विशाल, विकास, रोशनी और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और उनके परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक अरोड़ा और प्रकाश अरोड़ा की।
1: गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से फरमाइश आई है राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू, मनु शिवी सेठी, करणपुरी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मेरी है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और उनका समस्त परिवार।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये।
0: ये फरमाइश हमें मिली है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश दतरंगी से आई है भाटा हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और उनके परिवार के सदस्य।
0: तो आइए भाइयों की पसंद पर सुनते हैं नरदेव बेनीवाल से रागनी और किस्सा रहेगा पिंगला भरथरी का। और भाई ये उस मौके की रागनी है हेमंत भाई, जब राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला के मुंह में डूबे हुए थे। वह हर समय रानी के ख्यालों में खोए रहते थे। जब उन्हें संसार की नश्वरता और वैराग्य का एहसास होता है तब सब कुछ त्याग कर जोगी बनने की राह पर जाने की बनाते हैं। इस रागनी में राजा भर्तृहरि को समझाया जा रहा है कि वह स्वयं आत्ममंथन करें कि किसने देखा स्वर्ग आपा मारे बिना।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कि भाई खुद मरे बिना, खुद तपस्या कर कष्ट सहे बिना कोई व्यक्ति स्वर्ग को नहीं पा सकता। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी नरदेव बेनीवाल से, और आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो है मूलचंद शर्मा।
1: और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, शिवाजी विहार दिल्ली से, गार्विक चौधरी, गुरप्रीत, परमजीत सिंह, राजन सिंह, सोनिया, लक्ष्मी देवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये अगली फरमाइश हमें मिले सादुल सहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
0: और ये फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी से, इसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और उनका समस्त परिवार।
1: वहीं अगली फरमाइश रोबर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेघा, साक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है
1: ये
0: एक और
1: मुंगी पेठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर, परमेश्वर रोहिणी कंगड़कर परिवार के और बाकी सदस्यों की। और अगली फरमाइश इसी क्रम में आई है पहाड़गंज मुंताली ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और अहमद भाई देखिए, फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है जो
1: जी
0: हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे हमेशा की तरह। तो भाई देखिए, कार्यक्रम कृषि जगत भी आप सुनते रहें।
1: जी
0: और अब आप सभी की पसंद पर सुन लेते हैं मूलचंद शर्मा से रागनी किस्सा रहेगा नल दमयंती का। और ये उस मौके की रागनी है जब राजा नल व दमयंती जुए में सब हारने के बाद जंगल में भटक रहे होते हैं, तो भूख व प्यास से दमयंती बेहोश होकर गिर जाती है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी मूलचंद शर्मा से, और किस्सा था नल दमयंती का। और मूलचंद शर्मा की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और

0: उच्च गुणवत्ता वाली रख रखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। आईसीएमआर के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए,
1: जी।
0: सरकार द्वारा हमेशा कोशिश रहती है कि किसान भाइयों की मदद के लिए कोई ना कोई योजना चलाई जाए,
1: बिल्कुल
0: कोई ना कोई कार्यक्रम चलाया जाए। और इसी क्रम में सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी चलाया गया। और इस के तहत किसानों को उनके जो खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी दी जाती है। और इतना ही नहीं, यह रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया जाता है। यह कार्ड हर 3 साल में दिया जाता है ताकि किसान मिट्टी के हिसाब से सही खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सके। और इसका किसानों को, भाइयों को सबसे बड़ा फायदा यही है हेमंत भाई, कि देखिए जो उर्वरक की सही मात्रा खेत में किस पोषक तत्व की कमी है
1: जी
0: इसकी सटीक जानकारी मिल जाती है। लागत में कमी आती है, अनावश्यक खाद या यूरिया के इस्तेमाल से बचत होती है, पैदावार में वृद्धि होती है, मिट्टी के अनुकूल फसल और खाद चुनने से पैदावार में बढ़त होती है।
1: बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी या कृषि वैज्ञानिक खेतों से मिट्टी के नमूने यानी सैंपल इकट्ठा करते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला में इस मिट्टी की बारीकी से जांच की जाती है। जांच के दौरान मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और आयरन जैसे 12 जरूरी पोषक तत्वों और मिट्टी के पीएच मान का पता लगाया जाता है। जांच पूरे होने के बाद किसानों को एक प्रिंटेड कार्ड दिया जाता है जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। ये कार्ड बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट की तरह होता है।
0: बिल्कुल भाई, देखिए मिट्टी की जांच की आपने बात की, तो मिट्टी की जांच

0: पहले की जाती है, तो इसमें भी भाइयों को कुछ सावधानी बरतने की हेमंत भाई जरूरी है। जब भी आप मिट्टी की जांच कराएं तो भाई देखिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। एक तो खेत के चारों कोनों से आप मिट्टी अंदर जाकर अच्छी तरह से चारों कोनों से मिट्टी लें, ये नहीं कि भाई एक जगह से आपने मिट्टी ले ली, और कम से कम 6 इंच गहराई से मिट्टी लें, करीब 250 ग्राम के करीब आप मिट्टी लें। इसे मिलाकर साफ सुथरी थैली या उस किसी थैले में आप रखें, और जिसमें चीज़ में भी आप रखें उस पर भाई देखिए अपने खेत का नंबर, खसरा नंबर, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है
1: जी
0: ताकि आपकी जो पहचान बनी रहे। और नमूना लेते समय इस बात का भी एक ध्यान आपको रखना चाहिए कि भाई जहाँ गोबर की खाद, कई बार गोबर की खाद की ढेर हम खेत में इकट्ठी लगा देते हैं,
1: जी
0: तो उसके नीचे से भाई वहाँ से नमूना ना लें। इसी तरह खेत में यदि कोई पेड़ हो और उसकी छाया वहाँ पड़ती हो तो भाई वहाँ से भी नमूना ना लें।
1: जी
0: इस तरह से आप ठीक से नमूना लेंगे और सही पहचान खेत खसरे की लिखेंगे तो भाई आपकी जो मिट्टी की सही से जांच हो पाएगी और उसका सारा रिकॉर्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड में रहेगा।
1: बिल्कुल, जैसा खेती को हमारे खेत को ज़रूरत है उस तरह का उर्वरक, उस तरह का खाद हम लगाएंगे और उससे जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी तादाद में होगी।
0: बिल्कुल, और भाई जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि अभी फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है, तो अगले कलाकार हैं प्रेम राज प्रधान, और इनसे जो उपदेश सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है गुलाम रोड हरगोबिंद रोड नगर पंजाब से मिली है, इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश शिवाजी बिहार दिल्ली से आई है, गार्विक चौधरी, गुरप्रीत, परमजीत सिंह, राजन सिंह, सोनिया, लक्ष्मी देवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर, उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है सिद्धेश्वर नगर, और इसको भेजने वाले हैं पंजाब रामटेक, यशोधरा, पूजा और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता, हार्दिक बत्ता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है भाई गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
1: अगली फरमाइश आई है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगम परवीन और शहनवाज अब्बासी और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और ये फरमाइश मिली है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से।
1: प्रेम राज प्रधान को सुनने के लिए एक और फरमाइश हमारे पास है, ये कोटबा नारायणपुर पावा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। इसी क्रम में दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: अगली फरमाइश जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश आई है हमारे पास, ये आई है फरमाइश, ये तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से आई है, पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, उस्मान अली अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है असम से और इसको भेजने वाले हितेंद्र दास। साथ ही हमें फरमाइश मिली है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू की।
1: अगली फरमाइश गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आई है, उदयपान पाल सिंह, जयहंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है साले भाटा छत्तीसगढ़ से, उसके भेजने वाले जीतू ध्रुव, केवल, किरण और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मशरूर, शाहना हसन, नाक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है कुकदा कुमारी छत्तीसगढ़ से, बलराम भया, दामिनी, रोमेश और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: रोबर्ट करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, रामफल शर्मा और उनके परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है लखनऊ दोनों मध्य प्रदेश से जी बी चौबे, लाडली चौबे और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रबीना, आफिया, सना, समाहिना और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: प्रेमराज प्रधान को ही सुनना चाहते हैं भगवत शर्मा, शांति शर्मा, लीलावती, विनता और उनका समस्त परिवार। और ये फरमाइश मिली है दतरंगी से।
1: अगली फरमाइश आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है मेरठ कैंट से और इसको भेजने वाली दिग्दर्शन और कविता गौड़। भाई आप सभी की पसंद पर सुनते हैं प्रेमराज प्रधान से ये उपदेश।

0: तो सुनील भाई, हमने अभी सुना प्रेम राज प्रधान को, पानी में पानी मिल जा ये उपदेश। और जैसा कि ये हमारा पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम है, और इसमें हमारे पास एक पत्र आया है सुनील भाई, और ये पत्र आया है चौधरी रामकुमार सिंह और हरिंद्र सिंह का।
1: तो रामकुमार भाई क्या लिखते हैं?
0: और ये पत्र लिखते हैं गांव करथला इगलास से। ये कहते हैं कि मैं दलहनी फसलों में सब्जी वाली मटर की बिजाई करना चाहता हूँ, और इसका बिजाई का सही समय और कौन सी भूमि अच्छी और इसके लिए कितने डिग्री तापक्रम उचित रहेगा, इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, और सिंचाई आदि की क्या व्यवस्था करें ताकि अच्छा उत्पादन रहे।
1: तो देखिए, रामकुमार भाई और हरेंद्र भाई, दलहनी सब्जियों की बात करें तो सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर आती है, और मटर की खेती करके किसान भाई अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आप, अच्छी सोच है आपकी। और मटर की खेती के लिए देखिए, 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय सबसे उचित समय माना जाता है। और भाई, इसके अलावा देखिए, अगेती व पछेती मटर की खेती भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उचित समय है वो 15 नवंबर से और 25 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक का है।
0: जी
1: ज़मीन की बात आपने की, तो देखिए, अम्लीय भूमि को छोड़कर मटर हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन अगर दोमट मिट्टी मटर की फसल के लिए सबसे जो उपयुक्त और उचित मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी वाले अगर आपके पास खेत है तो भाई आप उसमें उपयुक्त जो मटर की फसल लगा सकते हैं। मटर की बुआई के लिए बीज अंकुरण के लिए 22 डिग्री जो सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है, और फसल के विकास की अगर बात करें तो फसल के विकास के लिए 10 से 18 डिग्री जो सेल्सियस तापक्रम सबसे उचित माना जाता है। सब्जी मटर की उचित किस्मों में पंत उपहार, जवार मटर 3, T9, T56, NP29, अर्ली बैजर बोनीवाल, जवार P4, काशी उदय आदि जो प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा भाई क्षेत्र के हिसाब से आप किस्में ले सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी बीज लें उपचारित बीज लें। सिंचाई की जहाँ तक बात है, तो देखिए, प्रारंभ में मिट्टी में जो नमी के आधार पर एक दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय पर और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय पर करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सिंचाई जब भी करें तो हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी ठहरने ना दें। कटाई व मंडाई की बात करें तो मटर की फसल सामान्यतः 130 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी कटाई दराती से करना उचित माना जाता है, तथा 5 से 7 दिन धूप में सुखाने के बाद इसकी मंडाई करनी चाहिए। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे और सही खेत का चयन करेंगे, तो आप मटर फसल से ले पाएंगे भरपूर उत्पादन।
0: बिल्कुल, और उम्मीद है कि रामकुमार भाई और हरिंद्र भाई को जो जानकारी सुनील भाई ने दी है, उम्मीद है कि वो अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल में मुनाफा कमा सकते हैं। साथ में अब जो अगली फरमाइश, जैसा कि फरमाइश पर आधारित हमारा कार्यक्रम चल रहा था, रामेंद्र नागर और विनय नागर हमारे अगले कलाकार हैं, और उनको सुनने के लिए जो हमारे पास सुनील भाई जो फरमाइश आई है, वो इसमें पहली फरमाइश जो है हमारे पास, वो ग्राम पाजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम स्तोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश और उनके परिवार की तरफ।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है, ये फरमाइश आई है चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से। लिखने वाले श्रोता हैं तेजपाल सिंह, प्रजापति, अनुराधा, क्षमा, शिवी और उनके परिवार के सदस्य।
1: ये फरमाइश हमें मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और उनके परिवार के सदस्य। इसी क्रम में अगली फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है, वो आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, और ये आई है फरमाइश हमारे पास जालंधर से।
1: ये फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद से, और उसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश आई है ढाणा नरसान भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: अगली फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: रविंद्र नागर और विनय नागर को सुनना चाहते हैं अनारकली वजरा जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, रोशनी बारासा, विशाल बारासा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गाजियाबाद से शीशपाल अकेला की।
0: चौधरी बास हिसार से फरमाइश आई है राजू अग्रवाल, केशव, नैन्सी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी से हमें फरमाइश भेजिए संजय जांगड़ा राजबाला और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं रोमेंद्र नागर और विनय नागर से ये उपदेश।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना रोमेंद्र नागर और विनय नागर से। और भाई देखिए, मौसम की अगर बात करें तो भाई देखिए, जो अधिकतर तापमान 33 डिग्री से 37 डिग्री के बीच आगे रहने की उम्मीद है, और
1: जी
0: न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री से 29 डिग्री रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: जी
0: तो ऐसे में देखिए भाई, अगस्त माह चल रहा है, जिन किसान भाइयों ने ज्वार आदि चारे की जो फसल लगा रखी है वो इसकी कटाई कर लें। और भाई यदि आपका खेत खाली है और सूरजमुखी की अगर आप फसल लगाना चाहते तो भाई वो भी लगा सकते हैं। धान में उर्वरक की

0: मात्रा अवश्य दे दें। साथ ही भाई इसी प्रकार धान, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द आदि फसलों से खरपतवार निकाल दें।
1: बिल्कुल, और इस मौसम में सुनील भाई क्या होता है, घास फूस जो है बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ती है, तो सफाई बारिश के दिनों में घास फूस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और घास ज़मीन की सारी ताकत जो होती है ना, खाद और पानी खुद को सोख लेती है, जिससे हमारी मुख्य फसल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इस हफ्ते खेतों में निराई गुड़ाई ज़रूर करें और खरपतवारों को निकाल फेंके, इससे पौधों की जड़ों को हवा मिलेगी और फसल जो है तेज़ी से बढ़ेंगी।
0: और देखिए भाई बागवानी की अगर बात करें तो जो भाई आम व अमरूद के नए बाग लगाना चाहते हैं और भाई अभी लगाए नहीं हैं, तो भाई अब इसमें देरी ना करें, और पपीते के बाग लगा रखे हैं तो भाई उनमें खाद अवश्य दे दें, वे कीट व बीमारियों का भी ध्यान रखें। सब्जियों में बात करें भाई, टमाटर, बैंगन, गोभी की पौध नर्सरी से उखाड़ कर उसकी रोपाई इस समय की जा सकती है।
1: कीड़े और बीमारियों से बचाएं, मतलब कीड़े और जो बीमारियां होती हैं इस समय ज़्यादा पनपते हैं, हवा में नमी और गर्मी की वजह से इस समय फसलों में कीड़े और बीमारियां लगने का डर सबसे ज़्यादा होता है। धान में अक्सर पत्ती लपेटक या तना छेदक कीड़ा लग जाता है। रोज़ सुबह खेतों में जाकर पत्तों को ध्यान से देखें, अगर पत्तों में पीले धब्बे या कीड़े दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर यानी किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सही दवा का छिड़काव करें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आसमान में बादल हों या बारिश की संभावना हो तो दवा ना छिड़कें।
0: और भाई अब कल कार्यक्रम के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का।
1: वहीं समय रहेगा 6:30 कार्यक्रम ग्राम संसार का, चर्चा रहेगी उद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावना और योजना रहेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
0: और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे नींबू वर्गीय फलों का गिरना और प्रबंधन के उपाय, साथ ही भाई योजना बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: और भाई ये हमारा आज का कार्यक्रम था, आपको कैसा लगा, अपने सुझाव या शिकायत हमें अवश्य लिखें। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
1: और साथ में मेल आईडी आप मेल भी कर सकते हैं, और मेल आईडी हमारी feedback@fnh.com।
0: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय ही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:35 हुए हैं। ये प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: हाथ में। जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विशेष कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन और 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सम्पन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स से ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों CEOs के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
6: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
5: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दूरदृष्टि, साहस और प्रतिभा को सलाम किया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया जाता है जिसने भारत को विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष यात्री देशों में शामिल कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्यार्थियों के में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा और वैज्ञानिक जिज्ञासा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के CEOs के साथ संवाद को मुख्यमंत्री ने देश के युवा इनोवेटर्स के लिए एक प्रेरक आह्वान बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के बदरपुर और देवली विधानसभा क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से इन क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, विशेषकर सड़कों और नालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन और जल निकासी की समस्याएं दूर होंगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 9 में स्थित आत्मवल्लभ हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन और प्लास्टिक वेस्ट ड्रॉप बॉक्स का लोकार्पण किया। एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदला जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान नुक्कड़ नाटक की सहायता से नागरिकों को स्वच्छता के महत्व पर जागरूक भी किया गया।
7: इस अवसर पर महापौर ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा, इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल किया गया है। इससे पूरे शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदार बनें। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
5: दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। इसके लिए सरकार ने राजधानी की जेलों में बंद विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों और अधिक जोखिम वाले कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित करने की योजना तैयार कर ली है। एक रिपोर्ट।
8: दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव के अंतर्गत संबंधित राज्यों की आपसी सहमति और गृह मंत्रालय की स्वीकृति से विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों तथा अन्य अधिक जोखिम वाले कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और जेलों के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राजधानी की जेलों में दोषियों के साथ बड़ी संख्या में कठोर और कुख्यात अपराधी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था में ऐसे विचाराधीन गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को राजधानी की जेलों से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करना संभव नहीं है। इसे संशोधित व्यवस्था को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे गंभीर और अधिक जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों को परिस्थितियों के अनुरूप दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य जेल सुरक्षा कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैदियों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण को संभव बनाना और संगठित अपराध से निपटने में राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

0: शशांक जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन, 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई है।
1: जब हमने रॉबर स्नैचर को पकड़ा तो उनके पास से अवैध हथियार भी मिले। हमने जो है आर्म्स एक्ट में मुकदमे दिए हैं। साथ में जब हम एनडीपीएस की बात करें तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा है जिनके पास से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की हीरोइन जो वो लोग सेल करते थे उसको हमने बरामद किया है और एनडीपीएस के केस रजिस्टर करे हैं। करीब 10 करोड़ करीब की जो है हीरोइन बरामद की है और वो मेनस जो बने हुए थे उन लोगों को हमने गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लेके आए हैं। साथ में इसके चोरी के मोबाइल्स भी हमने रिकवर किए हैं, तो इलिसिट लिकर भी हमने रिकवर की है, गैम्बलिंग डेन को भी बस्ट किया है और जो एक कॉल सेंटर था उसको भी बस किया। 6 लोग अरेस्ट किए हैं।
0: दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला टीम ने देश में अवैध रूप से अवधि से अधिक समय तक रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरिया, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए विदेशी नागरिकों के विरुद्ध विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा नियमानुसार निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की टीम ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुके हुए 2 नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान इन विदेशी नागरिकों के पास कोई वैध और कानूनी दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या सभा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर लोगों को जुटने के लिए उकसाने वाले भ्रामक वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में पहले से निषेधाज्ञा लागू है जिसके अंतर्गत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक लोगों की सभाओं पर सख्त प्रतिबंध है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो के आधार पर एकत्रित न होने तथा अपुष्ट सामग्री साझा न करने की अपील की है। साथ ही फर्जी या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के सामने पेश करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजित कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि देश भर के कलाकार महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के पारिजात हरण अंकिया नाट को प्रस्तुत करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एकजुट हुए हैं।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: रक्षाबंधन को लेकर बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुटखुर्द गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शाहबाद डेयरी क्षेत्र की महिलाओं ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री तथा बवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह को राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बहनों का प्रेम और विश्वास इस पावन अवसर को विशेष बनाता है और जनसेवा के प्रति हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम ऑन संडे अभियान के लगातार 38वें रविवार के अवसर पर आयोजित किया गया। अलीगंज में आयोजित कार्यक्रम में आज युवाओं, स्थानीय निवासियों, महिलाओं, बच्चों, RWA प्रतिनिधियों तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समापन हो गया। 17 अगस्त से शुरू हुई प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वेई किंग और वांग चंग तथा महिला डबल्स दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली साही की जोड़ी ने जीता। फ्रांस के थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरो ने मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए प्रतियोगिता में सबसे सफल

0: प्रदर्शन त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का रहा, जिन्होंने 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत को कांस्य पदक दिलाया। राजधानी में आज सुबह तेज बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की, ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विशेष कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन और 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन। 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर प्रीता पवार।
1: आकाशवाणी दिल्ली के सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रीता पवार का स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी के लिए कविताओं की खूबसूरत महफिल सजाई है। इस सुंदर महफिल के नाम चार पंक्तियाँ वक्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। ए जिंदगी, हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा ज़माना हमें, हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। ऐसे ही नायाब हुनर रखने वाले जो कविगण आज काव्य पाठ हेतु उपस्थित हुए हैं, उनके नाम हैं डॉक्टर मनोज कैन, मनीष शर्मा जी और दीपा गुप्ता जी। सबसे पहले मैं नारी शक्ति को आवाज़ देती हूँ दो पंक्तियों से। रोज़ रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़ी हूँ मैं, ए मुश्किलों देखो तुमसे कितनी बड़ी हूँ मैं। दीपा गुप्ता जी जो कि शोधार्थी हैं, हिंदी साहित्य में लिखती हैं, जनजीवन की कविताएं लिखती हैं। दीपा गुप्ता जी आपका स्वागत है, अपनी प्रस्तुति दें।
2: लाख व्यस्तताएं हो जीवन में, लाख व्यस्तताएं हो जीवन में, बातचीत चलती रहे साथ साथ।
1: बहुत खूब,
2: आभार। निराशाएं भले घेरे हों जहन में आशाएं पलती रहें साथ साथ। कोई राह कभी रुकने न पाए, हौसला कभी झुकने न पाए। कदम सहस्रों चलना पड़े भले, मंजिल मिलती रहे साथ साथ। कड़ी धूप में चलना पड़े चाहे, कितनी आंधियों से लड़ना पड़े। बादल चाहे गरजते हों गड़गड़, बूंदें भी बरसती रहें साथ साथ। शीत लहर हाड़ कप कप आती हो या तपित वायु देह झुलसाती हो, हर कठिनाई का सामना करेंगे बस ऋतुएं बदलती रहें साथ साथ। बस ऋतुएं बदलती रहें साथ साथ।
3: बहुत
2: धन्यवाद। एक छोटी बहर की गज़ल मैं रखती हूँ।
1: स्वागत।
2: एक गज़ल जैसे कमल खिलते हैं लब आँखें सजल। बदली है रुत तू भी बदल, मत लड़खड़ा थोड़ा संभल। पाना मुका निश्चय अटल, तू बन खरा मत कर नकल। पथ में कभी मत बन खलल, खिलने दे गुल यूं मत मसल। बातों में यूं मत दे दखल, और झूठों से तू अब मत पिघल। सर खा लिया चल अब निकल।
3: वाह
2: शुक्रिया,
3: बहुत बढ़िया।
2: एक और गज़ल में पढ़ती हूँ। उसका

0: है और एक कविता मैं
1: हाँ,
0: सुनाना चाहूंगी। परिधान
1: स्वागत।
0: पश्चिमी पहने तो क्या, परिधान पश्चिमी पहने तो क्या, गहने हुए न दारद तो क्या। परिधान पश्चिमी पहने तो क्या, हुए न दारद गहने तो क्या। परिधान पश्चिमी पहने तो क्या, हुए न दारद गहने तो क्या। बड़ों के आशीष को माथे पर बिंदिया सा सजाती हूँ मैं। बड़ों के आशीष को माथे पर बिंदिया सा सजाती हूँ
1: बहुत
0: मैं।
1: बढ़िया।
0: शुक्रिया। छोटों पर प्रेम की खनक को कंगन सा बजाती हूँ मैं। छोटों पर प्रेम की खनक को कंगन सा बजाती हूँ मैं। सहनशीलता का घूंघट ओढ़, सहनशीलता का घूंघट ओढ़, आंगन में खुशियों की झांझर छनकाती हूँ मैं। आंगन में खुशियों की झांझर छनकाती हूँ मैं। करुणा दया ममता की मूरत यूं ही नहीं कहलाती हूँ मैं। करुणा दया ममता की मूरत यूं ही नहीं कहलाती हूँ मैं। कितनी पीड़ा कितने घाव हंसकर सह जाती हूँ मैं। कितनी पीड़ा कितने घाव हंसकर सह जाती हूँ मैं। यूं ही नहीं नारी कहलाती हूँ मैं,
1: क्या बात,
0: यूं
1: क्या
0: ही
1: बात,
0: नहीं
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: नारी
1: बढ़िया,
0: कहलाती हूँ
1: बहुत
0: मैं।
1: बढ़िया।
0: सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है, सभी का अपना नज़रिया अपनी दृष्टि है। सभी का अपना नज़रिया अपनी दृष्टि है। मेरी नज़र में शिशुओं की मोहक मुस्कान है सौंदर्य। मेरी नज़र में शिशुओं की मोहक मुस्कान है सौंदर्य। बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियाँ हैं सौंदर्य। प्रकृति है सौंदर्य, ईश्वर है सौंदर्य। मेहनत की सूखी रोटी में है सौंदर्य। धन्यवाद।
1: बहुत खूब,
0: मजदूर के पसीने से बने महलों में है सौंदर्य। मजदूर के पसीने से बने महलों में है सौंदर्य। प्रतिदिन सींच सींच कर बड़े होते

0: के नवांकुर है सौंदर्य। धन्यवाद, बहुत
1: बस
0: सुंदर,
1: बहुत
0: बहुत
1: सुंदर।
0: सुंदर। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, दो पंक्तियां याद आ गई मुझे आपकी कविताएं सुनकर। जीवन सागर में पावन बड़ वानल की ज्वाला सी, यह सारा कलुष जलाकर तुम जली अनल बाला सी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, मूलतः पत्रकार हैं, लेखक हैं, हिंदी साहित्य से इनका लगाव है, रुचि है, जुड़ाव है। चार पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ क्योंकि आप पत्रकार
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: समाज से राबता रखते हैं। मशालें ये जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत तिल मिलाए हुए हैं, इन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी, ये लोग क्यों परचम उठाए हुए हैं। तो मनीष शर्मा जी, स्वागत आपका।
1: धन्यवाद पिताजी। दीपा जी ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। उनका अपना नज़रिया है चीज़ों के प्रति और मेरा अपना नज़रिया चीज़ों के लिए है। मैं कुदरत को जिस नज़र से देखता हूँ, ये पहली कविता कुदरत को समर्पित है।
0: स्वागत।
1: स्वागत। धरती से मिलती है गन्ने को मिठास, मिर्च को तीखापन, फूल को मिलते हैं रंग, अंगूर को मिलता है रस। जिसका गुण जैसा होता है, कुदरत उसे दोगुना कर देती
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: और
0: बहुत खूब।
1: ये एक समझ है कि कुदरत जो है किस तरह काम करती है। जो बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा,
0: बिल्कुल
1: ये कहा
0: बिल्कुल।
1: जाता है। कुदरत का एक और गुण मेरी नज़र में जो है वो मैं अपनी कविताओं के जरिए पेश कर रहा हूँ। सीधा कुछ नहीं होता। हम मानते हैं कि परफेक्शन की तलाश रहती है, इसी तरह परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो सीधा कुछ नहीं होता। आड़ी तिरछी रेखाएं चित्र बना देती हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं चित्र बना देती हैं गर सोच हो पीछे। आधे अधूरे शब्द देते हैं पूरा अर्थ अगर दर्द भरा उनमें। दिलचस्प है कुदरत में कुछ पूरा नहीं होता, कुछ सीधा नहीं होता। पहाड़ हों, नदियां हों, अथाह हैं पर पूरे नहीं हैं।
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: बहुत
2: बढ़िया।
0: सुंदर।
1: पहाड़ हों या नदियां, अथाह हैं पर पूरे नहीं हैं। वो बदलते हैं हर पल। जिंदगी में फिर क्यों होती है हमें पूरा होने की चाह, जो हमें और अधूरा बना देती है, जो हमें और अधूरा बना देती है। क्यों चलें सीधा साधा जब कुदरत कहती है सीधा कुछ नहीं होता, सीधा कुछ नहीं होता।
2: अच्छा है, बहुत अच्छा।
1: एक और दर्द से निकली एक कविता है कि जिस तरह दर्द हर तरफ फैला हुआ है, दर्दे जहां आप कह सकते हैं, तो कविता का शीर्षक है सुबह से सुबह की बात कर।
0: क्या बात है, स्वागत।
1: देखते देखते हवाएं आंधियों में बदल गईं, देखते देखते हवाएं आंधियों में बदल गई, शाम खुशनुमा जैसे रंग बदल गई।
0: बहुत सुंदर।
1: शाम खुशनुमा जैसे रंग बदल गई, धूल चढ़ते चढ़ते जैसे सिर ही चढ़ गई और चंदी पलों में दुनिया बदल गई।
0: दुनिया बदल गई,
1: बहुत
0: बहुत
1: चंदी पलों में दुनिया बदल गई। टूटते हैं तारे पर कैसे दिखाई दें, टूटते हैं तारे पर कैसे दिखाई दें, आंखें खुली घर तो अपने जख्म दिखाई दें, आंखें खुली घर तो अपने जख्म दिखाई दें। दिल यहां भरा है हर किसी का आज, दिल यहां भरा है हर किसी का आज। बंद आंखों से ही पर उम्मीद की बात कर,
2: उम्मीद की बात।
1: बंद
2: बहुत
1: आंखों से
2: सुंदर,
1: ही सही पर उम्मीद
2: उम्मीद
1: की
2: की
1: बात
2: बात कर,
1: कर।
2: बहुत बढ़िया।
1: हमने तो बस परिंदा
0: क्या
1: होना
0: बात है,
1: चाहा, मौसमे हाल ने पर तमाम किए। अब पिंजरों में बैठकर ताका करते हैं हम, अब पिंजरों में बैठकर
2: ताका
1: ताका
2: करते
1: करते
2: हैं।
1: हैं हम। ए खुदा मस्त हवाएं फिर बहाल कर, ए खुदा मस्त हवाएं फिर बहाल कर।
0: बहुत सुंदर।
1: लगता है जैसे रात बस आने को है, लगता है जैसे रात बस आने को है। न जाने लौए उम्मीद कब तक झिलमिलाएगी, न जाने लौए उम्मीद कब तक झिलमिलाएगी। ए दोस्त मालूम है रात लंबी होगी अभी, ए दोस्त मालूम है रात लंबी होगी अभी। चल बैठ सुबह तक सुबह की बात कर,
0: वाह, क्या
1: चल बैठ
0: बात है, क्या बात है।
1: सुबह तक
0: सुबह तक
1: सुबह की
0: सुबह
1: बात
0: की
1: कर।
0: बात कर, बहुत खूब।
1: घर घर में धूल पसर गई पसरेगी
0: पसरेगी।
1: अभी, बस दुआ कर कि दिलों तक ना पहुंचे कभी, बस दुआ कर कि दिलों तक ना पहुंचे कभी। गर्द है गर्दिश भी होगी तय है, गर्द है गर्दिश भी होगी तय है। चल कोई नहीं सबके दर्द की बात कर,
0: आहा,
1: चल
0: सबके
1: कोई
0: दर्द की
1: नहीं
0: बात, क्या
1: सबके
0: बात है,
1: दर्द की
0: क्या
1: बात
0: बात
1: कर।
2: है, बहुत बढ़िया।
1: आंखों में आंसू दिल में जलन, आंखों में आंसू दिल में जलन, दम घुट रहा है पल पल छिन छिन। ये जो है माहौल वो सबका है आज, ये जो है माहौल वो सबका है आज। चल गले मिलकर सबसे सबकी बात कर,
0: बहुत
1: चल गले
0: सुंदर,
1: मिलके सबसे
0: सबके
1: सबकी
0: सबकी
1: बात
0: बात,
1: कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: एक छोटी सी कविता और मैं कहना चाहता हूँ। शीर्षक
0: स्वागत।
1: है मैं, हर कोई जो है एक दौड़ में है, हर कोई अपने को तलाश रहा है, लेकिन उन सब के बीच में जब अंदर झांकते हैं तो क्या नजर आता है, वो इस कविता का सार है। गहन अंधकार की चादर सा फैला, गहन अंधकार की चादर सा फैला, रेत के विशाल मैदान सा मैला, मैं जीवन के अपठित छंद को पढ़े जा रहा, जीवन के अपठित छंद को पढ़े जा रहा, अकेली अनजानी बीहड़ राहों पर बढ़े जा रहा, नहीं जानता कहाँ है छोर, कब होगी भोर, अंधेरी दुर्गम राहों पर ज्यों हाथ ढूंढता, साथ ढूंढता, आगे बढ़ने की नई राह ढूंढता, समय चक्र के पहिए के नीचे पिसा जा रहा, पिसा जा रहा।
0: क्या बात है।
1: बिखरता कण कण, बिखरता कण कण रेत का दल, काली होती अंधेरी चादर, शायद यही हूँ मैं, शायद यही हूँ मैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। दो पंक्तियाँ याद आ गईं। उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, यही बहुत है कि ताज़ा हवा चली
1: चली चली तो है।
0: ताज़ा हवा, बहुत सुंदर। और प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं और प्रकृति के माध्यम से आपने जीवन का दर्शन दिया है, तो ये बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता। और अब हम अब कार्यक्रम के जो अंतिम वक्ता हैं, जो बड़े सबको, हम सबको दाद दे रहे हैं, सराह रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर मनोज कैन जी को बुलाती हूँ। आप शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवक हैं, कई विधाओं में आपका लेखन है, और चार पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। मनोज जी, सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, बुझाने को हवा के साथ अगर बारिशें भी आ जाएं, बुझाने को हवा के साथ अगर बारिशें भी आ जाएं, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। मनोज जी, आपका स्वागत है। आप
3: धन्यवाद मैम,
0: प्रस्तुति दें, रचनाओं को पढ़ें।
3: मैं इस काव्य गोष्ठी में सर्वप्रथम अपनी माँ को समर्पित करते हुए कविता पढ़ूंगा।
0: स्वागत।
3: मेरी स्वर्गीय माँ, और मुझे लगता है कि माँ से बड़ा कोई संबंध नहीं है। माँ तुम चली गई कहाँ, माँ तुम चली गई कहाँ, माँ तुम चली गई कहाँ, माँ तुम स्वप्न में आ जाया करो, माँ तुम स्वप्न में आ जाया करो, रोज नहीं, रोज नहीं तो कभी कभी, रोज नहीं तो कभी कभी अपने इस बेटे के पास आ जाया करो। जो मार्ग आपने दिखाया था उससे अलग हो गए हैं तो समझाया करो, डांट लगाया करो, समझाया करो, डांट लगाया करो, पर माँ सपनों में आ जाया करो। अपने खून पसीने से, अपने खून पसीने से बनाया था जो उपवन, उस उपवन की फुलवारी के फूलों को तो दुलार जाया करो, माँ सपनों में आ जाया करो।
1: बहुत बढ़िया।
3: माँ तुम सपन में आ जाया करो, सुंदर लुभावनी छवि, वात्सल्य मुस्कान, ममत्व आँखें, उदार हाथ, दो मीठे बोल, बोल जाया करो, माँ तुम सपन में आ जाया करो।
1: जी।
3: आओगी तो मैं रुकने के लिए जिद नहीं करूँगा, आओगी तो मैं रुकने के लिए जिद नहीं करूँगा, जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। अपनी मातृत्व वृष्टि कर जाया करो, माँ तुम सपन में आ जाया करो, माँ तुम सपन में आ जाया करो। मेरी दूसरी कविता है, अब लौट जाओ उनके पास, ये उनके लिए है जो गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आ गए और गांव खाली हो गए और अपने बुजुर्गों का ध्यान न रख करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। जहां थे कभी खेत खलियान, वहां बना दिए मकान पर मकान, इस नए शहर में इंसान कम मकान ज़्यादा हैं। जो भी गांव जाता है, जो भी गांव जाता है, दो चार साथ लिए आता है, जो गांव तुमने कर दिए वीरान, वही थे कभी तुम्हारी पहचान, वही थे कभी तुम्हारी पहचान, उन्हीं में करती है तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा वास, तुम शहर आ गए, तुम शहर आ गए, शर्मिंदा है, शहर में करते हो उनकी आत्मा।

0: आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ पलायन करते वक्त तुम्हें नहीं रही उनकी कोई भी बात याद, पलायन करते वक्त तुम्हें नहीं रही उनकी कोई भी बात याद, हमें छोड़कर मत जाना, हमें छोड़कर मत जाना, अगर जाओ तो ले जाना अपने साथ, तो ले जाना अपने साथ जिसके लिए शहर आए थे, जिसके लिए शहर आए थे वह हो गए संपूर्ण काज, तो अब लौट जाओ वापस उनके पास। कितने वर्षों से तुम्हारे बिना है वह मलिन और उदास, मलिन और उदास, तुम आए हो उनसे दो कदम दूर, तुम आए हो उनसे दो कदम दूर, तुम्हारी संतान होगी तुमसे चार कदम कोसों दूर, जैसे पेड़ लगाओगे वैसे ही फल खाओ, फल खाओ। मत करो शहर में निर्माण, गांव में भी है तुम्हारे अपने और अपना मकान, मिलेगा सुख शांति स्वास्थ्य का जीवन दान, मिलेगा सुख शांति और स्वास्थ्य का जीवन दान, अब लौट जाओ उन्हीं के पास।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: एक कविता वीर पे पढ़ूंगा, वीर का असली धर्म क्या होता है। वीर निकाल तुनीर से बाण, वीर निकाल तुनीर से बाण, रख धनुष पर कर अनुसंधान, शत्रु जब खड़ा हो समक्ष फिर क्यों भ्रमित होता है, वीर तू क्यों अभी तक सोता है, वीर तू क्यों अभी तक सोता है, क्यों किसी के दुख में दुखी होता है, दुख में ही सुख की परिणति है, फिर क्यों मारी गई तेरी मति है, सुख दुख में वीर की एक सी गति है, इससे तुझे ना कोई फर्क पड़ता है, वीर केवल युद्ध करता है, युद्ध करता है,
1: बहुत
0: वह निर्णय की कहां परवाह करता है, रणभूमि में जब कदम धरता है मारता है या मरकर वीर गति को प्राप्त करता है, वह अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता है, वह अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता है, वीरता ही वीर का आभूषण होता है, वीरता ही वीर का आभूषण होता है, वीर आलंबन नहीं खोजता है, वीर आलंबन नहीं खोजता है, अपने बल पर जीता है, अपने बल पर ही मरता है, अपने बल पर ही जीता है, अपने बल पर ही मरता है, परमार्थ हेतु हो जाए जो नुछावर, परमार्थ हेतु हो जाए जो नुछावर, वही सही अर्थों में वीर होता है, वही सही अर्थों में वीर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, और बड़ा मार्मिक माँ और संतान का संबंध आपने जो अपनी पहली कविता में दिया, और दूसरा आपने समसामयिक एक गंभीर समस्या पलायन की गाँव से शहर की ओर, जिससे हमारा सारा सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न हो रहा है, और तीसरी आपने ओज की कविता सुनाई, बहुत सुंदर। दो एक पंक्ति याद आ गई आपकी कविताओं को सुनकर, कि अपने शब्दों में सहज भाव रखते हैं, कलम की नोक से घाव भरते हैं, तो बहुत खूब।
0: मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा काव्य पाठ के लिए डॉक्टर प्रीता पवार जी को, जो इस काव्य गोष्ठी का इतना सुंदर संचालन कर रही हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, आप साहित्यकार हैं और आप समाज सेविका हैं, आप निरंतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने लेखन कार्य से समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं, आप पूर्ण अधिकार के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं, और निरंतर आप अपने रचनाक्रम से समाज को समृद्ध कर रही हैं, और ऐसी आदरणीय डॉक्टर प्रीता पवार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मेरी कविता भी प्रकृति से जुड़ी है, और हम स्वयं प्रकृति के हिस्से हैं, और जितना हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन कलुषित होगा, दूषित होगा और जटिल भी होगा, और यही हमारी आज आधुनिक जीवन की त्रासदी भी यही है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और न केवल दूर होते जा रहे हैं बल्कि प्रकृति का हम विनाश करते जा रहे हैं। तो उसी पर मेरी कविता है, दोषी कौन।
0: दोषी कौन, बहुत स्वागत है।
1: सर्वस्व पिघलते दृश्य, धरती के हिमाच्छादित दोनों ध्रुव, विशाल हिमनद, ऊष्मा की तपन, गर्म गैसों का विसर्जन, उत्तुंग चोटियां, पर्वतों की बर्फीली, नितांत बर्फीली, पिघलती रहीं, पिघल रहीं, अथाह जलपुंज बन रही, सागरों में सागर।

0: ढल रहे, उफन रहे, उबल रहे, कैसी कैसी गर्जनाएं कर रहे, धरती को निगल रहे, धरती भी तो गल रही, कण कण पिघल रही, धरती निर्वासित सी, एकाकी व्यथित सी, उसकी कोख से निकले रक्त बीज कैसे कैसे,
1: रक्त बीज कैसे कैसे,
0: उसकी कोख से निकले रक्त बीज कैसे कैसे, कहलाए मानव सहस्र सहस्र मानव, पाषाण युग से चलकर परमाणु युग तक, पाषाण युग से चलकर परमाणु युग तक, प्रगति की गाथाएं पार की बाधाएं, विजय का खुमार अंबर पार, विजय का खुमार अंबर पार, किंतु अब क्या, किंतु
1: अब क्या,
0: अब क्या, अब सब पिघल रहा, धरती सिकुड़ रही, जल बढ़ रहा, अकाल मृत्यु से वृक्ष मर रहे, सूर्य दहक रहा, धरती धधक रही, धरती का कवच ओजोन चादर हो रही छीण सी, और छिद्रिल भी मानव की प्रगति बनी घोर विपत्ति, मरघट से वन अंगारे से चंदन, सर्वत्र प्रदूषण श्वासों में धुआं, कांपती कोपलें मृत्यु के भय से, वो देख रही साम्राज्य धुओं के, विषाक्त काले बादलों के, रासायनिक वर्षाओं के, परमाणु बमों के, कान भेदी धमाकों के, जल नहीं, छाया नहीं, नदी नहीं, झरना नहीं, शुष्कता चहुं ओर काल का शोर,
1: काल का शोर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर,
0: शुष्कता चहुं ओर काल का शोर, भविष्य नहीं, जीवन नहीं, दोषी कौन,
1: दोषी
0: कौन, तू भी मैं भी,
1: तू भी मैं भी,
0: किंतु वो कोपल नहीं, कदापि नहीं, जिसने जीवन जिया ही नहीं, जिसने जीवन
1: जिया ही नहीं। अति सुंदर
0: एक कविता ये है, और एक जिंदगी के ऊपर है, हम लोग जिस मोड़ पर, आप नहीं, हम, मैं शायद थोड़ा सा आप, थोड़ा सा आप, हम लोग जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं उस पर एक छोटी सी नज्म है। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं,
1: आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं,
0: पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं।
1: अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं, कहाँ संवरे कहाँ बिखरे, मुड़कर सारे मकाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं।
1: बहुत सुंदर।
0: हुई कितनी गुस्ताखियाँ नादानियाँ, हुई कितनी गुस्ताखियाँ नादानियाँ, दिल में उठता कोहराम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। दिल के छाले मिले बे इंतहा, दिल के छाले मिले बे इंतहा, सहलाने वालों के हम नाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। जो बिछड़ गए अपने दौरे सफर में, जो बिछड़ गए अपने दौरे सफर में, उनकी यादों का सैलाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। मौसम कब कहाँ एक सा रहा
1: जी,
0: मौसम कब कहाँ एक सा रहा, आती जाती धूप छांव देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। उम्र है कि बढ़ती ही जा रही है, उम्र है कि बढ़ती ही जा रही है, रोज सरकते सुबह शाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। दुश्मनी तो हमसे कर बैठे हो खूब, दुश्मनी तो हमसे कर बैठे हो खूब, तुम्हारे अंदाज में तुम्ही को जनाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया।
0: रेशे रेशे पंखों के बिखरे बिखरे, रेशे रेशे पंखों के बिखरे बिखरे, उड़ने का फिर भी हम ख्वाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। स्याह काली इस रात की सरहदों के पार, स्याह काली इस रात की सरहदों के पार, उग रहा वो सुर्ख आफताब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। और देखिएगा ये हम सबकी ये कहानी है, उम्र सारी लगा दी नौनिहालों को पालने में,
1: उम्र सारी लगा दी
0: नौनिहालों को पालने में, अब उनका इंतजाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, दर बदर यहाँ वहाँ खूब भटका किए, बाद भटकन का अब हम आराम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। अंतिम दो पंक्तियाँ, मंजिल पर पहुँच ही गए चलते चलते, छलनी हुए अब अपने पांव देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, दुखों में साथ खूब रहा ऊपर वाले का, ये जिंदगी का दर्शन है, दुखों में साथ खूब रहा ऊपर वाले का, प्रभु श्री राम की नेमतें नायाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। धन्यवाद,
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: और बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता आपकी,
0: रचनाओं को,
1: अच्छा बहुत बढ़िया।
0: और इस प्रकार हमारा आज का काव्य पाठ सुचारू रूप से संपन्न हुआ, और मैं डॉक्टर मनोज कैन, डॉक्टर मनीष शर्मा जी और दीपा गुप्ता जी को धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हमारे श्रोताओं को सुनने को मिली, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को ये कविताएं पसंद आई होंगी। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की इतिश्री करते हैं, आप सभी का दिल से आभार, शुक्रिया, पुनः धन्यवाद, नमस्कार।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे, इस गोष्ठी का संचालन कर रही थी वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर प्रीता पवार। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है, प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ, और दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म सदमा से और जिसे आवाज़ से सजाया है सुरेश वाडकर ने।

दोस्तों, फिल्म संगीत की यही खासियत होती है कि ये सीधे दिल से दिल तक दस्तक देती है। कुछ यादें हमें बचपन में ले जाती है, तो कुछ हमें ऐसे किसी अपने की याद दिलाती है जो कहीं ना कहीं हमारे दिल के तारों को छूता होगा या महसूस करता होगा, और हमारी यादों के उस कोने में होगा जो कहीं ना कहीं हमें एक खूबसूरत एहसास और एक खूबसूरत प्यार का, जो कहते हैं ना उसको, एक प्यार की तरंग जो है हमारे शरीर में वाइब्रेट करती है, कुछ इस तरीके का एहसास जगाता है। ये संगीत की बात होती है। तो यही इसी प्रकार का प्यारा सा गीत अभी आपने सुरेश वाडेकर की आवाज़ में सुना था फिल्म सदमा से, और अब सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं फिल्म म्यूज़िक कार्यक्रम। दोस्तों, सिनेमा सिर्फ एक कहानी और किरदारों का नाम नहीं है। किसी फिल्म का संगीत उस कहानी को आगे बढ़ाता है। कभी प्यार की कहानी कहता है तो कभी जुदाई का दर्द। तो सिनेमा में जो संगीत है वो एहसास कराता है तमाम तरह के उन पहलुओं को जो जीवन के आपके किसी ना किसी तार को छेड़ता ज़रूर है। और इसी को बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत, उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म जो जीता वही सिकंदर से।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव

0: क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
4: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष

0: पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धा पूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकर देव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
1: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
2: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक एक अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन

0: बनाए देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
3: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
2: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radha

0: the race for the 2025-27 World Test Championship final. Australia is at the top, followed by South Africa and New Zealand. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places for tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Duran Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाजों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वाज़े किया है कि मुल्क में स्वाइन फ्लू के किसी नए जरसूमे की पहचान नहीं हुई है। ICMR ने यकीन दिलाया कि मौजूदा टीके मुअसर हैं। खेलों के ब्रिक्स वुजरा की मीटिंग विशाखापट्टनम में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई, जहां खेलों के शोबे में इश्तराक, शमूलियत और बाहमी वक़ार को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका एलामिया अपनाया गया। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रिवायती हरीफ मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें, ताकि दुनिया भर के लोग ये महसूस करें कि करियर बनाने के लिए भारत जाना चाहिए। जनाब मोदी ने 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs के और बानी अफराद से मुलाकात के दौरान ये बात कही। आज खला के कौमी दिन के मौके पर जारी की गई इस बातचीत के मुताबिक जनाब मोदी ने खलाई मुहिमात शुरू करने के मामले में दूसरों के मुकाबले भारत की कम लागत को भी नुमाया किया।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: जनाब मोदी ने बातचीत के दौरान खलाई शोबे के स्टार्टअप से अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखने और दुनिया भर से होनहार अफराद को रागिब करने के काबिल खलाई शोबे का जामे इकोसिस्टम तश्कील देने की अपील की।
2: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: इस दौरान खलाई शोबे के पहले भारतीय टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पवन कुमार चंदाना ने खलाई शोबे को खोलने पर जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने की 18 तारीख को स्काईरूट एरोस्पेस ने

0: प्राइवेट तौर पर तैयार किया गया भारत का पहला रॉकेट कामयाबी से दागा। इस दौरान आज खला से मुतालिक कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत 23 अगस्त को चांद के कुतुब जनूबी के नज़दीक चंद्रयान स्वयं की तारीखी आसान लैंडिंग की याद में हर साल ये दिन मनाता है। इस तारीखी लैंडिंग के जरिए भारत चांद के कुतुब जनूबी के इलाके में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि खला से मुतालिक दरियाफ्त के शोबे में भारत की काबिल जिक्र हुसूलियाबियां मुल्क की साइंसी उम्दगी इख्तरा के जज्बे और मालूमात के महाज को फरोग देने के मुल्क के जज्बे की अक्कासी करती हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि नए आलमी ऑर्डर में भारत अपने खलाई शोबे को लगातार वसत दे रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खला के कौमी दिन के मौके पर चंद्रयान स्वयं की तारीखी कामयाबी को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस हुसूलियाबी ने भारत को खला का सफर करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल कर दिया है। जनाब सिंह ने भारतीय साइंसदानों के काबिल जिक्र तआवुन की सताइश भी की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जंगी जहाज बहरी कश्तियों और दीगर मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए इसे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने भारत को मुस्तकबिल में जहाजसाजी का मरकज बनाने के मकसद से इस शोबे में रख रखाव से मुतालिक मियारी खिदमात की ज़रूरत पर जोर दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL के तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों के भूमि पूजन की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि GRSE मुल्क मुस्तकबिल में जहाजसाजी के सिलसिले में कायदाना रोल अदा कर सकती है। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि GRSE जर्मनी के लिए एक कार्गो जहाज तैयार कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अंदरून मुल्क तैयार की जाने वाली दिफाई मसनूआत पर इन्हिसार की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुसल्ला अफवाज भारत के सरकारी शोबे की दिफाई कंपनियों के जरिए तैयार की गई मसनूआत में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। वज़ीर दिफा ने आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड के 5 मराकज के भूमि पूजन की तकरीब में शिरकत की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विकसित भारत 2047 के हुसूल में रियासती हुकूमत के तआवुन के लिए मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी की कोशिशों की सताइश भी की। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर दिफा ने कहा कि दुनिया को दिफाई मसनूआत की बरामदात के लिए मयारात की यकीन दहानी और बरवक्त फराहमी पर भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अब दिफाई ज़रूरियात के लिए अंदरून मुल्क तैयार शुदा मसनूआत पर इन्हिसार कर रही हैं। जनाब सिंह ने बताया कि रियासती हुकूमत दाखिली सिक्योरिटी के सिलसिले में भरपूर तआवुन फराहम कर रही है। वज़ीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत नए प्रोजेक्टों के साथ साथ तरक्की के नए दौर के आगाज़ के लिए इकदामात करेगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रियासती हुकूमत ने इन नए प्रोजेक्टों के लिए 11,000 एकड़ ज़मीन फराहम की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नौरत्न कंपनी GRSE लिमिटेड ने 100 से ज़्यादा बहरी जहाज फराहम किए हैं। भारतीय हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोजेक्ट बहरी अफवाज और दीगर दिफाई और बहरी शराकतदारों की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी करने में मुआविन होंगे। मगरबी बंगाल के केडरपुर शालीमार और रायचक और ईशापुर में भूमि पूजन तकरीबात का इनेकाद किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वाज़े किया है कि H1N1 की किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस पाया जा रहा है वो शिमाली निसफ कुरे अर्ज के लिए तजवीज़ करदा वैक्सीन की किस्म से मुमासलत रखता है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के

0: मुताबिक ये वायरस 2025 से गर्दिश में है। आईसीएमआर के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज़्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। बुखार, खांसी, सरदर्द और जिस्म में दर्द इसकी आम अलामत हैं और ज़्यादातर लोग मुनासिब देखभाल और आराम से सेहतयाब हो जाते हैं। तिब्बी इदारे ने कहा है कि नौउम्र बच्चे, बुज़ुर्ग अफराद और ऐसे अफराद जो तिब्बी पेचीदगियों का शिकार हैं, उन्हें इस वायरस से ज़्यादा ख़तरा लाहिक हो सकता है। अगर अलामत जारी रहती हैं या मजीद अबतर या शदीद हो जाती हैं तो बरवक्त डॉक्टर से रुजू करने की हिदायत दी गई है। आईसीएमआर ने बताया कि सूरत हाल पर बाकायदा निगरानी के जरिए करीबी नज़र रखी जा रही है और सेहत आमा के तईं ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। खेलों के ब्रिक्स वज़रा की मीटिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई, जहां इत्तफाक़ राय से ब्रिक्स स्पोर्ट्स मुश्तरका ऐलामिया अपनाया गया। भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत मुनक़िद हुई। मीटिंग ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों की तरक्की, शमूलियत, खेलों की टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले पर तवज्जो मरकूज करते हुए खेलों के शोबे में तआवुन को फ़रोग़ दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मीटिंग का अहम महासल खेलों की टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ है, जो स्पोर्ट साइंस, मसनूई जहानत, डिजिटल बदलाव और एथलीट की कारकर्दगी में इश्तराक को फ़रोग देगा। ब्रिक्स स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तजवीज़ को भी वसी तर हिमायत हासिल हुई है। इसके मुताबिक इफ्तिताही कॉन्क्लेव के इस साल नवंबर में उदयपुर में मुनक़िद करने की तजवीज़ है, जो मैन्युफैक्चरर्स, सरमायाकारों, टेक्नोलॉजी कंपनियों और तहकीकी इदारों को अपनी महारत के तबादले और जिद्दत तराजी को फ़रोग देने का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। दूसरी अहम पहल ब्रिक्स रिवायती और स्वदेशी खेल मुकाबले के मुजाहरे से मुतालिक रही, जिसके अक्टूबर में अहमदाबाद में मुनक़िद होने की तजवीज़ है। ये इनकाद ब्रिक्स ममालिक की खेलों की मालामाल सकाफत का मुजाहरा करेगा और सकाफती और आवाम से आवाम रबतों को मुस्तहकम करेगा। खेलों के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलों के शोबों में ब्रिक्स की शराकत दारी की अपील की, जो ऐलामिए से परे एथलीट और कोचेज के तबादलों, मुश्तरका मुकाबलों और मालूमात के इश्तराक के ज़रिए हकीकी तआवुन को मुमकिन बनाएगा। खेलों के ब्रिक्स वज़रा की मीटिंग के कामयाब इनेकाद ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान खेलों के पायदार इश्तराक की बुनियाद रखी है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए ज़मीर रज़वी।
0: ज़रई तहकीक से मुतालिक भारतीय कौंसिल ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ML जाट ने आज कहा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग की जानिब से तैयार करदा मिट्टी से मुतालिक डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम फसलों की बेहतरी, ज़रई तरक्की और फैसला साजी से मुतालिक निज़ाम के क़याम की अहम बुनियाद हैं। ब्यूरो के 50वें योम तासीस के मौके पर नागपुर में मुनक़िदा तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करते हुए जनाब जाट ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ब्यूरो सही समत में गामजन है और बदलती ज़रूरतों और मुल्क की तरजीहात से हम आहंग है। हाल ही में ब्यूरो ने रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हुए भारत का पहला सॉइल टेक्स्चर नक्शा तैयार किया है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पार्टी से अपील की है कि वो खवातीन रिजर्वेशन बिल पर सियासत करने के बजाय पार्लियामेंट में इस बिल की हिमायत करे। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन पर अमल दरामद में मदद करके खवातीन के लिए अपनी हिमायत साबित करे।
2: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: दिल्ली पुलिस ने वाजे किया है कि आज जंतर मंतर पर एहतजाज करने या जमा होने के लिए किसी भी फर्द या तंजीम को कोई इजाज़त नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट और वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिनमें लोगों से रिजर्वेशन से मुतालिक इस्लाहात के मामले पर इकट्ठा होने की अपील की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली में इम्तनाई अहकाम पहले ही नाफिजुल अमल हैं। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज शाम खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रिवायती हरीफ मोहन बगान सुपर जॉइंट को 4-1 से शिकस्त दी। ईस्ट बंगाल की जानिब से एडमंड लाल रिंदिका ने सनसनीखेज हैट्रिक लगाई, जिसके बाद डूरेंट कप 22 साल के बाद ईस्ट बंगाल के नाम हो गया।

0: एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप में आज रात भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्वालिफाई करने का इन्हिसार चीन और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच पर भी होगा। चीन के हारने की सूरत में भारत की राह हमवार हो जाएगी। अगर चीन ये मैच जीत लेता है तो भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुतालिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाज़ों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने वाज़े किया है कि मुल्क में स्वाइन फ्लू के किसी नए जरसूमे की पहचान नहीं हुई है। ICMR ने यकीन दिलाया कि मौजूदा टीके मुअसर हैं। खेलों के ब्रिक्स वज़रा की मीटिंग विशाखापट्टनम में कामयाबी से अख्तिताम पजीर हुई। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं मरतबा डूरेंट कप जीत लिया है। कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने रवायती हरीफ मोहन बगान को शिकस्त दी। और FIH हॉकी आलमी कप में आज रात नीदरलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast.
2: Radio Scope, the National Science Magazine program.
3: Welcome to the Independence Month special edition of National Science Magazine, Radio Scope. In this issue, we celebrate India's remarkable journey from the transformation of our roads and highways to the pioneering strides being made in space exploration by Indians. We also spotlight the relentless scientific pursuit of longer, healthier lives, highlighting the newest breakthroughs in longevity research. We also examine the urgent need to protect our water bodies in observance of World Lake Day, August 27th. Let's embark on this journey together, starting with the editorial.
1: Since gaining independence in 1947, India has made remarkable progress in the field of science and technology, transforming what was largely an agrarian economy into a global hub for innovation and research. And the march continues with every passing day with double the vigor. One of the most notable achievements is the advancement in space technology. The Indian Space Research Organization, ISRO, launched numerous satellites, placed missions to the Moon, Chandrayaan, and Mars, Mangalyaan, becoming the first country to land near the Moon's South Pole. India has also made significant strides in nuclear energy, becoming one of the few nations with both civilian and military nuclear capabilities. Institutions like the Bhabha Atomic Research Center, BARC, have played a key role in this development. In the field of information technology, India emerged as a global IT powerhouse, with cities like Bengaluru becoming major tech hubs. The success of digital initiatives like Aadhaar, which is world's largest biometric ID system, and Digital India showcases India's capabilities in using technology for governance and public services. Not only that, India has developed its own digital payment gateway that is the biggest in the world. Additionally, India has shown leadership in pharmaceuticals and biotechnology, being a major producer of medicines and vaccines. These achievements highlight India's strong foundations in science and technology and its commitment to innovation-driven growth.
3: India's journey in science and technology is a story of constant innovation and achievement. In 2020, a new chapter began when India opened its space sector to private enterprise, transitioning from an exclusive state-run model led by the Indian Space Research Organization to a dynamic commercial ecosystem. The Indian National Space Promotion and Authorization Authority now serves as a single window regulator, empowering private startups to build rockets, design satellites, and operate commercial launch sites. On July 18, 2026, Vikram 1, a small satellite launcher developed by Indian startup Skyroot Aerospace, successfully lifted off from ISRO's Satish Dhawan Space Center.

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता-पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग 2 दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद मालसे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुरडीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश 3 ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा।

तिलक. बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड अ नेचुरल फ्लेयर फॉर म्यूजिक सिंस अर्ली चाइल्डहुड. विथ अनइक्विवोकल सपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स, शी वॉज इनिशिएटेड इन टू द ओशन ऑफ म्यूजिक बाय मिसेस सुहासिनी एंड मिस्टर प्रभाकर व्यास एंड लेटर बाय डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले. हर म्यूजिकल जर्नी टूक फर्म रूट वेन टू सीनियर वोकालिस्ट ऑफ द जयपुर अतरावली घराना, श्रीमती कमलताई तांबे एंड श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर, ट्रेन्ड एंड मेंटोर्ड हर इन टू द इंट्रिकसीज ऑफ द जयपुर अतरावली घराना गायकी ओवर अ पीरियड ऑफ टू डिकेड्स. शी हैज ऑल्सो रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम पंडित अरुण द्रविड एंड प्रोफेसर मिलिंद मालशे, बोथ स्कॉलर्स ऑफ जयपुर गायकी. बेस्ड ऑन द सॉलिड तालीम दैट शी रिसीव फ्रॉम बोथ हर गुरुज, हर गायकी इज एम्बेलिश विथ ओपन थ्रोटेड आकार, बोल, उपज, गोइंग हैंड इन हैंड विद द लय एंड ब्यूटिफुल गमक पैटर्न्स ऑफ तान, ऑल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रागा. वन ऑफ द लीडिंग वोकैलिस्ट टू प्रेजेंट एंड प्रोपोगेट द गायकी ऑफ द लिजेंडरी गान तपस्विनी, श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर ऑफ द जयपुर अतरावली घराना, विदुषी प्रतिमा तिलक एस्थेटिकली अनफोल्ड्स द रागा टू ब्रिंग आउट इट्स ट्रू एसेंस. विदुषी प्रतिमा तिलक इज आकाशवाणी टॉप ग्रेड आर्टिस्ट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. शी इज ऑल्सो एन एम्पैनल आर्टिस्ट ऑफ द ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. टुनाइट विदुषी प्रतिमा तिलक बिगिन हर क्लासिकल वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा, विलंबित बंदिश सेट टू तीन ताल. बोल, प्यारी पग हौले हौले धरिए, द्रुत तराना सेट टू तीन ताल. अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज श्री यति भागवत एंड ऑन द हारमोनियम इज श्री अनंत जोशी एंड ऑन सारंगी उस्ताद फारूक लतीफ खान.

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा। ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत जोशी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha, and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai, and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओ, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश। श्रोताओ, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आपकी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना ईमेल हमारे पास भेज देना है, अपने मनपसंद गीत के साथ, अपने नाम के साथ, और आप कहाँ से भेज रहे हैं उस जगह के नाम के साथ। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता देती हूँ, ipradiodelhi@gmail.com। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है अनवी, मीनू और अमन ने हिसार हरियाणा से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म अनवर से और आवाज़ थी रूप कुमार राठौर जी की। और इसी के साथ चलते हैं हम मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे पहला मैसेज हम ले रहे हैं जो कि आया है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सुबीहा अंजुमन खान, आपका तहे दिल से शुक्रिया के साथ हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है फारूक अली खान जी का, जो कि कहाँ से लिख रहे हैं हमारे पास ये नहीं लिखा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं नांगलोई दिल्ली से जो आया है मदन चक्रवर्ती जी और राजेंद्र चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्डन रेडियो श्रोता

राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जो आया है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। साथ में है गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता का कनेरा मोहल्ला पटियाला से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव कल्याण मल्ल का, जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास आया है पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर बिहार से जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता और सानवी गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बंजारा लेआउट नागपुर से अनिल कोहले, छाया कोहले, प्रियांश कोहले धन्यवाद के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ में है प्रमोद कुमार डुडी और पुष्पेंद्र कुमार डुडी। बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन आगे चलने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा आपकी फरमाइश का गीत।

जो तो ये गीत हमने लिया था फिल्म पैडमैन से, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। और चलते हैं और मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास लगातार बहुत सारे आपके आ रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। अनवी, मीनू और अमन लगातार हिसार हरियाणा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से, श्यामला प्रकाश, अश्विनी आनंद, मनवित, शुक्रिया के साथ हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। किशोर नगर अमरावती से हमारे पास मैसेज आया है हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोंडाने जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बब्बी अनविका, तनुश्री गुप्ता का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। हमारे पास आया है नियमित श्रोता एके पांडे मध्य प्रदेश से, आप लिखते हैं बारिश का मौसम है इसलिए

बारिश से संबंधित फिल्मी गाने सुनवाए। आपकी फरमाइश हमने सुन ली है। अगला मैसेज हमारे पास आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी मराठा, भाऊ मराठा, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारा लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। आदाब अर्ज के साथ हमारे पास मैसेज आया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली का, जो कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज सेक्टर 67 मोहाली से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, टीडी मल्होत्रा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम राम के साथ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दिल्ली नांगलोई से राजेंद्र जतोलिया, उषा जतोलिया, चारू जतोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का। लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है, प्लीज़ हमारी भी फरमाइश पढ़िए, लोगों को समझने का हुनर हम में नहीं, जो दिल में आया वही कहा हमने सही, भीड़ के साथ चलना हमें नहीं आता इसलिए आज भी अकेले चलते हैं हम। ये कहना है चारू जतोलिया, राजेंद्र जतोलिया, दिल्ली नांगलोई से। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से है नारायण खर्चे जी, लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। बहुत सारे और भी मैसेजेस हैं लेकिन लगातार जो एक साथ मैसेज आते हैं उनकी वजह से उन लोगों का मैसेज हमारे पास नहीं आ पाता है जो कि पहली बार हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि संबंधों की दुनिया गुलजार वहां पर होती है जहां पर संबंधों की बुनियाद भरोसे पर होती है, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे भी नज़ारे देखने को मिलते हैं जहां भरोसा होने के बावजूद भी दिल के किसी कोने में भरोसे की दीवार डगमगा जाती है। ऐसे हालातों में खुशियां भरपूर होने के बावजूद भी खुलकर खुशियों का जिक्र करना बड़ा मुश्किल होता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं गाने की फरमाइश हमारे पास आई है शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए भी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है अश्विनी चुग जी का, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में हैं आशु चुग, अश्विनी चुग,
गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे।

आवेग ढिंगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारा पास आए संभल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म आकाश से। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की। चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास लगातार आपके पहुंच रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ आज चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है फजिलका पंजाब खेड़ा, पंजाब से खेड़ा परिवार का। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैसेज हमारे कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है, वी आर लिसनिंग द प्रोग्राम, आपकी फरमाइश, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स, योर्स बिग थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम। ये हमारे पास मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी।

शांतिनगर सोनीपत से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए। संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता और अनिकेत भटकर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा का पंचकुला सेक्टर 11 से, अतुल शर्मा जी का साथ में अश्विनी चौक भी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू चौधरी, देविका चौधरी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, नसर अंसारी, असद अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, दिल से दुआ के साथ सदा खुश रहो जी की दुआओं के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब के साथ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। फजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहा है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि लगातार हमारे पास उन्हीं श्रोताओं के आ रहे हैं जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं करिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

श्रोता, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिर्फ तुमसे आवाज़ थी उदित नारायण जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश मेरे यानी रचना अग्निहोत्री के साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता जी। हम पूरा कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा कार्यक्रम सुनने के लिए और बहुत बहुत स्वागत भी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। आपका आज का प्रोग्राम सालों साल याद रहेगा जी, सदा खुश रहो के आशीर्वाद के साथ, दुआओं के साथ छोटे अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। शिवानी

0: चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, जन रज्जक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद भी लगातार गोविंदपुरा अहमदनगर से लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।
1: बरसों बाद ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म आंधी से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की। इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है ग्राम लासूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मल्लिकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्ची जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं कार्यक्रम के अगले अंतिम गीत की तरफ।

0: श्रोताओ, इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पर समेटने की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, 12 बजने को हैं। इन सभी मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है.
3: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The National Skill Development Cooperation, the National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration affirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS chairship 2026. In Madhya Pradesh, 9 people trapped in the strong current of the Gadheri River in Sagar district were safely rescued by a joint team of police, SDRF and Home Guards. Heavy rain on August 22 caused the river to rise near the Apchand caves. The rescue team trekked nearly 4 kilometers through dense forest and difficult terrain before SDRF personnel entered the river and rescued all 9. They were given medical checkups and found safe before being reunited with their families. The Kailash Mansarovar Yatra through Sikkim's Nathula route concluded with 464 pilgrims completing the pilgrimage in 10 batches. The Yatra, which began on 20th June, concluded with the return of the final batch of pilgrims to Gangtok. The pilgrims visited Mount Kailash and Lake Mansarovar in the Tibet Autonomous Region of China. In football, East Bengal FC entered the main draw of the AFC Women's Champions League 2026-27 by beating Malaysia's Sabah FC 2-0 in their final Group A preliminary stage match in Kota Kinabalu. In men's cricket, India were 300 for 5 in their first innings against host Sri Lanka at stumps on day 1 of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurail and Saransh Jain were at the crease at the draw of stumps last evening. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, आज के सुरों के सफ़रनामा में हम उस शायर और गीतकार की कहानी लेकर आए हैं जिनकी कलम ने मोहब्बत को भी आवाज़ दी, दर्द को भी ज़बान दी और भक्ति को भी उतनी ही श्रद्धा से शब्द दिए। नाम था शकील बदायूनी जी। 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में शकील अहमद जी का जन्म हुआ। उनके पिता मौलाना जमील अहमद जी थे। बचपन से ही उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम घर पर मिली। बाद में उन्होंने बदायूं के इस्लामिया हाई स्कूल से पढ़ाई की और 1942 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। कहते हैं कि शकील जी के भीतर शायरी का बीज बहुत पहले पड़ चुका था। बदायूं की साहित्यिक और मुशायरों की फिजा ने उनकी कल्पना को पंख दिए। आगे चलकर यही शायर हिंदी सिनेमा के गीतों की दुनिया में एक ऐसा नाम बना जिसके लिखे गीत आज भी इतने सालों बाद भी सीधे दिल में उतर जाते हैं। फिल्म दुलारी का ये गीत, ये फिल्म आई थी 1949 में।

शकील बदायूनी जी की पहचान एक फिल्मी गीतकार की ही नहीं थी, फिल्मों में आने से पहले वो बाकायदा एक शायर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। अलीगढ़ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के सप्लाई विभाग में सरकारी नौकरी

की, लेकिन नौकरी उनके भीतर के शायर को बांध नहीं सकी। दिल्ली में रहते हुए भी वो मुशायरों में हिस्सा लेते रहे। उनकी शायरी में मोहब्बत, इंसानी रिश्ते, जुदाई और ज़िंदगी के एहसास थे। शकील जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी भाषा। वो मुश्किल उर्दू को भी ऐसे जज्बात में ढाल देते थे कि आम श्रोता उसे आसानी से महसूस कर सकते थे। 1940 के दशक में उनका नाम मुशायरों में पहचान बनाने लगा था, मगर उनके भीतर एक और सपना था, और वो सपना था मुंबई जाकर फिल्मों के लिए लिखना। आखिरकार उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया और 1944 के आसपास मुंबई पहुंच गए। उस समय ये फैसला उतना आसान नहीं था, लेकिन शकील जी जानते थे कि उनकी असली मंजिल उनकी कलम के साथ है।

दोस्तों, मुंबई पहुंचने के बाद शकील बदायूनी जी की मुलाकात उस शख्स से हुई जो आगे चलकर उनके सबसे महत्वपूर्ण संगीत के साथी बने, यानी उनके दोस्त बने। उनका नाम था संगीतकार नौशाद जी। एक मुशायरे में नौशाद जी ने शकील जी की शायरी सुनी और उनसे कहा कि अपनी काबिलियत का अंदाज़ा एक मिसरे से करवाइए। शकील जी ने जवाब में लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। नौशाद जी इस जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शकील जी को अपनी फिल्म दर्द के लिए गीत लिखने का अवसर दे दिया। 1947 में आई दर्द, जिसका गाना भी आपने सुना, शकील जी की फिल्मी दुनिया में शुरुआत थी और शुरुआत ही कामयाबी लेकर आई। ख़ास तौर पर अफसाना लिख रही हूँ बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद नौशाद जी और शकील जी की जोड़ी ने लगभग 2 दशक से भी

ज़्यादा समय तक हिंदी सिनेमा को यादगार गीत दिए। दोनों की साझेदारी सिर्फ पेशेवर नहीं थी, उनमें गहरी, बहुत ही गहरी दोस्ती भी थी।

1952 में आई फिल्म बैजू बावरा शकील बदायूनी के करियर का एक ऐसा पड़ाव बनी जिसने साबित कर दिया कि उनकी जो कलम है वो कलम उसको कहीं सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनकी कलम ने सिर्फ इश्क और जुदाई तक सीमित नहीं है, फिल्म की कहानी संगीत के इर्द गिर्द थी और गीतों में शास्त्रीय संगीत की गहराई चाहिए थी। नौशाद जी और शकील जी ने मिलकर ऐसे गीत रचे जिनमें राग भक्ति और भावनाओं का अद्भुत मेल दिखाई दिया। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये गीत इसको आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ये गीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक गिना जाता है। इसी फिल्म में तू गंगा की मौज और आज गावत मन मेरो जैसे गीत भी थे। शकील जी की खासियत ये थी कि वो एक मुस्लिम शायर होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तानी सांस्कृतिक परंपरा और भक्ति की भावनाओं को पूरी श्रद्धा से शब्द दिए। यही वो दौर था जब शकील बदायूनी जी की कलम ने यह साबित कर दिया कि अच्छी शायरी की कोई मजहबी सीमा होती ही नहीं है, उसका रिश्ता सीधे इंसान के दिल से होता है। आप भी सुनिए और इसको दिल से महसूस कीजिए।

दोस्तों, शकील बदायूनी जी की शायरी का एक खूबसूरत पहलू ये था कि वो दर्द को सिर्फ बयान नहीं करते थे, उसे महसूस करवाते थे। फिल्म अमर के गीत ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते में उन्होंने दर्द को एक अलग ही रूप दे दिया। जैसे कह रहे हों कि अगर ज़िंदगी में गम ना होते तो इंसान अपनी भावनाओं की गहराई को कैसे पहचानता। इसी दौर में उनका एक और रूप सामने आया, भक्ति और इंसाफ की आवाज़। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, जैसे गीतों में उन्होंने इंसाफ और ईश्वर के सामने इंसान की बराबरी की बात कही। शकील जी की कलम में यही विविधता थी। कभी वो प्रेमी के दिल की धड़कन लिखते हैं, कभी विरह का दर्द, कभी भक्ति और कभी इंसानियत। उनकी शायरी को पढ़ते हुए लगता है कि वो शब्द नहीं चुनते थे, वो पहले भावना को महसूस करते थे और फिर उसे शब्द दे देते थे।

1957 में आई महबूब खान की ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया, संगीत नौशाद जी का और गीत शकील बदायूनी जी के। यहाँ शकील जी ने प्रेम और रोमांस से आगे बढ़कर गांव, किसान, मेहनत और भारतीय मिट्टी की भावनाओं को गीतों में उतार दिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और इस गीत में जीवन की मजबूरी और संघर्ष है तो दुख भरे दिन बीते रे भैया में ग्रामीण जीवन की थकान के साथ साथ उम्मीद भी है। और फिर होली आई रे कन्हई, जिसमें लोक संस्कृति की रंगीन तस्वीर दिखाई देती है। शकील जी की भाषा को परिस्थिति के मुताबिक बदलना जानते थे। जी हाँ, वो भाषा के जादूगर थे। जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ उर्दू की नज़ाकत, जहाँ कहानी ने मांगा वहाँ देसी बोलियों की मिठास। यही वजह है कि उनके गीत फिल्म के पात्रों के गीत लगते थे, किसी अलग से लिखे गए गीत जैसे नहीं हुआ करते थे। शकील जी का लिखा ये गाना तो रहती दुनिया तक लोगों को जीने का सबक देता ही रहेगा।

अगर शकील बदायूनी जी को मोहब्बत का शायर कहा जाए तो इसमें किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा, क्योंकि प्रेम की खूबसूरती को जिस नज़ाकत से उन्होंने लिखा वो उनके गीतों की सबसे बड़ी पहचान बनी। 1960 में आई फिल्म चौधरी का चांद का शीर्षक गीत इसका लाजवाब उदाहरण है। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, ये सिर्फ किसी खूबसूरत चेहरे की तारीफ नहीं थी। शकील जी ने महबूब की खूबसूरती को चांद और सूरज से जोड़कर एक ऐसा रोमानी रूप दे दिया जो आज भी सुनते ही जहन में तस्वीर बना देता है। इस गीत ने शकील जी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार भी दिलाया। इसके बाद लगातार 2 और वर्षों में भी उन्हें यह सम्मान मिला। इस तरह शकील बदायूनी जी लगातार 3 वर्षों तक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले संगीतकार

दोस्तों शकील बदायूनी जी का हुनर सिर्फ नौशाद जी के साथ उनकी साझेदारी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई दूसरे बड़े संगीतकारों के साथ भी काम किया। संगीतकार रवि के साथ उनकी जोड़ी ने घराना, चौदहवीं का चांद, घूंघट, गृहस्थी, फूल और पत्थर और दो बदन जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिए। संगीतकार हेमंत कुमार जी के साथ साहिब बीबी और गुलाम और 20 साल बाद जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार गीत लिखे। कहीं दीप जले कहीं दिल ने भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो कहानी के किरदार और माहौल के हिसाब से भाषा बदल देते थे। गंगा जमुना में उन्होंने भोजपुरी रंग का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी फिल्मों में उर्दू की नज़ाकत दिखाई। यानी शकील जी सिर्फ गीत नहीं लिखते थे, वो फिल्म के वातावरण को शब्दों में रच डालते थे।

दोस्तों, हर महान कलाकार की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है जब शोहरत के बीच इंसान को अपनी निजी तकलीफ़ों से लड़ना ही पड़ता है। शकील बदायूनी जी के जीवन की आखिरी वर्षों में, उनके ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में उन्हें तपेदिक यानी टीबी की बीमारी ने घेर लिया था। इलाज के लिए उन्हें पंचगनी के एक सैनिटोरियम में रखा गया, लेकिन बीमारी उनकी कलम को रोक नहीं सकी। उनके सबसे करीबी साथियों में से एक नौशाद जी ने उस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। बताया जाता है कि नौशाद जी उनके लिए फिल्मों के काम लेकर सैनिटोरियम तक गए और उनके आर्थिक हालात को देखते हुए उन्हें सामान्य पारिश्रमिक से बहुत अधिक भुगतान दिलवाया। इस दौर में राम और श्याम, आदमी और संघर्ष जैसी फिल्मों के गीतों पर भी शकील जी ने काम किया। ये दोस्ती हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया की उन कहानियों में से है जहां कामयाबी से कहीं बड़ी चीज़ इंसानियत दिखाई देती है।

20 अप्रैल 1970 को मुंबई में शकील बदायूनी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सिर्फ 54 वर्ष के थे। एक ऐसी ज़िंदगी जो बदायूं से शुरू हुई थी और मुंबई के फिल्मी संसार तक पहुंची। एक ऐसा सफ़र जिसमें सरकारी नौकरी भी आई, मुशायरे भी आए, नौशाद जी की दोस्ती भी आई, फिल्मी गीतों की बेशुमार कामयाबी भी आई और आखिरी दिनों की बीमारी भी। लेकिन किसी शायर की असली ज़िंदगी उसकी उम्र से नहीं, उसके शब्दों से मापी जाती है। शकील जी ने लगभग 9 दशकों में करीब 2 दर्जन फिल्मों के सफ़र में सैकड़ों गीत लिखे। अपनी शायरी से हिंदी सिनेमा को ऐसी विरासत दी जो आज भी जिंदा है। चौधरी का चांद, प्यार किया तो डरना क्या, मन तड़पत हरिदर्शन को आज सुहानी रात ढल चुकी है और न जाने कैसे कितने कितने गीत उन्होंने लिख दिए। उनकी शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उसमें मोहब्बत थी, मगर मोहब्बत के साथ इंसानियत भी। शकील बदायूनी जी चले गए, मगर उनके गीत आज भी हमें यही एहसास कराते हैं कि अच्छे शब्द कभी नहीं मरते। यही था हमारा आज का सुरों का सफ़रनामा, शकील बदायूनी जी को

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ।

0: भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाऊं, मैं पक्का मानता हूं जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने कल बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गदेरी नदी के तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। 22 अगस्त को भारी बारिश के कारण गुफाओं वाले इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल के जवान तेज बहाव के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के बाद उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सुरक्षित पाए जाने पर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
0: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और दोस्तों ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें हम उस जमाने के गीत आपको सुनाते हैं जो बहुत ही सुनहरा दौर था संगीत की दुनिया का। उस वक्त के जो गीत थे वो इतने प्यारे होते थे, जो दिल में उतर जाते थे, और उन्हें हम बिल्कुल ऐसे महसूस कर सकते थे जैसे वो हमारे दिल की बात हो। ऐसा ही एक बहुत ही पुराना और प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है ग्राम कन्या और इसमें आवाज़ दी है सुरेंद्र एलियाराम शर्मा जी ने।

पुराने गानों का ये जो संग्रह आकाशवाणी के पास है, ये सच में किसी ख़जाने से कम नहीं है। और अब वो आवाज़ हम आपको सुनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पुराने संगीत प्रेमी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, उस नाम से KL सहगल साहब। उनकी फ़िल्म जो आई थी 1939 में, फ़िल्म का नाम है दुश्मन।

और दोस्तों, ये जिस ज़माने के गाने अभी आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर, उस ज़माने में हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और अभी जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं, वो फिल्म आई थी 1943 में, यानी 1943 में, और फिल्म का नाम है हॉस्पिटल, और इसको आवाज़ दी है कानन देवी जी ने। आइए सुनते हैं इतने सालों पुराना ये प्यारा सा गीत।

और लीजिए प्रस्तुत है केएल सहगल साहब की आवाज़ में ही एक और गीत जिस की फिल्म आई थी 1943 में, यानी 1943 में। फिल्म का नाम है तानसेन।

दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म दास्तान से ये गाना, जिसे आवाज़ दी सुरैया जी ने और रफ़ी साहब ने। और ये भी बहुत ही पुरानी फिल्म है, 1950 के दशक में आई थी। और पुराने गीतों को सुनने के बाद, उनको एहसास करने के बाद ये पता चलता है दोस्तों कि प्यार की सूरत तब भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन ज़रूरत बस इतनी सी है कि प्यार सच्चा होना चाहिए।

दोस्तों, दिल को बहलाने के लिए ही हम लेकर आते हैं आपके लिए 24 घंटे ऐसे कार्यक्रम जिन्हें सुनकर आपका दिल हमेशा ऐसी यादों के साथ जुड़ा रहे जो आपके अपने वो सारे गम भुला दे, वो सारी परेशानियां भुला दे जिन्हें आप कहीं ना कहीं याद करते हैं। बस आप सुनते रहिए हमारे साथ और यूं ही जुड़े रहिए।

और अगला गाना जो हम आपके पास भेज रहे हैं उसके लिए बस एक शेर कहना चाहेंगे, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, रात होती है तो आँखों में उतर आता है।

तो लता मंगेशकर जी की प्यारी सी आवाज़ के बाद आइए सुनते हैं राजकुमारी जी को। फिल्म है बावरे नैन और ये फिल्म आई थी 1950 में।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो फिल्म, उस फिल्म का नाम है बंदिश। ये फिल्म आई थी 1955 में, और दोस्तों ये आवाज़ 1955 से पहले भी हमारे साथ थी और उसके कई सालों बाद तक हमारे साथ थी, और वही खूबसूरत आवाज़ यानी रफ़ी साहब की आवाज़ आप तक आ रही है।

दोस्तों रफ़ी साहब ने हर गाने में, हर किरदार में, हर उसमें सांस फूंक दी, उसमें जान फूंक दी। सच में रफ़ी साहब का कोई तोड़ न कभी हुआ था, न कभी होगा, नहीं रहती दुनिया तक, रहती दुनिया तक रफ़ी साहब का कोई भी एक उनकी तस्वीर भी नहीं बन सकता। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक प्यारी सी आवाज़ आप तक आने वाली है, और उस आवाज़ को आप तक पहुंचाने से पहले एक प्यारा सा शेर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन तो देखो, मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन तो देखो, हाथ उठाए नहीं और वो सामने आ गए।

नजर मिली भी नहीं और वो दिल चुरा ले गए, धड़कने भी चुरा ली और हम देखते रह गए। और कुछ ऐसे ही।

0: दादी।
1: रात भर जागती हुई सास में ख्वाब में ही सही साजन मिले इस प्यास में। रात भर जागती हुई सास में ख्वाब में ही सही साजन मिले पास में।

0: पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत सुनहरे अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी

0: ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। सांची सब पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार और पार्सल जैसी सेवाएं मिलेंगी। लोग डाक और वित्तीय सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क नहीं देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research has clarified that no new strain of H1N1 commonly known as swine flu has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत बहार, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे।

0: दो दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरु में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे समावेशी राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसार के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई startup से जुड़ जाओ, भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन लेकर आया हूँ गज़ल गीत कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे आज बेहद प्यारी और कुछ चुनिंदा गीत, बेहद प्यारी गज़लों के साथ कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बाजार की इस प्यारी सी गज़ल के साथ, जिसमें स्वर लता मंगेशकर का है।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ।

कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है। कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

0: इसी के साथ ही गीत गज़ल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। माफ कीजिए, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत। प्रस्तुति तालावाद्य कचेरी की, साथ में येल्ला वेंकटेश्वरा राव, तालम आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 23 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हमारी प्रातःकालीन सेवा में आरंभ होने वाले कार्यक्रमों का हम

कॉफी फ्रंट दे दें। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होती है प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। उसके उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार।

0: 6:45 पर रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 27 आप सुनेंगे 6:45 पर। छः बजकर पचपन मिनट पर आप सुन सकते हैं संस्कृत समाचार। प्रातः 7 बजे हिंदी समाचार होंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं संगीत का कार्यक्रम और गीतों भरी का समय 7:30 है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 तारीख तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सांची उप डाकघर का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के डाकघर आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस डाकघर का नवीनीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी

0: में तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। सूचना मिलते ही बचाव दल घने जंगल और दुर्गम इलाके से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल पर पहुंचा। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई startup से जुड़ जाओ, भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरेक्शन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन नेशनल स्पेस डे यस्टरडे, पीएम मोदी आल्सो हाइलाइटेड इंडियाज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन लॉन्चिंग स्पेस वेंचर्स। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मिस्टर मोदी अर्ज्ड द स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स टू रिमेन कंसिस्टेंट इन देयर एफर्ट्स एंड बिल्ड अ रोबस्ट स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल अटेंड द 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टुडे। द 2-day कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्मेट, कंबाइनिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मोड्स। Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Musunuru village in Eluru district of Andhra Pradesh today. During his visit, the Vice President will launch India's first non-genetically modified organism, GMO, high expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru. He will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders and other participants. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a 4-day visit to Japan from today till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both nations bring to their special strategic and global partnership and comes at a time when India and Japan are looking to significantly deepen trade and investment ties. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का

पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर, फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें, सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं, और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं, और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

0: नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। प्रस्तुति डॉक्टर दिनकर शर्मा की, राग नट भैरव।